और सतगुर वड्डा कर सलाइए जिस विच वड्डियां वड्डियाईयां सामिले तां नदरियाईयां जा तिस काला तां मन वसाईयां कर हुकम बस्तु खातर विचो।

ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਇ ਜਿਤ ਮੁਖ

0: और चाकर लग गए चाकरी जे चले खस में पाए और मैं तो सुन अगली जो पी धुना खाए खस में करे बराबरी फिर गाय अंदर पाए वो जो गाय गला मुड़े मुँह पाना खाए जिस तरह खामना तिसके ये सबास नान को हुक्म ना चले नाल खसम चले अदास
1: जन्ना अंत
2: हाँ तुसी सरवन कर रहे सी श्री दरबार साहेब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले सवेर दे 6 बज रहे ने। हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे समाचार साडे दिल्ली केंद्र तो।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। संसद ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल और लोकसभा

0: ने इसे सोमवार को पारित किया था। विधेयक में संशोधन के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। राज्यसभा में विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के लोग हर क्षेत्र में सुधार देख रहे हैं और यह विधेयक न्यायिक सुधारों का ही एक हिस्सा है।
1: न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति, उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है।
0: लोकसभा में बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पारित हो गया है। विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाना है। इसका लक्ष्य वर्तमान बैंकिंग कार्यप्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कानूनी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला ढोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ. वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। उन्होंने कहा कि सरकार नमस्ते स्कीम के अंतर्गत ऐसे लोगों को टिकाऊ आजीविका के अवसर देना जारी रखे हुए है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के

मैं सांवला ना मार नैना दे तीर तुसी अख्तर अली मतोई मैं तुसी अख्तर अली मतोई दी आवाज गुलाम फरीद दा एक कलाम सुनिया चढ़दे सूरज ढलदे देखे बुझदे दीवे बलदे देखे हीरे दा कोई मुल न जाने खोटे सिक्के चलदे देखे जिना दा ना जगते कोई ओ भी पुत्र पलदे देखे ओदे रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे लोकी कहंदे दाल नी गलदी मैं ता पत्थर गलदे देखे जिना ने कदर ना कीती रब दी बोलिया हथ खाली ओ मलदे देखे हथ खाली ओ मलदे देखे ते आओ हुण सुनदे आ सरबजीत दी आवाज विच शाह हुसैन दा कलाम दिल लालिया बेपरवाह दे नाल उस दीन दुनी दे शाह दे नाल मन लालिया बेपरवाह दे नाल उस

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस उधरे 9870 किलोहर्ट्ज़ से तय खान सवाए तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन योर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुझ सकना है। प्रोग्राम शुरू थी चुका है तफसील कुछ तरह थोड़ी देर में तमा हमेशा भगत करम साहब जन जी मिठड़े आवाज में लोली बुधंदा तय खान पोए तबसरो पेश कंदो और पोए तमा अंबी कृष्ण प्रोग्राम तहत अज सुंदरी उत्तम चंदाणी का एक नंडी कहानी बुधंदा खास खास खबरों प्रोग्राम के आखिर में शेयर कई वेंदे प्रोग्राम की डिटेल्स आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुधरी भगत करम साहब जन के सदाबार आवाज में लोली बुदूँ।

धनबाद कॉलम साहब जन जी मिठड़े आवाज में लोली बज रही आकाशवाणी जी सिंधी सरसाई और पेश है तफसरो परदेस भजी वेले डोहन के खिलाफ एक फैसलेदार कदम खणंदे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सरप्राइज तहत मरकजी गृह वजीर श्री अमित शाह के गायणे सहित भारत साल 2019 का वी अज डी तीन 36 मुल्क में 274 भजी वेल डोहन के वापस मुल्क आने चुको है डोहन खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साल 2018 में फिगेट इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट खियांदो गृह वजीर श्री अमित शाह के सरबराही तहत भारत एक सालमी जहन आधारित ए टेक्नोलॉजी से आधारित पाड़े में वजी वेल माशी डोहन के वापस आने के लिए एक सरिश्तो तैयार किया है साल 2014 का अग में मुल्क जो पड़े में डोहन के वापस आने जो को कानून हो सो वो दिखारज हो भारत जो डोहन के वापस आने जो करार महज 17 मुल्क सा हो तेमें भी माशी डोहन के वापस आने लाए को खास कानून को न हो इन अग में जो सरकार में सियासी इच्छा शक्ति कानी डोहन के वापस आने जी पर मोदी सरकार डोहन के वापस आने के कोई अवलत ते रखे सख्त कानून आंदो इन तहत एक 18 स्टेजेस वाली हिकमत अमली आंदी वही तेमें हो एकड़ो आलम भर में पहुंच मजबूत सहकार ए स्मार्ट डिप्लोमेसी मोदी सरकार एनआईए दुरुस्ती एक्ट खे आंदो इन अलावा यूएपीए दुरुस्ती एक्ट के 2019 में आंदो ए 2020 का वी कर इन डोहन के वापस आने जो कम मिशन मोड से शुरू थी वो साल 2024 में मोदी सरकार टे नवा डोहन जहा कानून आंदा तिनमें खास शर्त रखा गया परे में डोहन के आने के लिए पहले भेरों सेक्शन 355 356 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तहत जैसे मुल्क में डोही कौन आन तब संदन मथा केस हलया वो पूरी अदालती कार्रवाई की वी साल 2022 में भारत इंटरपोल जनरल असेंबली जो 90 इजलास की मेहमान नवाजी कई जैमें श्री शाह जोर डींदे आलमी पॉलिसिंग जहा टे अहम थम्ब आन दूर मुआसला सहकार ए तावन कॉर्डिनेशन के मजबूत करो खपे इन अलावा मुल्क मंझ खबरचार जी खुफिया खबरचार के वंडन इन समय गृह वजीर भारत पोल जनवरी 2025 में लॉन्च किया भारत पोल में खबरचार जो एक वसी सरिश्तो है तेमें घणे इदारन के शुमार किया हुआ है सीबीआई सूबा पुलिस सदर मकाम जो इंटरपोल से लाइजन वर्क के जरिए कम कन्द इन अलावा सूबा पुलिस सदर मुकाम जेके एक ही प्लेटफॉर्म से गड़ी कर कम कंदा इन कार्रवाई तहत सूबन ए मरकजी एजेंसियों जहा 1400 का भी यूनिट्स इन पोर्टल जरिए पान में गंडियल जैसा बिना रुकावट के खबरचार हली रही है नतीजन सीबीआई ए बेन कानून लागू कदड़ इदार मंझ खबरचार वंडी पी वे मोदी सरकार मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के पण तमाम सख्त अमल में आंदो है इन तहत साल 2019 का वी कर 2026 दरमियान माशी डोहन जहा 17,874 करोड़ रुपया तेजी मिल्कियत खी वही है डोहन के वापस आने लाइ आलमी कोशिश के वधिक पुख्तो करने लाइ सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक खास आलमी ऑपरेशन सेंटर बर्पा किया हुआ है जैं तहत खबरचार की एकदम मट सटा कई वी है सीबीआई मुकर्र इंटरपोल कॉन्टेक्ट ऑफिसर से टच में रहना है इन तरह से तावन वधी वो है डोहन के आने में आलमी सहकार पण वधी वो है सब जी सोभ कहीं पुठिया भारत में आए एक मैस चांस करे नतीजो को आयो है कोई इतफाक को जो यो नतीजो है पर इन लंबे अरसे कार्रवाई हली रही हुई इन डिस में इंटेलिजेंस ब्यूरो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रॉ यानी कि रिसर्च एनालिटिक विंग एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर
पाड़े मामले की वजरात एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो डायरेक्टर जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी इन अलावा टैक्स इंटेलिजेंस सूबाई पुलिस ताकतों ये सब यकमुश थी अमल में लगल हुआ तो तफसर बुध रहा।

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डी डी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: प्रोग्राम अदबीवचन इन प्रोग्राम तहत पेश आहे नंढी कहाणी। कहाणीकार आहे सुंदरी उत्तम चंदाणी।
2: संदस पसंदी। अखियूं हेठ कर, अखियूं हेठ कर, चेमे अखियूं हेठ कर, मगर नवा भित बनी माउ तरफ ॾिसंदी रही। हाणे माउ पादर हथ ॾिठा, हाणे हाणे पादर अखियूं हेठ कढी थी आना। पादर ॾिसी नवां जूं अखियूं खुद ब खुद छिलजण लॻियूं। डप जी लहर संदसि बदन में स्याक विधो। खेस ॾकंदो ॾिसी मां पादर खणी हेठि उचलियो। सुबियल बूथ सां नवां चयो, सनाना जो टॉल सरला फुटे वई न, सो छा थी पियो? ॾहणियूं छो अची मुंहिंजो रक्त पीतो अथव? चवंदा आहिनि हिकड़ी गिपा तंहिं भर बि लिका, हिते विचाई चार चार गिपूं, हाणे उन जो भाव बि फिटाए रखियो अथव। उथाए खण टॉल, सला फिटो करे वई थी पलंग ते। टॉल आलो हो, नवा उन तरफ ॾिसण लॻी, पर उथी खयई की न। मां चयो, खणा खणा न वरी पादर। नवा जे बदन में वरी हिकु ॾकण जी धार पइजी वई। हाणे उथी उहो टॉल खयई, पोइ भुन भुन कंदी वञण लॻी। पहिरीं खयमि त फुरे वई, हाणे आलो थियो तॾहिं। अई ॿुधाए त सर लाकी रखे तुंहिंजी देन थिए न ॾाहिण देन खे नथी सही। अॻिते हली कानराम ॾेराणी तोखां सुहिणी मिले त हुनखे बि कान सहंदी। नवां वेंदे वेंदे वरी माउ तरफ़ यकट निगाह सां ॾिसंदी वई। सनान करे मोटी त नवां जूं अखियूं ॻाढ़ियूं पई लॻियूं। टॉल खणी ॿाहिरि दालान में झली ते सुकाइण पई विधाई, जो ॾिठई त भाड़ भेनर कुमर करे हासा मासी खे हथ ॾेखारियो। नवां छिप चाप अची वञ मेराके जे पुठियां वेही रही। मासीअ चयो, छो वॾे ॾींहुं तूं छो कान थी हथ ॾेखारी? नवां जे मलुन मुंहं ते बुरक वरी वई। भेनरुनि खे परते करे हथ वधाए मासीअ वटि सिरी आई। हा मुंहिंजो बि हथ ॾिसी ॿुधायो न मासी। मासी होॾी मां चओ, तोखे त इहा बि ख़बर कान्हे त ज़ालुनि जो ॾाहो हथ ॾिसबो ऐं मर्दनि जो साॼो। खिलंदे खिलंदे नवां जे वॾे भाउ गुलाब टोक हुई, हिनखे त इहा बि ख़बर कान्हे त ज़ालुनि जो अकुल वॾाई खुड़ी खणी मथे चढ़ण शुरू कंदो आहे। नवां जी वॾी भेण सरला टहकनि में अची छुटकी, खिलियल खिलियल खिचई, शुक्र गुलाब इहो त मञो त ज़ालुनि वटि अकुल आहे त सही, पोइ ॾाही खुड़ीअ खणी सही। मासीअ चयो, सरला तूं त एॾो न खिलंदी कर, सॼी ॻाढ़ी लाल थियो वञे, पुट न खिले एतिरो, नज़र न लॻी वञे। माउ बची में मेराके जे पुठियां बीठी हुई, चवण लॻी, सरला जो हथ त ॾिस, कॾहिं वञी पंहिंजे राजकुमार वटि राज कंदी? हीअ त धीअ मुंहिंजी आहे मलूकरी, इहा त साड़ीअ में अघा में वेंदमि। अखियूं फाड़े मासीअ चयो, पर नियाणीअ जो हथ ॾिठो अथई, इहा मलूकरी सरला को शाहूकार घर में कान वेंदे, सदाई पूरी सूरी रहंदे। माउ खारनि में चयो, बस बि कर हाणे जोखियूं, हथनि जूं वीकूं बि पयूं समय सां फिरनि फिरनि, शुभ शुभ बोल, सरला न मुंहिंजी राज कंदी त हीअ मम्मी मोणी नवा कंदी। मासी नवां जो हथ जाच जाच वेठे ॾिठो। माउ चयो, छा लाइ वेठी वञे कारी कुमारी जो हथ ॾिसी? अॼुकल्ह छोकिरनि खे खपे मुंहुं मोचारो, हिन मुठीअ जो त न आहे रूप न आहे रोश, हीअ छोरी त पीढ़ीअ ताईं पई हुन जे पनाड़े। राम चओ राम, चपनि खे भीरो ॾेई मासी रड़ कई, हीअ त राणी राज धियाणी अथई, संदसि भक्त जेतिरी ते बोले, राणो छा असल नाणे जी खुर्सी अथई हिन बाग में। जमा सूंड पाए ॿिए तरफ़ ॾिसण लॻी। ॻाल्हियुनि कंदे साल गुज़री विया। छोकिरियुनि जे माउ पीउ खे भेणनि खे रोकण जी ॾाढी चिंता हुई। वॾी धीउ सरला, हुन लाइ त माइटियूं घणे पिया आहियूं, पर रीति नीति में अखोखलो ॿुधी सभु मोटी पिया आहियूं। आख़िर हिकड़े ग़रीब छोकिरे सरला जो संग क़बूलियो। मां ॾिठो छोकिरो शिके सूरत में चङो आहे, वर्ताउ बि चङो अथसि, इन करे खणी हा कई। सरला अघणी, पोइ त माउ कंध खे विहाणो ॾेई छॾियो, चई हाणे वरी जॾहिं गुलाब कमाइण लॻंदो तॾहिं टी नंबर छोकिरी जो पढ़ाईंदसि। न मां बूथ सुॼीअ लाइ त माइटी ॻोल्हणी भित सां मथो टकराइणो आहे। पर थियो ईअं जो ओचितो सीटे मां लंघी आई नवां जी ॿाह घुरण। नवां जी माउ चयो, सीतलमा छोलू।

కానీ ఇది సీఐ ఏం చేయాలనక శీతల మాత్రం నమిటి నీ పుట్ట ఖుద్దు ముఖ్య ముక్కువాయ్ నా అది మా అంకురంలా తెడం నా అది మాకు ఏర్పార్కినా చే అమ్మ సోచక సేని తూ రోజు మని దుకాణ వటి ఫ్లాట్ వటి ఓ బతాయి నానా ఠాయింది సో కిథే తూ కిథే మా ఉఠామి హండా కియా మిలా శీతల మా ఖిగ్రాటరీ పాచవ్ అజా దిల్ నమంది కర మీర వారు వారి కే మిలందు ఆ सदा तो यो गुलाब वधनो ही जनो पर गाल ही है कई जमी जो सीतल तीन सालन खाते ये धी ते मोहत है बेचारे कई घेरा तुझे छोकरी दग झलो है पर हु आए जतरी तेल लान थी रेस तीन संगस मन पे चंचल थे ना जो माँ जो सीतल माओ तू पुत के गाल में अच्छी ना अज तो मुझे धीए मुझे पंजी है कुनी में समाई पई है बाकी ये तो खेल न तो थी पढ़ाई पई जे तुझे पुट चवे हाने में जी बीए कें बोचारी छोकरी ते वनी अख पई है तो मां के रहंगस अली भेण में जी कुछ गाल के समझो जी तो कोशिश कर मुझे शीतल पुठ घणी तो पठी फिरी है हु बेचारो पोए पते जे दी जी आस रखे उठो है मां बका वे लकी ना जो कदे हम तुझे दी के कदी पिटो कंदस उन मैला मासी बची के था पर घर थी नवा जी मां के हाने मासी में मनाने लगी थी हेरो एक्टर जरो छोकरो तो मिलेस तू छाला वेठी वे में करी मां चो कुछ समझो बुथियो कि ना मर्द जात जो मन चंचल सोई मुझी नवा संदस चेरी सीनी हुए तकंडी खली ब्यास शीतल मां चो अमा पहले यो तो मुखा पुछ तो जे छोकरी जे छोकरे जे पुठा स्कूल कॉलेज का छोकरी भई मरन सो छोथो तो न्यानी घुरे हाँ चाहो छोथो मुझी अब सावरी नवा घुरे प्यारी हूं चवे थो जेके छोकरी जेका छोकरी बेन छोकरा ना अखणी कोन थी न्यारे परण में होशियार हर हुनर में काबिल साए गंगा जल जेरी पौतर तोखे छा बुधाया तो मुझे शीतल कियो भई मनायो है मुखे हाणे ये सजो घर ते नवा बाई जे फोटन सा भरी छड्यो अथस हाँ घर निकली रही नवा जी माँ का तने बदनाम कर चुको है मुझे मासूम दी के मासी चयो नवा जी माँ अकुल तुझो शायद हवा खेण वियो है कदे लैला मजनू के सो बुधो अथई छा हो लैला में हिते सवाल आए दिल जो देख लो जी मां शादी की पकड़नी सरला भी घोट सूदी हणे टिकण आई नवा वड़ी वड़ी ॾाढी उदास नजर सा ते माँ ए पी ए सजे घर तक ॾिठो आखिर शादी थी गुजरी ॾाढी धाम धूम हुई इन शादी में ये ॾींहुं जॾहिं सतावर करण लाइ नवा पेकनि में कदम रखियो तॾहिं वाइड़ी थी वई चोट ते पेर मस रखी वई जो मां सची खेसि भाकुर पातो ॾींहुं खेसि अचरज भरियल अखियुनि सां ॾिसंदी रही पर पेके घर जी अहिड़ी का बि नज़र कान हुई जा वरी नवा खे मोट में न निहारींदी हुजे नवा जा मणिया नवा जो वेस वॻो हल्को मेकअप सारे महले खे मुअतर कंदड़ अत्र ई सुरहा सभिनी जूं अखियूं वञी खुदियूं नवा में मां हिकु भेरो वरी नवा खे गले सां लाथो नाठी पेरे पियो त सवरे खणी ॾिनी ॿाहुनि में धीअ नाठी खे भाकुर में बीहारियो मेहमान सभिनी गॾिजी वई खाधो हवा मोटड़ी त मां नवा खे इशारो करे नंढी कोठी में वठी वई खांस वेठी साहुरनि जो वर्ताव पुछण नवा चयो मां तोखे सभु कुझु पोइ ॿुधाईंदसि पहिरीं तूं ॿुधाए तो मूंखे हेॾो भाकुर कीअं पातो तूं त मूंखे सॾींदी कारी भला हुई तॾहिं मां ईअं सम्झा त सॼी माउ बि धीउ खे शाहूकार घर में पढ़ियल ॾिसी प्यार कंदी आहे बिराटरी पाए माउ धीउ खे चयो मां धीअ ईअं कान्हे पर तोखे अॼोकी शुभ ॾींहं ते इहो सभु दर्द दास्तान ॿुधाइण ते मुंहिंजी दिलि नथी थिए तॾहिं मां जा ॿई त पके धीउ चयो कुझ बि हुजे जल्दी ॿुधाए मुंहिंजे हिकिड़े भाकुर लाइ राति रो ई गुज़ारियो आहे अॼु मां ॾाढी ख़ुशि आहियां लख शुक्राना पंहिंजे शीतल जा थी मञा जंहिं मूं लाइ ॿिन्ही घरनि में ख़ुशीअ जा द्वार खोले छॾिया आहिनि माउ जी अखियुनि में ख़ुशीअ जा आंसू भरिजी आया पर दर्द वरी मुर्क संदसि मुंहुं निर्मल करे छॾियो नवा ॿई बाहूं खोले हिकु वार माउ खे वरी बि खणी भाकुर में भरियो मां सुॾकण लॻी तॾहिं धीउ वरी पुछो ॿुधाए मम्मी तुंहिंजे मन में हिन फेरे जो राज़ कहिड़ो आहे थधो साहु खणी माउ चयो मिठी तोखे छा ॿुधायां तुंहिंजो डैडी हो सिंह मां होसि तोखां बि कारी हीअ त ॿारनि खां पोइ मुंहिंजी चमड़ी जी कट लथी आहे न त शादी महिल त हथ हल में संदसि बिजली जहिड़े हथ में पंहिंजो सांवरो हथ ॾिसी मां त बहिजी वई हुयसि डैडी तोखे चूंडियो कीअं भला वरी इहा दर्द ॿुडल मुर्क फैलजी वई माउ जे चपनि ते धीअ माइट मुंहिंजो शाहूकार हुआ तमामु शाहूकार

0: मुझे डैडी की विलायत की दुकान में मैनेजर करे रखे इन्हें करे शादी करनी पस पर तुझे डैडी इतने बार पी थे काई सुई छोकरी दिसन है तो सीखार भरी है कदे मुझे मुंह से भी चई दी है हाय किस्मत कड़ी कारी कुमारी लिखी मुझे नसीब में तुके बुझा दिए पति पत्नी के विच में एक बे में मुंह की गंध बदजी वही है सा कदम की न बदजी सकी इन मां तो कीमत कारी है पर हकीकत में या पान के भूंदा हुई है तो छो अड़ी सावणी थियस जो तू जेड़ी सावणी हो जन्म दिनम अंदर ही अंदर एक डप पो कोड़ी अथम तू ये भी शादी कही तो मुख से हर सीनी छोकरी में अख अटकल दसी पी गजी थदो सा खी माओ के दिल से गई है हमदर्द से नवा चो मुझी है तुम ये नी मिले शीतल उन्हीं में सचो हुआ है तीन साल का अस एक बे के मन में चाहिंदा रहा हूं असाई शादी तो वगुर कान ये लव मैरिज है पान पसंद करे मुख्य वो दस मां संदस पसंद आया
1: तो सौंदर्य उत्तम चंदाणी का नंबी कहानी बुधरी है हर शत बुध अनवर सन वस्त्र जवास में कलाम।

ਵਿਓ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿਸਰੀ ਲੁੱਡਣ ਮੱਥੇ ਲਾਮ ਬੈਠਾ ਕੀ ਨਫਣ ਮੇ ਛੱਪਰ ਮੱਥਾ ਸ਼ਾਮ।

आकाशवाणी जी सिंधी सरसाईर पेशन खास खास खबरों नई दिल्ली इस्लामाबाद के चवे तो पाकिस्तान पारा बेकायद खैल जम्मू कश्मीर में रतो छाण की कार्रवाई के बंद किया वे तवे दहशत अंग्रेजी के नेटवर्क के खत्म किया वे बेकायदे खैल भारतीय इलाके के खाली किया वे। मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग भारतीय सरकार का चाइल्ड अब्यूज मटेरियल डीप फेक संदस प्लेटफॉर्म पे थींदड़ गलतियों लाए माफी वरती है। चाइना ऐलान किया है वॉशिंगटन खिलाफ जवाबी माशी कार्रवाई कई वी तंहिंमें अमरीका ना वेंदड़ ड्रोन के रवानगी से जब्तो पढ़ाया वेंदो। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की तन्वी शर्मा अनमोल खाब बिन सतन भारतीय से गड असल में वुमेन्स सिंगल के बे राउंड में पहुंची चुका है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सेरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकते हैं। श्री मोदी ने श्री टेड के साथ मीडिया और मनोरंजन केंद्र पर चर्चा की। नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा की गई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
1: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीकास।
2: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारे

0: द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखी और फंसे हुए श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी संभव संसाधनों को जुटाना सुनिश्चित किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें भारत के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही पहलों की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पर श्री जोशी ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रमुख कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाने के साथ साथ शिक्षा की गुणवत्ता और सुलभता को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। इस अवसर पर आयोग के उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार लाहड़ी ने कहा कि ध्यान चिकित्सा उपचार पर नहीं बल्कि देखभाल पर केंद्रित है और देखभाल उपचार से कहीं अधिक व्यापक है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। महाराष्ट्र में डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा है। डॉक्टर सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसके तहत होम्योपैथ को महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद ने पंजीकरण कराने और 6 महीने का प्रमाण पत्र लेने के बाद एलोपैथिक दवाएं लिखने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में डॉक्टर एसोसिएशन ने आगाह किया है कि अगर सरकार बातचीत शुरू नहीं करती तो 24 घंटे बाद आपातकालीन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बेहद गंभीर मामलों में इलाज जारी रहेगा। ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी सप्ताह यह समझौता हो सकता है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमरीका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has underscored that India has a rich tradition of storytelling and extraordinary pool of creative talent which can be leveraged to strengthen the nation's position as a global hub for content creation. In a social media post, Mr. Modi informed that he met the co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, in New Delhi. The Prime Minister also noted that during the meeting they discussed the immense potential of India's media and entertainment sector. Meanwhile, Netflix India said that during the meeting, the two leaders discussed their shared vision of taking India's media and entertainment industry to the global stage. The streaming platform also announced the launch of the Netflix India Storytelling Initiative, an investment aimed at nurturing the next generation of India's creative talent through skilling and education partnerships with the Indian Institute of Creative Technologies and the National Film Development Corporation.
2: India has urged Sri Lanka to cooperate in the early release of Indian

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर सुबह के 7:10 और 15 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे सत्यम वर्मा के गाए भजन।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप सत्यम वर्मा के गाए भजन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। दोस्तों, हम में से कुछ लोग सुबह की शुरुआत मॉर्निंग वॉक से करते हैं।

और कुछ चाय से, और कुछ जिम या योगा ज्वाइन करके करते हैं, और कुछ प्रभु सिमरन से। और दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह सुबह उठकर बुक्स भी पढ़ते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो आप बताइए कि आप सबसे पहले अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं इस प्यारे से नगमे के साथ।

दोस्तों, अक्सर हम अपनी जिंदगी में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हर सुबह हमें एक नया अवसर देती है खुद को बेहतर बनाने का या फिर बेफिक्र होकर मुस्कुराने का।

दोस्तों, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों के मोहताज नहीं होते, बस केवल दिल में महसूस किए जाते हैं, बिल्कुल इस गीत की तरह।

0: केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना।

तेरा साथ है तो हर लम्हा सुहाना लगता है। तेरा साथ है तो हर लम्हा सुहाना लगता है, वरना अकेले तो ये शहर भी वीराना लगता है। हंसते मुस्कुराते कट जाए ये जिंदगी अपनी, जब तुम पास हो तो हर गम पुराना लगता है।

दोस्तों गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को इजाजत दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। नमस्कार।

0: अभी आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर कुछ ही पलों में आप सुन रहे हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है जिसका उपयोग देश को वैश्विक स्तर पर सामग्री सृजन के केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने

0: से थोरमोस जलता नंबर थे पार किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेटफ्लिक्स के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सरेंडोस के साथ कल नई दिल्ली में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत में कहानी कहने की समृद्ध परंपरा रही है और देश में ऐसी कई रचनाधर्मी प्रतिभाएं हैं जो भारत को सामग्री सृजन का वैश्विक केंद्र बनाने में सहायक हो सकती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
1: हमें एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते हैं।
0: नेटफ्लिक्स के अनुसार दोनों पक्षों के बीच भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने को लेकर चर्चा हुई। नेटफ्लिक्स ने नेटफ्लिक्स इंडिया स्टोरी टेलिंग इनिशिएटिव शुरू करने की भी घोषणा की है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव डॉ टीवी सोमनाथन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। नियुक्ति संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने कल इसकी मंजूरी दी। डॉ सोमनाथन का कार्यकाल इस महीने की 30 तारीख को समाप्त हो रहा था। समिति ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल भी एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत अफ्रीका के साथ ऐसे सहयोग के पक्ष में है जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए स्थानीय क्षमता बढ़े। नई दिल्ली में कल अफ्रीका दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।
2: इंडिया इज प्राउड टू बी वन ऑफ अफ्रीका।
3: भारत अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापार और निवेश साझेदार होने पर गर्व महसूस करता है। पिछले साल हमारा द्विपक्षीय व्यापार 93 अरब अमरीकी डॉलर रहा। भारत 80 अरब डॉलर से अधिक के निवेश के साथ अफ्रीका के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। ये निवेश दूर संचार, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, बुनियादी ढांचे, कृषि और डिजिटल सेवाओं जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के संबंध 10 सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में युगांडा की संसद में की थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान असाधारण साहस और निस्वार्थ सेवा के लिए 12 खदान श्रमिकों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया। इस अवसर पर नई दिल्ली में श्री गडकरी ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग का रहना हाल के वर्षों में सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक था। संसद में आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। इस विधेयक का उद्देश्य भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन करना है। राज्यसभा में विनियोजन विधेयक पर चर्चा निर्धारित है। इस विधेयक में मार्च 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कुछ एक सेवाओं पर खर्च की गई राशि का भुगतान भारत की संचित निधि से किए जाने की व्यवस्था की गई है। ये विनियोजन उस वर्ष सेवाओं के निर्धारित से अधिक राशि के भुगतान के लिए किया जा रहा है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। सरकार ने कहा है कि 2024-25 के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अब कहीं भी हाथ से मैला धोने का काम नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने कल राज्यसभा में बताया कि 2013 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में 58,000 और 2018 के सर्वेक्षण में 98 ऐसे लोगों की पहचान की गई थी जो हाथ से मैला ढोते थे। डॉ वीरेंद्र ने बताया कि इन सभी को 40,000 रूपये की सहायता पुनर्वास के लिए दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। राज्य में विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। पिछले चार दिनों से भूख हड़ताल कर रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा नेता देवेंद्रनाथ महतो के साथ 5 प्रदर्शनकारी शामिल हो गए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। ब्लड शुगर और रक्तचाप कम हो जाने के कारण श्री महतो के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो गई है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल कहा है कि उनकी सरकार विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए संकल्पित है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर राजधानी रांची में 25 जुलाई से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। प्रदर्शनकारी विद्यार्थी 14वीं झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। नीति आयोग ने री इमेजिंग केयर स्ट्रेटेजीज फॉर

0: एम्पावरिंग केयर गिवर्स इन विकसित भारत एक्ट 2047 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट समावेशी विकास और सामाजिक उन्नति के साथ ही कुशल देखभाल पेशेवरों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत की क्षमता को मजबूत करती है। रेलवे ने आदर्श रियायत करार में सुधार को मंजूरी दे दी है। इससे कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को एक ही लाइसेंस से देश भर में कंटेनर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाएगी। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। इस मंजूरी के साथ ही अलग अलग मार्गों के लिए अलग अलग पंजीकरण कराने की व्यवस्था बंद हो गई है। नई व्यवस्था के तहत ऑपरेटरों को 20 वर्ष तक के लिए अनुमति दी जा सकेगी। मंत्रालय के अनुसार कंटेनरों की रेल ढुलाई से सड़क यातायात की भीड़ कम होगी, ईंधन की खपत में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में गंभीर सुरक्षा स्थिति के बावजूद हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर 60 व्यापारिक जहाज सुरक्षित निकाल आए हैं। संसद में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खाड़ी क्षेत्र से 3972 भारतीय नाविकों को स्वदेश भेजा गया है और 2400 घंटे काम कर रही आपदा प्रबंधन प्रणाली के पास हजारों फोन और ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ऊर्जा आपूर्ति के लिए दुनिया का एक प्रमुख जलमार्ग है। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द रिहाई में सहयोग करने का आग्रह किया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कोलंबो दौरे के दौरान श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। विक्रम मिश्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अरुणा कुमार दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या, विदेश मंत्री विजेता हेरात और विदेश सचिव अरुणी रणराजा से मुलाकात की। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसी सप्ताह ये समझौता हो सकता है। एक रिपोर्ट।
1: संभावित समझौते से हॉर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खुल जाएगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव कम होगा और युद्ध समाप्त करने में भी मदद मिलेगी। हालांकि समझौता इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाता है या नहीं। ईरान ने कहा कि वह हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर एक हद तक नियंत्रण चाहता है और इस मार्ग से आवाजाही वैसी नहीं रहेगी जैसी युद्ध से पहले थी। ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के उत्तरी हिस्से को जबकि ओमान दक्षिणी हिस्से को नियंत्रण करने के लिए बातचीत कर रही है। ईरान युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण चाहता है। ईरान ने आगाह किया कि अमेरिका के किसी और हमले की स्थिति में वह खाड़ी देशों को निशान बनाएगा। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: जापान के हिरोशिमा में आज परमाणु बम गिराए जाने की बरसी है। सन 1945 में हुई इस घटना में 1,40,000 लोग मारे गए थे। आज सुबह घटनास्थल पर पीस मेमोरियल पार्क में मौन रखा गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने परमाणु हथियारों को खत्म किए जाने की अपील की। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु बम गिराए जाने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियों को घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव अभियान सुनिश्चित करने को कहा है। उत्तराखंड आपदा विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया गया है।
2: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। 3 जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: राज्य में मौसम के बारे में और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता।
3: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभावित आपदा की किसी भी स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य की सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी रखने पर भी जोर दिया है। उन्होंने आपातकालीन परिचालन केंद्रों को 2400 घंटे सक्रिय रखने और प्रत्येक घटने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में जनहानि को रोकना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: मौसम विभाग ने आज झारखंड, गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी आज तेज बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार आज दोपहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ स्थानों पर

0: मध्यम वर्षा की संभावना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अपनी तीक्ष्ण वाक्पटुता, संवेदनशील नेतृत्व और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट समर्पण के बल पर सुषमा स्वराज ने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट स्थान अर्जित किया। खेलों में जूनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी में ओडिशा, पंजाब, झारखंड और मध्य प्रदेश की टीमों ने कल तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खेले गए 16वें भारतीय जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन ए के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कोयम्बटूर में आज सेमीफाइनल में ओडिशा का मुकाबला पंजाब से जबकि झारखंड का सामना मध्य प्रदेश से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
1: संसद में जारी गतिरोध समाप्त करने के प्रयास के तहत संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया। जनसत्ता लिखता है संसद गतिरोध, राहुल गांधी से मिले रिजिजू, परिसीमन और एफसीआरए पर राहत तलाशने की कोशिश। जकरबर्ग ने भारत से मांगी माफी, फेसबुक से पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर आंखें झुके मेटा प्रमुख, अमर उजाला सहित कई अखबारों की सुर्खी है। पत्र लिखता है मेटा ने माना, खास तरह का कंटेंट बढ़ाने के लिए मिली थी मोटी रकम। दैनिक जागरण ने अपने आर्थिक पन्ने पर आरबीआई गवर्नर के शब्द प्रकाशित किए हैं, लगातार चौथी बार रेपो रेट 5.25% पर स्थिर। गवर्नर ने कहा पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहा तो ईंधन और खाने पीने की चीजें हो सकती है महंगी। नीट होगी फुल प्रूफ, जेईई तर्ज पर परीक्षा की तैयारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दिया हलफनामा। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर युवाओं के नशे में गिरफ्त होने का लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है ताकि नशे की गिरफ्त में न आए युवा। पत्र लिखता है भारत में करीब 75% युवा 21 साल की उम्र तक किसी न किसी नशे का शिकार हो चुके हैं। परिवार और शिक्षक संजीदगी से संवाद करें तो उन्हें नशे से बचाया जा सकता है। ईरान और ओमान होर्मुज खोलने पर हुए सहमत, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है ईरान को होर्मुज पर मिल सकता है कंट्रोल। दैनिक भास्कर ने कोटा में नौनेरा एब्रा डैम के बंद होने के बाद काली सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से चारों तरफ छाई हरियाली का चित्र प्रकाशित किया है, जिसमें पानी के ठहराव से नदी किनारे बसी कराइयों और हरी भरी वादियों का सौंदर्य चरम पर है।
0: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में रचनात्मक प्रतिभा का असाधारण भंडार है। सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव टीवी सोमनाथन और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का प्रदर्शन तेज। उत्तराखंड में तेज बारिश की चेतावनी के बीच सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर। भारत ने श्रीलंका से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई का आग्रह किया और भारत के 60 जहाजों ने सुरक्षित होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबीना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तआवुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान अबनाए हुरमुज से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चुनाव

0: मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक सीईओ टेड सेरेंटोस से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि मस्कुरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें।
1: हमें एक साथ मिलकर क्रिएट ऑन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करें। हम भारत से जुड़ी स्टोरीज को, भारत की संस्कृति को, भारत के हेरिटेज और ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया से शेयर करें। आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करिए जो आपके साथ ही भारत को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक्स दे। और इसके लिए हमें ग्लोबल ऑडियंस को भी एंगेज करना होगा, दुनिया के नौजवानों के साथ जुड़ना होगा। आज पूरी दुनिया में लोग भारत के बारे में जानना चाहते।
0: इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकतदारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत की तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। सरकार ने काबिना सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकद्दुरी से मुतालिक काबिना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबिना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबिना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मजकूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीर के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल नंबर 3 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। झारखंड असेंबली के आज से शुरू होने वाले मॉनसून इजलास से कबल दो खवातीन समेत एहतजाज करने वाले 5 अफराद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर देवेंद्र नाथ महतो के साथ शामिल हो गए हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। मृतों की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर काफी कम होने के तनाजुर में उनकी सेहत तशवीश का मामला बन गई है। रियासत के वजीर आला हेमंत सोरेन ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार तलबा के मसाइल हल करने की पाबंद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले पर काम कर रही है। जनाब सोरेन ने यह भी कहा कि मुतालिका एजेंसियां दिन रात तफ्तीश का काम कर रही हैं और कसूरवार अफराद को जेलों में भेजा जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन JPSC और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC इस्लाहात मंच के परचम तले एहतजाज 25 जुलाई को शुरू हुआ था। मुजाहिरीन का कहना है कि बार बार की अपीलों के बावजूद किसी तरह की ठोस कार्रवाई करने में सरकार के नाकाम रहने के बाद उन्हें एजिटेशन करने का रास्ता इख्तियार करना पड़ा। ये मुजाहिरीन 14वें झारखंड PSC सिविल सर्विसेज इम्तिहान मनसूख किए जाने और भर्ती के इम्तिहान में मुबैना बेजाबतगियों की आजादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनजर देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी मराकज में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर सख्त चौकसी बरतें। उन्होंने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला इंतजामिया और दीगर एजेंसियों से कहा है कि वो करीबी तालमेल कायम रखें और किसी भी तरह की हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। वहां के बाशिंदों और सयाहों को ये सलाह दी गई है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें और किसी भी तरह के सफर पर बाहर निकलने से पहले मौसम और सड़क रास्तों के बारे में ताजा जानकारी

0: हासिल करें। हमने रियासत में हाई अलर्ट जारी किए जाने के बारे में कुदरती आफात से पैदा सूरत हाल से निमटने और बाजाबादकारी महकमे के सेक्रेटरी विनोद कुमार सुमन से बात की।
1: उत्तराखंड के लिए अभी जो अलर्ट आया है वो देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उत्तराखंड के शेष जनपदों के लिए येलो अलर्ट है। तीन जनपद जहां पे ऑरेंज अलर्ट है वहां पर ज्यादा बरसात की संभावना है और बाकी जनपदों में नॉर्मल बरसात होगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं विभिन्न माध्यमों से और SMS के माध्यम से हम लोगों को अलर्ट करते हैं।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली के बाज हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में तावुन करे जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने यह बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निमटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के तबादले ख्याल के दौरान यह मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिश्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके, वजीर आजम हरिनी अमरसूरिया, वजीर खारिजा और खारिजा सेक्रेटरी के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। सरकार ने कहा है कि मगरबी एशिया के खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल कशीदा होने के बावजूद आबनाए हुरमुस से 60 माल बरदार बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। पार्लियामेंट में एक सवाल के जवाब में सरकार ने यह भी बताया कि खलीज के खित्ते से 3972 भारतीय मल्लाहों को वापस लाया गया। साथ ही बहरान से निमटने से मुतालिक दिन रात काम करने वाले निजाम के जरिए लोगों के मुश्किल में घिरे हुए हालात के ताल्लुक से फोन कॉल्स और ईमेल्स पर कार्रवाई की गई। ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुस के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस हफ्ते समझौते का ऐलान किया जा सकता है। ऐसा होने पर अहमियत की हामिल आबी गुजरगाह फिर से खुल जाएगी, आलमी मईशत पर दबाव कम हो जाएगा और जंग के खात्मे में मदद मिलेगी, लेकिन ईरान की बंदरगाहों पर अमरीका की नाकाबंदी हटाने के ताल्लुक से इसमें खैर यकीनी की कैफियत का इम्कान है। चंद इंतजामिया ने इससे कबल ऐसे किसी भी मुआहिदे के इम्कान को रद्द कर दिया था जिससे आबनाए हुरमुस पर ईरान की गिरफ्त मजबूत हो सकती हो, जो अमरीका के लिए एक बड़े नुकसान के मुतरादिफ होगा और आलमी जाब्तों से भी इन्हिराफ होगा। ईरान ने आबनाए हुरमुस के मामले पर कंट्रोल के कुछ इकदाम पर यह कहते हुए इसरार किया है कि वो एक खुली बैन अवी आबी गुजरगाह के ताल्लुक से पीछे नहीं हटेगा जैसा कि यह जंग से पहले थी। अमरीकी कांग्रेस के इंतबात से कबल जंग के खात्मे के लिए सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ओमान के साथ समझौता तय करने का काम आखिरी मरहले में है और बजाहिर अमरीका की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर बास फरीक इस अमल में रुकावट नहीं डालते तो एक मुश्तरका बयान जारी किया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को यह सलाह दी है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और अपनी सरजमीन पर काम करने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ठोस, मोतबर और पुख्ता कार्रवाई करे। नीज उन सभी भारतीय इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैरकानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। नामनिहाद यौम इस्तेहसाल के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर खारिजा के तबसरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढोंग दिखावे और बनावटी इकदामात से दुनिया को गुमराह नहीं किया जा सकता। भारत ने नामनिहाद यौम इस्तेहसाल मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को वाजे तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा हैं और रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 5 अगस्त को 2019 को जो आईनी तब्दीलियां की गई थीं वो भारत का पूरी तरह अंदरूनी मामला है। आज दुनिया भर में हिरोशिमा जापान में किए गए एटमी बम हमले के मुतासरीन को याद किया जा रहा है। इस हमले के नतीजे में हजारों की तादाद में अफराद फौरी तौर से हलाक हो गए थे और साल 1945

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर सुबह के 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, जिसमें आज आप सुनेंगे रित्विम सानियाल के गायन राग जौनपुरी में। पखावज पर संगत की है श्रीकांत मिश्रा ने।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप रित्विम सान्याल का गायन सुन रहे थे राग जौनपुरी में। पखावज पर थे श्रीकांत मिश्रा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 9:15 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो समस्याओं को हल करने, पैटर्न पहचानने और फैसले लेने के लिए इंसानी बुद्धिमत्ता की नकल करता है। पहले से तय और सख्त नियमों का पालन करने के बजाय AI सिस्टम बहुत सारे डेटा से सीखते हैं और समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसले लेने की क्षमता को बेहतर बनाकर, कामकाज को आसान बनाकर और अकेले या छोटे बिजनेस को बड़ा करके एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता के विकास को बढ़ावा देता है। ये बाजार में उतरने की पारंपरिक रुकावटों को कम करता है, जिससे छोटी टीमें भी वैसे ही ग्रोथ और क्षमता हासिल कर पाती है जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए मुमकिन थी। स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, इसके बारे में जानने के लिए सुनते हैं नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत।
3: जैसा कि हमारे सुनने वाले जानते हैं कि हम अपने इस पत्रिका कार्यक्रम में प्रत्येक सप्ताह उन तक नई नई बातें, नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों द्वारा पहुंचाते रहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है कि वे उन जानकारियों से लाभान्वित हों और अपने आसपास के लोगों को भी उसका लाभ दें। आज हम जिस विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं वो हमारी पत्रिका का बहुत ही रिलीवेंट विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल से स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी ध्यान दिया गया है, इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं और हमारे देश में बहुत सारे स्टार्टअप विकसित हुए हैं। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में जो उपस्थित विशेषज्ञ हैं, वे बैंकिंग, फिनटेक, सरकारी संस्थानों, शिक्षा और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं इसमें इनका एक विस्तृत अनुभव है, नेतृत्व का भी अनुभव रहा है और उन्होंने अपने नेतृत्व से डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या भविष्य की जो तकनीक है किस तरह से उसका

0: उठाया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अन्य लोग कैसे उठा सकते हैं, उनके क्या सुझाव होंगे, इन सब बातों पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं नागेंद्र राय जी। नागेंद्र राय जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
1: नमस्कार, धन्यवाद।
0: सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप आफ्टर एजुकेशन जो एक प्रोफेशन में आए और अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं अमेरिका में, तो ये परिवर्तन आपने कैसे किया, ये विचार इस यात्रा के लिए कैसे आया आपके मन में?
1: बहुत सेंसिटिव प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब देने की जिम्मेदारी बनती है मेरी। मैंने जब हमारी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा मैंने उदयपुर में ली और कॉलेज भी वहीं से पढ़ाई की है, जब हम वहां पढ़ रहे थे तो उस समय इंटरनेट की उपलब्धता नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब हम आईटी फील्ड में आए तो हमारे को उसकी एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ा, उसमें जाना भी पड़ा, समझना भी पड़ा, वो सब हमने काम किया। लेकिन तब तक हमारे दिमाग में ये भी बात नहीं थी कि हम ऐसा कुछ एंटरप्रेन्योर बनेंगे या स्टार्टअप खोलेंगे। लेकिन जब इस दौरान हमने कई संस्थाओं में बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, बड़े बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम किया, तो इंस्पिरेशन आया कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं जो कि दुनिया में वैल्यूएबल होगा, जिससे हम कुछ इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकेंगे। वो दिमाग में रखते हुए एक कंपनी की स्थापना की हमने 2019 में, और उसी वर्ष कोविड भी आ गए थे, कोरोना काल चालू हो गया था। लेकिन हमारे जो सहकार्यकर्ता हैं ऑफिस में, जो काम करते हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सब ने मिलकर उस पर विचार किया, उसको इस तरीके से चलाया कि हम हार न माने और आगे बढ़ते रहें। तो एक जो सजेशंस या रिकमेंडेशन जो होगी कि एंटरप्रेन्योर्स शुरू के 3 साल तक अगर उनको कोई सफलता नहीं मिल जाती है तो वो हार मान लेते हैं। नेवर गिव अप वाला माइंडसेट हमेशा होना चाहिए किसी भी स्टार्टअप को जो रखते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं, फाइनेंशियल चैलेंज हो सकते हैं, बिजनेस चैलेंज हो सकते हैं, एक्सटर्नल जो आपके फैक्टर्स हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वॉर सिचुएशंस हो, उनमें ये चैलेंजेस आते हैं। लेकिन उनसे ऊपर निकलना और आगे बढ़ना, वही एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर की जिम्मेदारी भी होती है और स्किल भी होती है।
0: बहुत अच्छा, आपने स्किल की चर्चा की। स्किल डेवलपमेंट जो है हमारे देश का एक बहुत बड़ा मिशन है, भारत सरकार का। माननीय प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं, युवाओं को जब भी संबोधित करते हैं, कि आप रोजगार ढूंढने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनिए। निश्चित रूप से वो तभी हो सकता है जब लोग अपना एक कंपनी चलाए, अपना स्टार्टअप शुरू करें। इसके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय जो है कई तरह के आर्थिक सहयोग भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। आजकल जो है विश्वविद्यालयों में भी इसकी सुविधा दी गई है कि पढ़ते हुए वो किस तरह से एक बिजनेस मैनेजमेंट की ओर जाए, तभी जो है हमारा विकसित भारत का जो स्वप्न है 2047 का वो पूरा होगा, जब आर्थिक रूप से ये समृद्ध होगा। आपने बताया कि आप किस तरह से कंपनी फाउंडर के रूप में आगे आए, तो आपकी जो कंपनी है क्या है, और ये अन्य तरह की कई सारी कंपनियां कार्य करती हैं, चाहे कंसल्टिंग हो या किसी और क्षेत्र में, तो ये किस तरह अन्य से अलग है?
1: ग्लोबल विजन को लेकर हम 2019 में चालू हुए थे और आज 4 देशों में अपना काम कर रहे हैं। जिस समय हमने कंपनी की स्थापना की उस समय थोड़ा ग्लोबल अनस्टेबिलिटी थी बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल, लेकिन नेवर गिव अप, जो हम कभी हार नहीं मानेंगे, वो मानसिकता हमने रखी। दूसरा, हमने शुरू से एक पार्टनर जो कोलैबोरेशन वाली जो मानसिकता होती है, जो बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ के या जो पहले से मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके साथ बात करके अपना वैल्यू कहां हम दिखा सकते हैं, कैसे वो जो काम जो दूसरे नहीं कर पा रहे हैं वो हम कर सकें और क्वालिटी के साथ कर सकें, वो एक सक्सेस मंत्र आप बोल सकते हैं कि हम उस मानसिकता को लेकर आगे चले और हमने अपनी निरंतरता को बनाए रखा, प्रयासों में कभी कमी नहीं की और सही टैलेंट है उसको हमने अवसर दिया। और जैसा मोदी जी ने भी कहा है कि इंडिया इज अ टैलेंट फैक्ट्री, तो उस टैलेंट फैक्ट्री को समझना और उसको अपने परिवेश में लेके आना और काम करना, वो एक चीज है जो हम सबको समझनी चाहिए, जो धीरे धीरे आती है, समय पर ही आती है
0: निश्चित रूप से। और ये जो टैलेंट फैक्ट्री है वो निश्चित रूप से इसीलिए कहा गया होगा कि आप जैसे टैलेंटेड लोगों ने इस देश से बाहर जाके वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, और हम कह सकते हैं कि आप एक वैश्विक बिजनेस और टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में आपने स्थापित किया है अपनी मेहनत से। एक हम इसमें ये जानना चाहेंगे, आप अपनी कंपनी के संस्थापक CEO हैं, तो बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं बिजनेस के लिए, प्रोजेक्ट होता है, फिर उस प्रोजेक्ट को मैनेज करना पड़ता है, फिर उसके लिए जो ऑफिस होता है प्राय वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का होता है
1: जी।
0: लेकिन उससे आगे फील्ड पे जाकर इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर जाए, ग्राउंड टू वर्क काम करे, इसको लेके आप किस तरह की अपनी नीति बनाते हैं या किस तरह की नीति बनानी चाहिए?
1: मेरा जो मुख्य रोल है मेरी कंपनी में वो वही है, मैं किसी भी प्रोजेक्ट को अगर चालू करूं या मैं किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूं हमारे क्लाइंट के लिए, तो उसका जो प्रभाव है वो एक एक उसका जो यूजर है जो उसको प्रयोग में लेके आएगा उस प्रोजेक्ट का या उस प्रोडक्ट का, उसके पास क्या इम्पैक्ट जा रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। अगर हम हमारी गणित वहां से चालू करेंगे और उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके समझेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेस

0: सक्सेसफुल बना सकते हैं। प्रोजेक्ट सक्सेसफुल बनाने की डेफिनेशन प्रोजेक्ट को खत्म करना नहीं है, उस प्रोजेक्ट के प्रभाव कहाँ कहाँ पहुंचा और वो किस रूप में पहुंचा, अगर उसका मेजरमेंट हम कर पाए तो फिर हम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल मान सकते हैं। हमारे टर्म में बोलते हैं KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स।
1: PMO यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस,
0: जी,
1: उसका किस तरह से सक्रिय रोल होना चाहिए और हो रहा है ये आपने बताया। आजकल तकनीक बदल रही है, खास करके हर जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। भारत सरकार ने भी इनोवेशन पे ज्यादा फोकस किया है, तकनीक और नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन, ये सारी चीजें किस तरह से एक प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट को या उसकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रभावित कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, हेल्प भी कर रहे हैं और उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी बढ़ा रहे हैं, उसकी स्पीड को भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमें उसी समय में एक बात और ध्यान रखना है कि ये उस चीज का नेगेटिव इफेक्ट भी आपके प्रोजेक्ट पे आ सकता है, वो आपके टैलेंट पे भी आ सकता है। जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको कोई भय तो नहीं है कि भाई नवाचार हो जाएगा या कुछ इनोवेशन हो गया, कोई टेक्नोलॉजी आ गई तो हमारी जॉब खतरे में आ जाएगी या हमारा काम कोई और करने लग जाएगा, ये भय निकालना पड़ेगा। बनिस्पत इसके हमारे को क्या करना चाहिए कि हमको वो सीखना चाहिए। अगर हम उस चीज को सीख लेंगे तो हम उसके एक्सपर्ट बन जाएंगे और हमारी रिलीवेंस बढ़ जाएगी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अगर हम इनोवेशन और एक्सीलेंस लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, तो ये बहुत ही अच्छी बात है पूरे कम्युनिटी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि वहीं से इनोवेशन का प्रादुर्भाव होगा।
1: उद्यमिता को बढ़ाने के लिए या युवाओं को और से और अधिक अवसर मिलने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे और आपको क्या लगता है भविष्य की और तकनीक क्या आ सकती है इस क्षेत्र में मदद करने के लिए?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा एक काल चालू हुआ है, ये काफी समय से चल रहा है। 2017 में मैंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इसको डेमो किया था कि इसको हम कैसे यूज में लेके आ सकते हैं। लेकिन जहां तक इसका प्रभाव है या आगे की इसकी जो नई टेक्नोलॉजी आ सकती है वो बहुत विस्तृत है, इसका स्वरूप बहुत विशाल है, विराट है, और वो पूरे विश्व में एक समान रूप से बढ़ रहा है। और जहां टैलेंट है वहां पे ये बहुत त्वरित गति से बढ़ रहा है, क्योंकि उसको यूज करने वाला ज्यादा है, उनको प्रयोग में लाने वाले ज्यादा हैं। तो उस सारी डायनेमिक्स को समझने के लिए या समझते हुए हमें अपने आप को उससे एक्वेंटेड करना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम में इसको डालना पड़ेगा कि ये एक कोई ऑप्शनल विषय नहीं रह गया है, ये हमारे को छोटी कक्षाओं से लेके मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेजेस सब में इसको पढ़ाना पड़ेगा, जो आज चालू हो गया है। अभी मैं IIM में भी पढ़ा के आया ये बात, और सारे जो इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें इस तरीके के कोर्सेज प्रारंभ कर दिए गए हैं।
1: आपके अनुभव से जानना चाहेंगे कि आपकी सफलता है, बहुत सारी चीजें जो है वो शुरुआती दौर के बाद आगे नहीं बढ़ पाती है, आपको क्या लगता है कि असफलता को किस तरह से सफलता में बदला जा सकता है, उस असफलता के कारण क्या है, क्या आर्थिक कारण होते हैं, तकनीकी कारण होते हैं, या व्यक्ति जिसने शुरू किया है संस्था ने उसमें विल की कमी हो जाती है?
0: जब मैंने अपना करियर चालू किया था तब से ही एक बात सीखी थी, वो मैं बार बार बोलता भी हूँ और उसको अपने जीवन में उतारा भी है, वो ये है, इंग्लिश में उसका कोटेशन है कि यू डोंट वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, यू वांट टू डू द थिंग्स डिफरेंटली। नए नए तरीके के कार्य करने की जरूरत भी नहीं होती, हमें उसी कार्य को नए तरीके से करने की आवश्यकता है। अगर किसी को सफलता नहीं मिली है तो धैर्य की परम आवश्यकता रहती है, और जो हम काम नहीं मिल रहे हैं उस असफलता के पीछे कारण क्या है अगर उनको हम जान पाएंगे तो फिर हम उसके हिसाब से अपना प्लानिंग भी कर सकते हैं और उसको हम असफलता को सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। और उसके लिए एक प्रमुख, और जो अभी गुरु पूर्णिमा थी 2 दिवस पहले, तो विश्व में उसकी बहुत महत्ता है, मेरे जीवन में प्रमुख रूप से मैं बहुत मानता हूँ कि हमारे जीवन में जो गुरु होते हैं वो मार्गदर्शन करते हैं, और वो गुरु आपको किसी भी रूप में मिल सकते हैं और कहीं भी मिल सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आप गुरु बनाओगे तभी वो गुरु बनेंगे, आपके लिए मेंटर कोई भी हो सकता है, और मेंटर होना अच्छी बात है, और अलग अलग क्षेत्रों में आपके एक साथ 10 मेंटर भी हो सकते हैं जिनके पास आप जाके बात करो। तो मेंटरशिप मिलेगी, आपका माइंडसेट चलेगा, आपके अंदर धैर्य उत्पन्न होगा, आप अपने कार्य में बदलाव लाएंगे, तो असफलता को सफलता में लाया जा सकता है।
1: किसी संगठन के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ नीतियों के सहयोग की या सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गवर्नेंस की जिसको हम बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है नवाचार के साथ कंपनियों के विस्तार के लिए गुड गवर्नेंस कितना महत्वपूर्ण होता है, और आपने जहां ये एस्टेब्लिश किया है उसका अनुभव कैसा है?
0: बिना गवर्नेंस के कोई भी आप प्रोजेक्ट या एक्टिविटी या इनिशिएटिव आप चलाते हैं वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, और अगर हम उस गवर्नेंस को सही तरीके से उस इकोसिस्टम में फॉलो कर पाए तो उसकी सफलता सिद्ध होती है। तो नीतियां होनी चाहिए, नियम होने चाहिए, और वो अपने एक अनुशासन लेके आता है। वही चीजें हमारे जीवन में अनुशासन लेके आती है और वो प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो नीति का होना, पॉलिसीज का होना, गवर्नेंस का होना, डिसिप्लिन का होना, स्टैंडर्ड्स का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने शरीर में विटामिन का होना आवश्यक है।
1: आप टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ भी हैं और बिजनेस में भी विशेषज्ञ हैं। 2019 में बताया कि आपने कंपनी एस्टेब्लिश किया है, आपने एक किताब लिखी है PMO रिवाइड, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस को किस तरह से आप नए सिरे से एक विस्तार दे सकते हैं या आपस में जोड़ के रख सकते हैं
0: जी।
1: ये इसका शाब्दिक अर्थ है
0: जी।
1: इसके बारे में हमें बताइए कि इसकी मूल भावना क्या है और कैसे आपको ये प्रेरणा मिली लिखने की।
0: तो अगर मैं उसको एक उदाहरण के द्वारा अगर मैं आपसे बात करूं कि पहले किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता था तो हम किस तरीके से सोचते थे कि उसका जो नींव रखी जाएगी उसके ऊपर कैसे आर्किटेक्चर बनेगा, वो सारी चीजें। अब आज के परिवेश में अगर आप टेक्नोलॉजी को उसके अंदर मिक्स करके देखते हैं तो हमारे को कई तरीके की संभावनाएं नजर आती है कि मैं इस बिल्डिंग को इस छोटी सी जगह में इस तरीके से भी बना सकता हूँ या अलग तरीके से भी बना सकता हूँ। तो वो जो इनोवेशन है, वो जो रिवायर अपन जो सोच रहे हैं, वो सिमिलरली वो अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में। पहले ऐसे होता था कि भाई प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, 10 प्रोजेक्ट मैनेजर एक पीएमओ डिपार्टमेंट में है, वो अपना अपना काम करेंगे, इस तरीके से करेंगे, वैसे करेंगे। लेकिन उसी पीएमओ ऑफिस को अगर हम मॉडर्न बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी से एसोसिएट करना चाहते हैं, जो लीगेसी सिस्टम है उसके ऊपर हम एडवांसमेंट लेना चाहते हैं, तो हमारे को उसको रिवायर करना पड़ेगा। और वो रिवायर करने के लिए ही मैंने ये पीएमओ रिवायर्ड किताब लिखी है, जिसमें मैंने दुनिया के 28 विशेषज्ञों को शामिल किया है। उनके जो पर्सपेक्टिव है, उनके जो विचार हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को मैंने उसमें अंदर डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, जो पूरी दुनिया में अच्छी तरह से प्राप्त हुई है।
1: बहुत अच्छा, आपने पीएमओ रिवायर्ड की चर्चा की कि किस तरह से वो आपके प्रोजेक्ट को, मैनेजमेंट के ऑफिस को रिवायर्ड किया जा सकता है। नागेंद्र राय जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और आपने उद्यमिता, विकास, जो वर्तमान की तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल परिवर्तन और जो इनोवेशन है, वो किस तरह से इस क्षेत्र में कंपनियों के विस्तार में, रोजगार के अवसरों में बढ़ावा दे रहा है। आकाशवाणी आने के लिए और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: स्टार्टअप, नवाचार और एंटरप्रेन्योरशिप के विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता समन्वय, अभी आप इस विषय पर नागेंद्र रॉय और दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे। और इसी के साथ आज का उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का था और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

आइए नजर डालते हैं आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद सुबगा ही प्रोग्राम होगा। आज के प्रोग्राम में हम आपको नाते रसूल सुनवाएंगे। 9:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम आज सवेरे। खबरें 9:50 पर नशर होंगी और 10 बजे आप सुन सकते हैं अकाल जरी का प्रोग्राम शर्म फरोजा। 10:05 पर हुस्न गजल प्रोग्राम में गैर फिल्मी गजलें नशर की जाएंगी। 10:30 पर आप सुन सकते हैं प्रोग्राम चर्चा का विषय है। 11 बजे मेरी पसंद प्रोग्राम में फिल्मी नगमे नशर होंगे। 11:30 पर एक ड्रामा नशर किया जाएगा जिसका उन्वान है मंजिलें। दिन में 12 बजे खबरें नशर होंगी। 12:10 से आप सुन सकेंगे प्रोग्राम मेले सुर मेरा तुम्हारा। दौरान प्रोग्राम 12:40 पर तारीख साज प्रोग्राम होगा। 1 बजे आलमी खबरें नशर होंगी और 1:15 पर आज की पहली मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

आज स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुण्यतिथि है। उन्हें 1905 का बंगाल का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की, जो आरंभिक दौर के भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बन गए। स्वदेशी आंदोलनों का नेतृत्व उन्होंने किया और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आज ही पुण्यतिथि है असम के साहित्यकार वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य की। इनके द्वारा रचित उपन्यास या रुइंगम के लिए उन्हें 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1979 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। और अब बात सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। आज के दिन पेंसिलिन की खोज करने वाले महान वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म हुआ था और वो वर्ष था 1881। और सवेरे के आज के संस्करण में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद बेहद पसंद आया होगा। तो मैं और तन्वी आपको नई सुबह और अपने साथ नए अवसर, नई उम्मीदें और नई मंजिलों की ओर बढ़ने के साथ जो ये सुबह आई है उसके साथ छोड़े जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा गीत चुनकर लाए हैं, एंजॉय कीजिए और दिन भर से गुनगुनाइए।

आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी। ये आकाशवाणी है, अब आप नीतिका त्यागी से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के पास तकनीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तखलीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। सरकार ने काबिना सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। झारखंड में भर्ती के इम्तिहानात में बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने रियासत में मूसलाधार बारिश की पेशगोई के तनाजुर में मुतालिका एजेंसियों से सख्त चौकसी बरतने को कहा है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तआवुन करे, जिन्हें उसके हुक्म ने पकड़ रखा है। और भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आग्नेय हुर्मुज़ से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की कस्सागोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक सीईओ से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि मस्कूरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ते साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ शेयर करें। इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा है कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरक विजन पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने काबिना सेक्रेटरी डॉक्टर टीवी सोमनाथन के ओहदे की मुद्दत में एक साल की तौसी कर दी है। तकरीरी से मुतालिक काबिना कमेटी ने इसकी मंजूरी दी है। इस तरह वो इस महीने की 30 तारीख से मजीद एक साल तक काबिना सेक्रेटरी के फराइज अंजाम देंगे। काबिना कमेटी ने दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन के ओहदे की मुद्दत में भी एक साल की तौसी की मंजूरी दी है। लोकसभा में ऐवान के आज के कामकाज में टैक्सेशन और दीगर कवानीन में तरमीम से मुतालिक बिल 2026 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मस्कूरा बिल का मकसद अदायगियों और तस्वीर के 2007 के एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 2025 और फाइनेंस एक्ट 2026 में तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में अखराजात से मुतालिक बिल नंबर 3 गौर व खौस और मंजूरी के लिए पेश किया जाना है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के मामले पर तलबा ने अपना एहतजाज तेज कर दिया है। झारखंड असेंबली के आज से शुरू होने वाले मानसून इजलास से कबल दो खवातीन समेत एहतजाज करने वाले 5 अफराद झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चे के लीडर देवेंद्र नाथ महतो के साथ शामिल हो गए हैं, जो पिछले 4 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। महतो की ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर काफी कम होने के तनाजुर में उनकी सेहत तशवीश का मामला बन गई है। रियासत के वजीर आला ने जोर देकर कहा है कि उनकी सरकार तलबा के मसाइल हल करने की पाबंद है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पूरी संजीदगी के साथ इस मामले पर काम कर रही है। जनाब सोरेन ने यह भी कहा कि मुतालिका एजेंसियां दिन रात तफ्तीश का काम कर रही हैं और कसूरवार अफराद को जेलों में भेजा जा रहा है। उत्तराखंड में रुक रुक कर बारिश होने का सिलसिला जारी है। देहरादून, चमोली और बागेश्वर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वार्निंग के मद्देनजर देहरादून और कुछ दीगर जिलों में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों और आंगनवाड़ी मराकज में आज छुट्टी का ऐलान किया गया है। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कुदरती आफात की सूरत में काम करने वाली इंतजामिया और बाज़ाबादकारी महकमे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी मुतालिका महकमों को हिदायत दी है कि वो लगातार बारिश होने और रियासत के बाज़ हिस्सों में मूसलाधार बारिश के इम्कान के मद्देनजर सख्त चौकसी बरतें। दिल्ली के बाज़ हिस्सों में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसमियात महकमे के मुताबिक कौमी राजधानी में आज दिन में भी कुछ मकामात पर औसत बारिश होने का इम्कान है।
موسمیات محکمہ نے کہا ہے کہ کیرلم کے سبھی ضلعوں میں شدید بارش کا سلسلہ آج اور کل بھی جاری رہنے کا امکان ہے. کاسرگوڈ، کنور، ایڈکی، ایرناکولم، کوٹیم، الپورا، پٹن تھٹا ضلعوں میں کہیں کہیں بہت تیز بارش کے امکان کے مدنظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے اور دیگر سبھی سات ضلعوں کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. مرکزی وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ آسام میں موجودہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے اور معمول کے حالات بحال کرنے میں وقت لگے گا. وزیر اعظم کی جانب سے متعین کیے جانے پر صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جناب نڈا نے شیو ساگر ضلع کے علاقے کا دورہ کیا جو سیلاب کی صورتحال موجودہ لہر میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے خطوں میں سے ایک ہے. وہاں یہ سیلاب 19 جولائی کو آیا تھا. آسام میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. مزید 6 اموات کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 95 تک پہنچ گئی ہے. 14 ضلعوں میں 1,60,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت نے سری لنکا پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو جل چھوڑنے میں تعاون کرے جنہیں اس کے حکام نے پکڑ رکھا ہے. ساتھ ہی بھارت نے یہ بات دہرائی ہے کہ طویل عرصے سے چلے آ رہے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے انسانی ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جانا چاہیے. سری لنکا کے رہنماؤں کے ساتھ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری کے تبادلہ خیال کے دوران یہ معاملہ خاص طور پر زیر غور آیا. جناب مصری 1 دن کے دورے پر کل کولمبو پہنچے تھے. سرکار نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا کے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کشیدہ ہونے کے باوجود اب نئے ہرمز سے 60 مال بردار بحری جہازوں کو بحفاظت باہر نکالا گیا. پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں سرکار نے یہ بھی بتایا کہ خلیج کے خطے سے 3,972 بھارتی ملاحوں کو واپس لایا گیا. ساتھ ہی بحران سے نمٹنے سے متعلق دن رات کام کرنے والے نظام کے ذریعے لوگوں کے مشکل میں گھرے ہوئے حالات کے تعلق سے فون کالز اور ای میلز پر کارروائی کی گئی. ایران نے کہا ہے کہ اب نئے ہرمز کے معاملے پر عمان کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے کا کام حتمی مرحلے میں ہے. ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس ہفتے سمجھوتے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. ایسا ہونے پر اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ پھر سے کھل جائے گی. عالمی معیشت پر دباؤ کم ہو جائے گا اور جنگ کے خاتمے میں مدد ملے گی. لیکن ایران کی بندرگاہوں پر امریکہ کی ناکہ بندی ہٹانے کے تعلق سے

0: پشپا ہنس کی آواز میں آپ نے سنا داؤد اہلوی کا کلام. اس کے ساتھ ہی آج کا حسن غزل پروگرام اب ختم ہوا. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات کا سلسلہ جاری ہے. اب پیش خدمت ہے پروگرام چرچا کا وشے ہے. आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है. कार्यक्रम में प्रस्तुत है साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा. कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव.
1: जरा कल्पना कीजिए, एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए वर्षों तक पैसे जोड़े, एक बुजुर्ग दंपत्ति ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत बैंक में सुरक्षित समझ कर रखी, एक युवा ने अपनी पहली नौकरी की पहली तनख्वाह खाते में आते ही अपने सपनों की शुरुआत की, लेकिन सिर्फ एक फोन कॉल, सिर्फ एक क्लिक और कुछ ही सेकंड में सपने भी गायब और बैंक बैलेंस भी. आज अपराधी आपके घर का ताला नहीं तोड़ते, वे आपके भरोसे को तोड़ते हैं, वे आपकी जेब नहीं काटते, वे आपकी पहचान, आपका बैंक खाता और आपकी मेहनत की कमाई चुरा लेते हैं. और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे खेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा हथियार कोई हाईटेक वायरस नहीं है, उस तिजोरी का नाम है मेन अकाउंट्स, यानी वो कठपुतली बैंक खाते जिन्हें कभी बेकसूर लोगों के भोलेपन का फायदा उठाकर तो कभी चंद रुपयों के लालच में किराए पर लेकर इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन अब इस काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत उच्चतम न्यायालय ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक एसओपी बनाने का निर्देश दिया है जो इन म्यूल अकाउंट सहित साइबर फ्रॉड को रोकने में कारगर साबित हो. लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एसओपी कैसी होगी, सवाल ये है कि क्या हम अनजाने में किसी साइबर गैंग का हिस्सा तो नहीं बन रहे, क्या सिर्फ एक गलती हमारी पूरी जिंदगी की कमाई छीन सकती है. इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे आज के कार्यक्रम में. आज हमारे साथ जुड़े हैं दो बेहद खास मेहमान, अर्थशास्त्री और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी कुमार राणा जी. आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है.
2: बहुत बहुत धन्यवाद आनंद. आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा अभिवादन.
1: जी नमस्कार शरद जी, आपके साथ है. शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न जो यही होगा कि म्यूल अकाउंट्स, बहुत सारे लोग जो आकाशवाणी से जुड़े हैं और ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये शब्द पहली बार हो, आप बहुत ही व्यवहारिक बोलचाल की भाषा में अगर लोगों को समझा पाए कि म्यूल अकाउंट्स होते क्या हैं.
2: आपने बिल्कुल ठीक कहा, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं म्यूल अकाउंट क्या होता है. देखिए म्यूल अकाउंट जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, जो व्यक्ति गलत इंटेंशन से पैसे किसी से वसूलना चाहता है, किसी को फ्रॉड द्वारा किसी से पैसे लेना चाहता है, कोई गलत जानकारी देके पैसे लेना चाहता है, तो होता क्या है कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक में तो पूरा KYC किया जाता है. बैंक में आप कौन है, आपका आधार, आपका पैन नंबर, आपका एड्रेस वगैरह बैंक में सब रिकॉर्डेड होता है. तो यदि वो क्रिमिनल अपने नाम से बैंक अकाउंट खुलवाता है तो लाजमी बात है उसका तो पकड़ा जाना लगभग तय हो जाता है. तो ऐसे में ये छात्र दिमाग क्या करते हैं कि ये किसी भोले भाले व्यक्ति का, किसी दूसरे व्यक्ति को, उसको कुछ पैसे का लालच देकर, उसको कौन लालच देकर उसके अकाउंट का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति से गलत तरीके से पैसे वसूल करने में. यानी कि म्यूल अकाउंट का मतलब है अपने अकाउंट में पैसे ना लेके किसी भोले भाले इनोसेंट व्यक्ति को, जिसको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा, आपको पता है जनधन खाता खोलने के बाद देश में तो ज्यादातर लोगों के बैंक अकाउंट है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बैंकिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं. किसी ने जाके कहा कि भाई आप अपना ऐसा करो, मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे आएंगे और उसके बदले में कुछ उसकी परसेंटेज आप रख लेना. तो आप अनजाने में किसी साइबर क्रिमिनल जो कि फ्रॉड करना चाहता है उसके एक तरह से पार्टनर बन जाते हैं. और ज्यादातर लोग जो मैंने इसमें आनंद देखे हैं वो लोग बिल्कुल ही इनोसेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता. बाद में जब उनके सामने सारा कुछ आता है, उनका अकाउंट फ्रीज हो जाता है, FIR हो जाती है, पुलिस तहकीकात करती है, साइबर डिपार्टमेंट तहकीकात करता है, तब पता लगता है ये तो हम किसी गलत चक्कर में फंस गए. तो म्यूल अकाउंट का मतलब है कि अकाउंट आपका और करतूत किसी और की, और नाम आपका आगे आएगा अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें.
1: जी बिल्कुल. अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आज के समय में डिजिटल अरेस्ट, पार्ट टाइम जॉब स्कैम और फर्जी ट्रेडिंग ऐप जैसे कई तरीकों से आम लोगों को शिकार बनाया जा रहा है. आखिर ये भी बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से अगर हम देखें तो ये किस तरह का खतरा है कि उच्चतम न्यायालय को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश देना पड़ा?
3: इस प्रकार से मैंने वो स्टडी किया है जो हमने बैंकों को कहा है एसओपी बनाने के लिए, बिल्कुल अच्छी बात है। और उसके लिए आपकी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ने एक एआई टूल भी जनरेट किया है टूल हंटर के नाम से, और उसने कुछ काम करना शुरू किया है म्यूचुअल अकाउंट को डिटेक्ट करना, उसमें क्या ट्रांजेक्शन किसी ऐसे खाते में जिसमें बैलेंस नहीं है बड़ा कुछ बैलेंस आता है उस तरह शुरुआत किया है, लेकिन और भी जरूरत है। और उसमें मुझे लगता है एसओपी बनाने के साथ साथ बैंकों में जो खाते खोलने का जो सिस्टम है उसका ड्यू डिलिजेंस भी बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा, क्योंकि अभी खाते जो है वो कैसे भी खुल जाते हैं, जब ऐसे खुलते हैं तो वो आगे बिक जाते हैं। कोई साहब ने भी ठीक कहा कि म्यूचुअल अकाउंट वही है, और खाता खोलने के लिए आपको एक सिम चाहिए, और सिम भी आपको सड़क पर फर्जी आपके डॉक्यूमेंट के साथ मिल जाता है। तो इससे ये दोनों अगर चीजें जो है हो जाए तो उससे कंट्रोल हो सकता है। और जहां तक डिजिटल अरेस्ट की बात है तो उसके लिए हम बैंकों को सीधा सीधा नहीं जिम्मेवार ठहरा सकते, क्योंकि व्यक्ति खुद ही अगर कोई उसमें फंस गया और तैयार हो, आजकल तो बैंक इम्प्लाइज को भी बैंक इतना ट्रेंड कर रहे हैं कि कोई आदमी आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनी निकाल रहा है या कोई टेंशन में है तो उसको जो है काउंसिलिंग की जाती है, और ऐसे बहुत सारे केस बैंकों ने बताए हैं। तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि इस तरह का जो फ्रॉड है और जो लोगों का पैसा है उसको सुरक्षित रखना बैंकों की जिम्मेवारी है, और उसके लिए बैंक का जो है और टेक्नोलॉजी वाइज जो है अपग्रेड हो ये बहुत जरूरत है।
1: शरद जी, जो लोग ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग साइबर ठगी का कभी न कभी शिकार भी हुए होंगे, जो लोग इससे सतर्क होना चाहते हैं, सजग होना चाहते हैं, सरकार ने 1930 का एक पोर्टल भी बनाया है जहां पर आप जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, और कहते हैं कि अगर आपके पास साइबर ठगी हुई है तो शुरुआती घंटे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ताकि बैंक उस खाते को फ्रीज कर सके, यानी आपके पैसे आगे बढ़ने से रुक सके, शुरुआती पहल क्या करनी चाहिए? एक नागरिक जो ये कार्यक्रम सुन रहा है, साइबर ठगी अगर उसके साथ हो गई उस समय उसको शुरुआती घंटों में किस तरह के सुरक्षात्मक उपाय उठाने चाहिए?
2: सबसे पहले तो इसमें आनंद ये है कि पहले कोशिश तो ये करें कि आप इस साइबर ठगी का शिकार ही ना हो। तो अब बहुत सारे लोग जो शिकार हुए हैं उन सबसे आप बात करेंगे, मैंने कुछ लोगों से बात करी पीछे, मुझे निरंतर मिलते रहते हैं, उनका ये कहना है कि भाई उस समय तो हमें पता नहीं होता, अगर हमें उस समय पता होता तो हम शायद कोई पैसा ना ट्रांसफर करते, या जिसको डिजिटल अरेस्ट कहते हैं, घंटों तक आप स्क्रीन के आगे आपको बिठाए रखा जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि आपकी फोटो हम उस पर डाल देंगे, हम एआई से ये करके, दुनिया भर की धमकियां उसमें दी जाती है। अब अगर आप शिकार हो ही चुके हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कि लोग क्या होता है शिकार होने के बाद, एक अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेट ऑफ शॉक, कि आप ऐसे अचंभे में पड़ जाते हैं जैसे ही आपको पता लगता है। तो पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि आप शिकार हो चुके हैं, जैसे ही पता लगे फौरन आपको, जैसे आपने नंबर दिया 1930, वहां पर आप कॉल करें, कॉल करके सारा मामला बताएं, आपसे पूछा जाएगा, नहीं तो जो नियरेस्ट आपके कोई साइबर पुलिस स्टेशन है, नहीं तो आप एक साधारण पुलिस स्टेशन में भी जाएंगे तो वहां पर पुलिस वाले आपकी मदद करते हैं। हर राज्य में, हर केंद्र शासित प्रदेश में एक साइबर का पुलिस का सेल है, और ये जरूरी नहीं कि जिस शहर में जिस गांव में आप हो वहां पर ये सेल हो, ये तो जरूरी नहीं है, परंतु सभी पुलिस स्टेशन को हिदायत दी गई है कि आपके पास अगर कोई साइबर ठगी का कोई विक्टिम आता है, जो व्यक्ति जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो आता है, तो आप तुरंत उस पुलिस स्टेशन के पास वहां का नंबर होता है, आप उससे संपर्क कराएं, बहुत जल्दी एक्ट करना। आपने बड़ी अच्छी बात करी, बहुत जल्दी एक्ट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे जो शातिर दिमाग होते हैं, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, वो मल्टीपल अकाउंट्स को यूज करते हैं, बहुत सारे अकाउंट्स के संपर्क में रहते हैं, और ये पैसा एक जगह पहुंच के उसके बाद अमूमन ऐसा देखा गया है कि कई अकाउंट्स में जाके बट जाता है, उसको लॉन्डर कर दिया जाता है पैसे को, जिससे कि अगर एक अकाउंट फ्रीज भी हो, एक अकाउंट पकड़ा भी जाए तो आप दूसरे अकाउंट तक हम पहुंच जाए, तीसरे अकाउंट पर। तो इसलिए अगर आप जल्दी नहीं एक्ट करेंगे तो तब तक पैसे के लिए बाद में साइबर सेल को, पुलिस को उस पैसे को वापस लाने में, उस पैसे को रिकवर करने में और भी ज्यादा कठिनाई आएगी, क्योंकि जितने ज्यादा अकाउंट्स होंगे उतनी ज्यादा कठिनाई आएगी, उतना ही ज्यादा समय भी लगेगा, और मैं ये भी बता दूं साथ में चांसेस भी फिर कम हो जाते हैं इस पैसे के रिकवरी के। इसीलिए अगर आप देखें कि कोर्ट ने जो आनंद जो एसओपी जारी किया है, उस एसओपी में क्या क्या चीजें आप देखिए, अगर एसओपी को देखेंगे तो आपके सवाल का पार्टली यहां से भी जवाब निकल जाता है। पहले सब केंद्र शासित प्रदेशों को, राज्यों को कहा गया है कि आप एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना दीजिए। भाई वो तो साइबर में होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिए जाएंगे, अगर आपके यहाँ साइबर नहीं भी है तो आप जैसे ही आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए आप उसको साइबर सेल से कनेक्ट कर दीजिए। दूसरा, फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज क्या करते हैं, कई बार क्लेम नहीं लिखते, उनको कहा गया है कि आप इस कंप्लेन को लिखेंगे भी, एफआईआर भी करेंगे, और आप जल्द से जल्द उसका निस्तारण करने की भी चेष्टा करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि जी ये तो आप साइबर सेल के पास जाइए, आप ये तो हमारा थाना इसको देखता नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरा इसमें देखिए आनंद समझना होगा कि इसमें बैंकों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पैसा किस माध्यम से गया, यूपीआई से गया या किसी और ऐप के थ्रू गया, या तो बैंक के माध्यम से पैसा, तो बैंक के माध्यम से जब भी आप पेमेंट इंटरफेस यूज करेंगे तो बैंकिंग चैनल तो उसमें चाहिए चाहिए। तो बैंक को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के थ्रू निर्देश दिए हैं कि बैंक भी पूरा कोऑपरेट करें, क्योंकि ऐसे में बैंक क्या कहता है कि हमें क्या पता, होता आपने ट्रांजेक्शन किया होगा, आपने एक देने वाला कोई लेने वाला कोई, तो जब ऐसा कोई कस्टमर बैंक का आ रहा है बैंक के पास तो बैंक को भी उसको पूरा ध्यान देना। दूसरा देखिए मामला कहां जाता है, अगर राज्यों की हम बात करें, अब सुप्रीम कोर्ट तो सारा देखेगा नहीं, हर राज्य में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट को साथ में बोला गया है कि आप जो लोअर लेवल के कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशंस कोर्ट है, उसमें आप पूरा सहयोग करें सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, उनको पूरे मैकेनिज्म के बारे में बताएं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इसको हाई कोर्ट को भेजेगा, हाई कोर्ट्स आगे लोअर कोर्ट्स इसको हम बोलते हैं उनको निर्देश देंगे कि इन मामलों को किस तरीके से जल्द निस्तारण करना है। उसके बाद स्टेट वाइज और बैंक वाइज ये भी कहा गया आनंद के, स्टेट वाइज बैंक वाइज रिपोर्ट्स निकाली जाए बकायदा, जो कि कंप्लेन को पूरी तरह से कम समय में सर्कुलेट कर दे, और इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो कि बैंक को कंसल्ट करती है उसको भी एक्टिवेट किया गया, जिससे जो बीच में जो इंटरमीडिएट, क्योंकि देखिए होता क्या है, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं और जो लोग इसके पीड़ित हैं उन्होंने शिकायत करी कि जी हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो कहता है बैंक करेगा, बैंक कहता है नहीं इंटरमीडिएट करेगा, इंटरमीडिएट कहता है ऐप वाला करेगा, ऐप वाला कहता है पुलिस स्टेशन करेगा। तो ये जो लंबी चेन है इन सबकी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एक फेसलेस क्रिमिनल है आपके सामने, आपको उसका चेहरा नहीं मालूम है, तो आपको जब तक सारे के सारे विभाग एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे में संयुक्त तरीके से काम नहीं करेंगे, यूनिफाइड तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इस क्रिमिनल को पकड़ा नहीं जा सकता। तो ये एसओपी जो मैंने बताया, इस एसओपी के अंतर्गत एक स्कीम बनाई गई है, एक मुहिम लाई गई है कि चौतरफा उसको घेरा जाए कि ऐसा व्यक्ति बच के निकल ना पाया।
1: जी अश्विनी जी, आपसे थोड़ा ये समझने की कोशिश करेंगे, शरद जी भी अपनी बात में उसको चर्चा कर रहे थे, जो 14C पोर्टल है या फिर E0FIR है और न्यू मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल की जो चर्चा हो रही है, उससे पीड़ितों को कितनी तेजी से रिफंड मिल सकेगा?
3: देखिए क्या है कि अभी ये मिलना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन निश्चित तौर से अभी जो भी उसका जो सिस्टम है, ढांचा है, वो बहुत अच्छा नहीं है हम कह सकते हैं। कारण क्या है कि साइबर थानों में जो लोग डिप्यूटी रहे हैं वो उस तरह से उन चीजों को निपटने के लिए उतने एक्सपर्टाइज नहीं है और वो उस तरह से व्यवहार भी नहीं करते, लेकिन अब वो कहा गया है तो वो बिल्कुल होना चाहिए। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिजर्व बैंक एक एफर्ट्स कर रहा था वो अभी तक हो जाए तो इसमें और लोगों को लाभ मिल सकता है कि जो एक डिले, एक घंटे के डिले पेमेंट जो है का जो प्रस्ताव रिजर्व बैंक का था कि अगर 10,000 से ज्यादा की पेमेंट यूपीआई से हो रही है तो वो आप एक घंटे के बाद जो है वो ऑपरेटिव हो, मतलब आपने पैसा डाल दिया लेकिन वो एक घंटे के बाद उसके बीच में कभी आप रोक सकते हैं। तो बड़े अमाउंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए अगर इस प्रकार का जो सिस्टम आ जाता है तो उससे जो एक आदमी फंस गया है और उसको मुश्किल में और उसको समझ आता है तो वो उसको रोक सकता है। तो इसलिए अभी रिजर्व बैंक भी अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है लेकिन नीचे धरातल पर उतरने के लिए निश्चित रूप से बैंकों को, एक्सपर्ट्स को, रिजर्व बैंक को, इन सबको जो है मिलके, और साइबर एक्सपर्ट्स जो लोग हैं वो थानों में भी वैसी पुलिस ताकि और उसके काम से निपटारा, नहीं तो हम नई चीजें 1930 है, आप फोन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से वहां पर रिप्लाई मिला है, वहां ऑल इंडिया एक लाइन है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि वहां पर रिस्पॉन्स जो है, जो वहां पुलिस है उसका उतना लोगों को नहीं होता तो लोग एकदम से हो जाते हैं।

0: साथ साथ लोग अगर 1930 के साथ साथ अपने बैंक को भी इमीडिएट कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, तो वहां पर भी अपनी ट्रांजेक्शन को फर्दर वो रोक सकते हैं। और बैंक अगर कोशिश करता है तो जहां वो पैसा गया है उसको भी आगे रोका जा सकता है। ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए, अभी वो है, लेकिन और फास्ट होता है तो लोगों को उसका लाभ हो सकता है।
1: सुरेंद्र जी, साइबर फ्रॉड का पैसा केवल भारत के भीतर नहीं घूमता जैसा आप भी बता रहे थे, बल्कि ये मूल अकाउंट से होते हुए क्रिप्टो करेंसी, पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस और हवाला नेटवर्क के जरिए साउथ ईस्ट एशिया या फिर यूरोप के कई देशों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। एक अर्थशास्त्री के नाते भारत के विदेशी मुद्रा भंडार और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के भरोसे पर इस इंटरनेशनल मनी ट्रेल और कैपिटल ड्रेन का क्या आप दूरगामी आर्थिक प्रभाव देख रहे हैं?
2: देखिए, आपने जो बात कही पहले उसमें हमें समझना होगा कि भारत में अगर रुपए में पैसा आपका कनेक्ट हुआ है तो उसको अगर आपको विदेश भेजना है तो अंटिल एंड अनलेस के उस देश के साथ हम रुपी और उसकी करेंसी में एक एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ है तो आप रुपी में तो भेज नहीं पाएंगे उसको। ये जनरली जो आप कह रहे हैं वहां होता है जहां पर आपका कोई क्रिमिनल विदेशी है या आपसे विदेशी मुद्रा में कह रहा है कि आप डॉलर में पेमेंट कर दीजिए, उसके लिए डॉलर किसी आम आदमी को या कोई और करेंसी किसी आम आदमी को, यूरो है, पाउंड है, किसी आम आदमी के लिए ऐसे आसानी से लेना संभव नहीं है। उसके लिए बैंक में एक A2 फॉर्म होता है, आपको पर्पज बताना होता है, आप डॉलर क्यों इशू कराना चाहते हैं। और मैं जो जिसपे ज्यादा प्रकाश डालना चाह रहा था आनंद आपकी इजाजत से, वो था कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी और कुछ लोग जो इसका शिकार हुए थे, जिनको दिक्कतें आई, जो पीछे शिकार हुए हैं, उन्होंने 3-4 कॉमन जो समस्याएं निकल के आई जिसकी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। सबसे पहली समस्या थी कि जब पुलिस स्टेशन जाके आप FIR कराते हैं, जहां हम जल्दी करने की बात कर रहे हैं, तो FIR करने में डिले होती है, इसके बारे में मैंने अभी हल्का सा जिक्र भी किया। दूसरा होता है कि जैसे ही पता लगता है, और मान लीजिए पता लग गया कि किस अकाउंट में पैसे गए हैं, तो तुरंत निर्देश दिए जाने चाहिए उस अकाउंट को फ्रीज करने के। अब ये तो म्यूल अकाउंट है, यानी कि ये अकाउंट तो किसी दूसरे व्यक्ति का है, अब उस व्यक्ति का उसने किसी और के लिए ये काम किया, यानी किसी और को अपने अकाउंट को बेच दिया या अपने अकाउंट को किराए पे दे दिया या किसी लालच में आके किया, तो उस व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अब उस व्यक्ति ने तो फ्रॉड किया नहीं है, वो तो शिकार हुआ है लालच का या शिकार हुआ है किसी और के चक्कर में। तो अब इसमें क्या है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन है बैंक और पुलिस स्टेशन के बीच में, वो मुझे लगता है बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से पुलिस के इंस्ट्रक्शन आएंगे, बैंक तब फ्रीज करेगा, बिना उसके तो फ्रीज करेगा नहीं बैंक, तो इसमें स्पीड करने की जरूरत है। दूसरा, एक दफे अकाउंट फ्रीज हो गया तो उसको टाइमली हियरिंग्स करके अनफ्रीज करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है उस व्यक्ति के पहले से मान लीजिए कुछ पैसे उस बैंक में पड़े हो। इसके अलावा ये व्यक्ति जो पैसे की ट्रांजेक्शन कर रहा है, जिसने उसको मूल अकाउंट बनाया है, वो व्यक्ति अपने पैसे यूज कर रहा है, पर उसके पैसे उसमें ऑलरेडी पड़े हुए, अब उसका तो अकाउंट फ्रीज हो गया, तो उसके जो पैसे पड़े थे वो भी फ्रीज हो गया, या उसको कल को बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ी तो उसका अकाउंट फ्रीज पड़ा। तो मुझे लगता है टाइमली हियरिंग करके उसको डीफ्रीज करना भी जरूरी। दूसरा, एक और जो सबसे बड़ी शिकायत मेरे सामने आई आनंद, जो लोगों से मैंने जब बात करी, कि रिकवरी रेट बहुत कम है। मतलब जो फ्रॉड, मान लीजिए मैं मानता हूं 1 लाख रुपए का अगर फ्रॉड हुआ है, कुल मैं एक उदाहरण के तौर पर ले रहा हूं, तो 1 लाख रुपए में मान लीजिए 8 व्यक्ति शामिल हैं, 12-12 हजार, 12.5 हजार, इतने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो रिकवरी रेट बहुत पुअर है। उसमें से मात्र 5-10 हजार रुपए, 5%, 10% रिकवरी हो पाती है, और उस रिकवरी रेट कम होने का कारण जो मैंने आपको बताया कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन विभिन्न, अब एजेंसी कौन सी है हम एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे श्रोताओं को सुननी बहुत जरूरी है। पुलिस स्टेशन हो गया, जहां पहले रिकॉर्ड करेंगे, जहां पहले रिपोर्ट करेंगे 1930 पे कर रहे हैं तो वहां ठीक है, आप अपने नजदीक के पुलिस स्टेशन जा रहे हैं वो आपको साइबर सेल से कनेक्ट करें, वहां बैंक दूसरी एजेंसी हो गई। दूसरा, जिस प्लेटफॉर्म से आप पेमेंट कर रहे हैं, कई दफे ऐसा होता है कुछ खरीद बेच लोग कर रहे होते हैं, आपको कोई सामान बेचने की कोशिश कर रहा है किसी कंपनी का नाम देके कि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, आप पहले पेमेंट कर दीजिए, या कोई आप सर्विस ले रहे हैं तो किसी कंपनी का नाम लेके सर्विस की जा रही है, तो उस कंपनी को भी इन्फॉर्म करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लग रहा है जितनी जानकारी काम आती है आनंद, उससे ज्यादा अंग्रेजी में कहावत होती है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो अगर आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, मैं समझता हूँ जितनी जानकारी आज इस शो के माध्यम से जो लोग हमको सुन रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो कहना चाहूंगा कि कोशिश तो करें कि आप इसका शिकार ना हो। और जैसे जैसे साइबर फ्रॉड के बारे में आप अखबार में भी इश्तेहार आते हैं, आकाशवाणी इसको लगातार चलाता है कि आप साइबर फ्रॉड के शिकार ना हो, तो आपको चौकन्ना रहना है। मुझे लगता है लोगों का चौकन्नापन सबसे ज्यादा कारगर है, और अब हो गया है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो बड़ा सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का फायदा आनंद जो मुझे नजर आता है कि ये एजेंसी अभी भी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि कोई नई एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने लाने को बोला है, कोई नई एजेंसी नहीं है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन सकती है, परंतु इन एजेंसी को आपस में तालमेल जो है उससे काफी हद तक ये रिकवरी 50-60% तक जा सकती है, अगर कोऑर्डिनेटेड वे में, यानी कि पूरे संगठित तरीके से।

0: ये सारी की सारी एजेंसीज काम करें।
1: बिना रिकवरी से जुड़े अगर कुछ आंकड़ों पर नजर डालें तो 2021 में सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया सरकार की तरफ से, और इसके माध्यम से वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना मिलते ही संबंधित राशि को जल्द से जल्द रोकने का प्रयास किया जाता है। 31 जनवरी 2026 तक इस व्यवस्था के माध्यम से 24,65,000 से अधिक शिकायतों में 8,690 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बचाई जा चुकी है, लेकिन ये आंकड़े अभी भी बहुत कम हैं, जैसा कि शरद जी बता रहे हैं। अश्विनी जी, आपसे दो व्यावहारिक सवाल पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले कि जब बैंकों का सिस्टम इतना मजबूत है, अगर मैं या कोई भी इस देश का नागरिक बैंक में अपना खाता खुलवाने जाता है तो केवाईसी की सुविधा उपलब्ध होती है, सारी जांच पड़ताल की जाती है, ई केवाईसी भी होता है, इन सब के बावजूद म्यूल अकाउंट्स बड़ी तादाद में खुलना, क्या बैंकों के जो संस्थागत ढांचे में कोई कमी है? और दूसरी बात जिस तरफ शरद जी इशारा कर रहे थे कि साइबर ठगी से बचने की जरूरत है, आज के आधुनिक दौर में जब तकनीक की भरमार है, किन बातों का ध्यान रखा जाए?
2: बिल्कुल, मैं दो बातें बताऊंगा कि खाता खुलने के लिए क्या चाहिए। आपको अपना कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, फिर आपको एक सिम चाहिए, एक नंबर चाहिए, फ्रॉड करने के लिए भी यही चाहिए। सिम आपको पटरी पे मिल जाता है, जब तक उसको ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ वो नहीं इश्यू होगा, ये काम होते रहेंगे। दूसरा, खाता खोलने के लिए भी बैंकों पर इतना दबाव रहता है कि टारगेट पूरे करके आप इतने खाते खोलो, और फिर कई बार वो खाते प्राइवेट एजेंट के थ्रू खोल जाते हैं। बीसी मॉडल है, यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल है, उसमें ज्यादातर लोगों को वो गुमराह करके उनके खाता खोल लेते हैं, और बाद में उनको बेचारों को पता ही नहीं लगता कि उनके नाम खाता खुल गया और खाता कहीं और भेज दिया जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक सिम इशू और खाता खोलना, ये बहुत ड्यू डिलीजेंस के साथ सख्ती के साथ इसके ऊपर खुलने चाहिए। दूसरा, जहां आपने कहा कि बचने के लिए, क्या होता है कि हम ट्रैप कहां होते हैं, हम लालच में ट्रैप होते हैं। सोशल मीडिया पर इतने तरह के प्रलोभन आते हैं कि हम फटाक से उसमें फंस जाते हैं और उसके अंदर हम फंस जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट समझ सकते हैं कि आपके पास फोन आया, आपको उन्होंने वो किया, लेकिन यहां तो हम खुद ही फंस रहे हैं। जो सोशल मीडिया पर इतनी सारी एड आती हैं, हमें सोचना होगा कि ये हमें क्यों फ्री दे रहा है, या हमें ये क्यों एक्स्ट्रा दे रहा है, मार्केट में इसका रेट ज्यादा है, ये हमें सस्ता, इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, या किसी ने हमें रेस्टोरेंट में हम खाना खाने गए, अगले दिन फोन आ गया कि भाई आपको फ्री जो है एक और डिनर या ब्रेकफास्ट दे रहे हैं, तो वो क्यों? यानी वो अगर हम थोड़ा सा भी अपने दिमाग के लिए इसको खोल के रखेंगे ना, तो मुझे लगता है हम उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे। लेकिन हम आंख बंद करके सोशल मीडिया पर टक टक टक टक करते जाएंगे तो हम उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो दो चीजें हैं, एक तो बचना है, और दूसरा, सरकार को इस खाते को खोलने और सिम को इश्यू करने के लिए जब तक सख्ती नहीं होगी, आप इन चीजों को नहीं रोक सकते।
1: शरद जी, जब हम साइबर फ्रॉड की बात कर रहे हैं या इससे जुड़े रोकथाम की बात कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात न करें तो ये चर्चा अधूरी रहेगी। पहले के जमाने में जो पारंपरिक मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, उसके मुकाबले जो एआई के इस्तेमाल से डिजिटल मनी लॉन्ड्रिंग की गति बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एआई दोनों ही तरीकों में इस्तेमाल हो रहा है, पहले तो साइबर ठगी में और दूसरा उसके बचाव में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे परिदृश्य में दोनों तरफ से एआई की भूमिका को कैसे देख रहे हैं?
0: देखिए, अगर हम एआई की भूमिका पहले उस तरफ से देखें कि क्या हम ठगी से बच सकते हैं, मतलब क्या ज्यादा जरूरी वो है, तो एआई के अभी टूल्स आप बैंक तो लगा सकता है, पर एक किसी निजी व्यक्ति के लिए ये टूल लगाना कि ये असली है नकली है, क्योंकि एआई में भी आपके सामने जो शख्सियत आती है, क्योंकि फेसलेस काम होता है, ज्यादातर तो फेसलेस होता है, बहुत कठिन होगा। और इसमें मैं अभी जो अश्विनी ने बात कही, मैं आपकी इजाजत से उसमें जोड़ना चाहूंगा, या आपके सवाल से भी बात जुड़ी हुई है। जब मैंने प्रिवेंशन की बात करी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि आप कोशिश करें कि आप इसमें फंसे ना। अब देखिए, हम म्यूल अकाउंट की बात कर रहे हैं। अब जिस व्यक्ति ने म्यूल अकाउंट खुलवाया है उसकी तो ड्यू डिलीजेंस पूरी है, उसने अपना आधार दिया है, उसने अपना पैन दिया है, उसके पास फोन नंबर भी, सिम कार्ड, जैसे अश्विनी पटरी वाले बता रहे थे, उसके पास पटरी वाला नहीं, उसने बकायदा एक ऑथराइज्ड सेंटर से जाके सिम लिया है, परंतु अकाउंट खुलवा लिया, अब बाद में वो लालच में आ गया। तो मैं यहां पर जो बड़ा संदेश जो मैं देना चाहता हूं, जो लोग हमको सुन रहे हैं, आकाशवाणी की पहुंच तो पूरे देश में है, तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा, आपके पास यदि कोई भी व्यक्ति आता है और वो कहता है कि हमारा बैंक अकाउंट नहीं खुल रहा है, आपका बैंक अकाउंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं ये मेरे साथ बीता हुआ है, किसी स्टूडेंट का मेरे पास आया, उसने कहा जी मेरे बैंक अकाउंट अभी खुलवाया है मेरे पेरेंट्स ने, और मेरे पास कोई फोन आया कि आपको हम 10,000 रुपए कमीशन देंगे आपका तो स्टूडेंट का अकाउंट है तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आप हमसे 10,000 रुपए महीने के लेते रहिए, तो स्टूडेंट के लिए बड़ा अट्रैक्टिव था वो, एक मिनट में मान जाता। उसके बाद वो तो उसके घर पे बात हुई, फिर उनका पेरेंट्स मुझे जानते थे, मेरे से बात हुई, तो हमने उसको मना कर दिया। आपको शक हो जाना चाहिए जैसे ही कोई व्यक्ति, अभी मेन बात है, सुनने वाली बात है, जैसे ही कोई व्यक्ति आपको ये कहे या कोई दूसरी तरफ से AI टूल आपको ये कह रहा है कि आप एक बैंक अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें पैसे आया करेंगे और इसके लिए अलग से अकाउंट होगा, तो यहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। हम क्योंकि यहाँ पर न्यू अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं आनंद, तो ये बात श्रोताओं के लिए जाननी बहुत जरूरी है। जिसने अकाउंट खुलवाया है वो इनोसेंट है, उसको उस समय जब अकाउंट खुलवाया था तब उसके सामने ऐसा कुछ नहीं था, बाद में उसने अपने अकाउंट को बेचा या किराए पे दिया। आपका अकाउंट ना तो किराए पे देने की चीज है, आपका अकाउंट ना बेचने की चीज है, आपके अकाउंट केवल आपके पैसे आपके ट्रांजैक्शंस के लिए है, किसी भी थर्ड पार्टी को। ये तो वैसे भी कल को मान लीजिए साइबर फ्रॉड नहीं भी है, कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में वैसे आपकी जानकारी से भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, हो सकता है वो पैसे का सोर्स जो है वो क्रिमिनल हो, तो अगर क्रिमिनल होता है तो अगर वो व्यक्ति कल को जेल जाता है तो आप तो उसके पार्टनर माने जाएंगे उसमें, जो कि अमूमन होता है। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने बैंक अकाउंट को पहले तो किसी को एक्सेस नहीं देना चाहिए। कोई लालच दे आपको कि आपके हम इतने पैसे देंगे, आप अपना अकाउंट हमें इस्तेमाल करने दीजिए, कितने भी पैसे ऑफर करें, मुझे लगता है उस व्यक्ति को, अनलेस कि वो आपका ब्लड रिलेटिव है, आपके घर का माता पिता है, भाई बहन है, तो अलग बात है, पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आपको कर रहा है, अनजान क्या मैं कहता हूं, अगर दूर की जान पहचान का भी है तो भी आपको नहीं करना चाहिए। आपके अकाउंट में किए गए हर जमा और हर विड्रॉल के लिए जिम्मेवार पूरी तरह से आप होंगे। कल को वो व्यक्ति अगर फंसता है तो आप उसके साथ फंसते हैं। यू बिकम अ पार्टनर इन क्राइम, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, आप उसके साझेदार बन जाते हैं उस अवैध गतिविधि में। आनंद
1: जी, इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अश्विनी, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके खातों का गलत इस्तेमाल इस समय हो रहा होगा, जब से सुप्रीम कोर्ट ने ये RBI को SOP बनाने को कहा है, और उनको अगर बहुत बाद में पता चला कि उनका अकाउंट एक तरीके से म्यूल अकाउंट है या उस अकाउंट का इस्तेमाल गलत तरीके से हो रहा है, अब वो चाहते हैं कि वो बैंक को बताएं या पुलिस में जाकर बताएं, लेकिन उनके मन में झिझक है कि ऐसा करने से वो भी उस जांच के दायरे में आ जाएंगे और उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए?
2: नहीं, बिल्कुल, आपके खाते में कोई पैसा आया है और आपको पता है कि ये सोर्स इसका जो है मेरे लिए नहीं है, ये मनी ना मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने, किसी ने भी ट्रांसफर नहीं किया, ना मेरी पेंशन है, सैलरी है, कोई डिविडेंड नहीं आया, तो उसको ना तो उस व्यक्ति द्वारा फोन करने पर वापस करना चाहिए और उसको कहना चाहिए आप अपने बैंक के थ्रू ही इसको जो है रिवर्स करवाएं, और अपने बैंक को बता देना चाहिए कि दिस मनी डजंट बिलोंग टू मी, तो आप इसको जो है अपना वो कर लीजिए। क्योंकि बाद में जब वो, जैसे कोहली जी कह रहे थे कि जब वो इन्वेस्टिगेशन होगी और वो मनी जो उस ट्रेल में थी वो आपके अकाउंट में आई है तो आपका अकाउंट भी सील हो जाएगा, तो उससे बचने के लिए पहले ही आपको करना चाहिए। और ऐसे केस में जहां आपकी गलती नहीं है, आपके खाते में पैसा कोई डाल दिया गया है, और उसके लिए भी कोर्ट ने पहले भी कहा है, बार बार कहता है कि जितना वो ट्रांजेक्शन आई है उस खाते को ही फ्रीज बैंक करें, बाकी उसके खाते को ऊपर जो है वो फ्रीज ना लगाए, ताकि उसको मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो कल्प्रिट नहीं है, वो तो इनोसेंट है और किसी ने उनके खाते में डाला है। तो इसलिए अपने खाते को रेगुलर हम देखते रहें, और जो हमने फोन नंबर दे रखा है उस पर भी देखते रहें कि मैसेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो हम बैंक से ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जो इस तरह के लोग रहते हैं वो बैंक में मिलकर या कुछ भी करके जो है आपका मोबाइल नंबर जो फीड है उसको भी चेंज करवा देते हैं, ताकि कोई ट्रांजेक्शन वो करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इसलिए सतर्क रहना भी बहुत जरूरी है, ताकि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी चीजों को कटौते रहें।
1: शरद जी, कार्यक्रम में समय नहीं है, आकाशवाणी जन जागरूकता का एक बड़ा माध्यम है, साइबर ठगी से बचने के लिए आप लोगों को जागरूक रहने के लिए संक्षेप में क्या संदेश देंगे?
0: बस मैं यही कहना चाहूंगा संक्षेप में कि ये जो म्यूल अकाउंट है ये इसी प्रकार से होता है कि एक जगह जैसे बैंक में रॉबरी होती है, बैंक को लूटा जाता है, उसके लिए जैसे कार इस्तेमाल की जाती है, तो बैंक को लूटने के लिए जैसे कार है, ऐसे ही म्यूल अकाउंट आपका समझ लीजिए लूटे जाने का एक साधन बन जाता है। सतर्क रहिए, चौकन्ना रहिए, यही सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन है, और अगर हो भी जाए तो घबराइए नहीं, जो तरीके बताए गए हैं कार्यक्रम में उनको फॉलो करिए, और आपका पैसा सरकार से, सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन की वजह से और जो उसके अगेंस्ट एक्शन लिए जाएंगे अवश्य वापस आएगा।
1: आज की चर्चा खत्म हो रही है, लेकिन साइबर अपराधियों की कोशिशें नहीं, वो न दिन देखते हैं, न रात, न उम्र, न पेशा, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने एक छात्र है, किसान, सैनिक, व्यापारी या कोई बुजुर्ग, उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, आपकी एक गलती याद रखिए, दुनिया की सबसे मजबूत तिजोरी भी उस समय बेकार हो जाती है जब उसकी चाबी

0: साइबर धोखाधड़ी से निपटने और अवैध बैंक खातों पर रोकथाम से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर परिचर्चा, इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और बैंकिंग विशेषज्ञ अश्विनी राणा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। पेश खदमत है फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद।

मोहम्मद रफी की आवाज में यह नगमा भी आपने सुना, फिल्म थी साजन की सहेली। अगली पेशकश लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म है शागिर्द।

नगमे के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। लीजिए अब सुनिए जनाब गुरबचन सिंह का तहरीर करदा ड्रामा मंसिलें।

0: कौन?
1: अरे तुम आ गए, खुदा का शुक्र है। कैसी हो?
0: जैसी भी हो तुम्हारे सामने हूँ।
1: तुम इतनी जल्दी लौट आओगी मैंने तो सोचा भी नहीं था। तुम्हारे यहाँ लौटने की खबर मेरे सिवा और किसी को नहीं है।
0: कोई मेरे बारे में जानकर करेगा भी क्या?
1: तुम बहुत उदास दिखाई दे रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
0: शायद तुम मूड में नहीं हो। अच्छा मैं जाती हूँ, फिर आऊंगी।
1: हाँ तुम्हारे लिए क्या भिजवाऊं? तुम कुछ खाओगी?
0: नहीं।
1: कुछ पियोगी?
0: नहीं।
1: फिर तुम्हें गहरी नींद आएगी और तुम्हारी जिस्मानी थकान दूर हो जाएगी। फिर कल सवेरे इत्मीनान से बातें करेंगे।
0: आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, खुदा के वास्ते मुझे अकेला छोड़ दो और आराम करने दो।
1: ये तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस कदर उदास और परेशान क्यों हो?
0: आंटी मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, बिल्कुल। तुम मुझे गलत मत समझो, अकेले मुझे तन्हा छोड़ दो।
1: तुम जो भी कहो मुझसे हकीकत छुपी नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे चेहरे के तासुरात और तुम्हारी आंखों में छुपी उदासी का रास अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ।
0: तुम मुझे गलत समझ रही हो,
1: इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कुछ भूल जाने के लिए थोड़ा कुछ ले लो।
0: आंटी क्या नशा पीकर अपने आप को भुलाया जा सकता है? जो कुछ कोई भूलना चाहे उसे भूल सकता है। तुम मुझे गलत ढंग से कुछ सोचने के लिए क्यों मजबूर कर रही हो?
1: ओ मेरी बच्ची, तुम्हें कदे मजबूर नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे भले के लिए तो कह रही हूँ, ताकि तुम्हें अच्छी गहरी नींद आ जाए।
0: मुझे यू ही गहरी नींद आ जाएगी, बहुत गहरी नींद।
1: ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन बेहतर होता अगर तुम मुझे ये बताती कि तुम्हारा मिशन कैसा रहा, तुम अपने मकसद में कामयाब हुई या नहीं, बाल से तुम्हें कुछ हासिल हुआ या नहीं।
0: आंटी मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकती।
1: ठीक है, मैं तुम्हें सवेरे मिलूंगी, जो तुम बताओगी तुम्हारे अंकल तक पहुंच जाएगा। मैं जाती हूँ।
0: अंकल अंकल, ये लफ्ज सुनते सुनते कान पक गए। क्या लगता है अंकल मेरा, क्या रिश्ता है मेरा उससे? मैं क्या लगती हूँ उसकी, क्या मैं उसके गुलाम हूँ? जो वो कहेगा क्या मुझे वही करना पड़ेगा? क्या मेरी जिंदगी और मौत उसी के हाथ में है? ओ, मैं कहाँ आ गई? यहाँ आने से तो बेहतर था मैंने किसी खाई नदी या नाले में कूद कर जान दे दी होती। यहाँ मेरा कौन है? कोई भी तो नहीं। कौन मेरे दर्द को समझेगा? कौन मेरा हमदर्द है? कोई नहीं, कोई नहीं। ओ पाल, तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं तुम्हें छोड़कर फिर इस दोज़ख में चली आई। तुम मुझे कितने यकीन के साथ अपने साथ ले गए थे। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर न कर सकी। काश मैं उन दिनों को भूल जाऊं जिन्होंने मेरे दामन में चाहते और खुशियां भर दी थी।

0: आई ना पाती हाँ जी तुम क्या कह रही थी आंटी जरा उधर देखो वो मुझे कोई फौजी अफसर लगता है लगता तो मुझे भी ऐसा ही है लेकिन उससे मिलकर ही जान सकोगे कि हकीकत में वो क्या है देखो देखो वो मेरी तरफ बार बार देखता है चाय का कप उठाकर उसने मुझे आधा पेश किया है तुम उसकी नजरों में जज गई हो इसमें कोई शक नहीं कि फौजी जिंदा दिल तबीयत के मालिक होते हैं ये तो जज्बाती नहीं बनना चाहिए तुम्हें अपना काम निकालना चाहिए चलिए तुम अपना काम करो देखो जाल में फंसा मुर्गा निकल ही ना पाए तुम्हारा अंकल तुम्हारी कामयाबी पर तुम्हें काफी बड़ा इनाम देगा अंकल मुझे क्या देंगे मैं जानती
1: हूँ साहब हाँ? आपकी चिट्ठी
0: किसने दिया
1: वो जो साहब सामने बैठे इस तरफ देख रहे हैं
0: ओ फौजी क्या लिखा है इसमें मैडम क्या आप मुझे अपने साथ बैठकर चाय पीने की इजाजत देंगी नाचीज कैप्टन पॉल जाओ साहब को यहाँ भेज दो हाँ बेटू मैं चाहती हूँ जरा होशियारी से काम लेना
1: इजाजत के लिए शुक्रिया
0: नो मेंशन
1: आपके करीब बैठने से मुझे बड़ी खुशी होगी क्या लेंगे आप चाय कॉफी या केक
0: ये पूछना तो मेरा फर्ज बनता है
1: एक ही बात है क्या मंगवाऊं आपके लिए
0: जो आप कभी चाहे
1: इस ठंडी खुशगवार हवा में तो कॉफी अच्छी रहेगी
0: ओके
1: मैडम
2: जी साहब
1: दो कॉफी और मटन कटलेट
2: जी अच्छा
1: और इसके अलावा आप और क्या लेना पसंद करेंगे
0: नहीं और कुछ नहीं
1: आप क्या इसी होटल में ठहरी हुई हैं
0: जी
1: मैं आज ही यहाँ आया हूँ मुझे पॉल कहते हैं शायद मैं बता चुका हूँ
0: खूबसूरत नाम है
1: मैं आपको
0: नीतू मुझे सब इसी नाम से पुकारते हैं
1: नीतू कितना हसीन नाम है
0: आपको ये नाम कैसा लगा
1: प्यारा बहुत आप यहाँ कब से
0: मैं चंद महीनों से यहीं इसी होटल में हूँ मुझे कुदरती नजारों से खास दिलचस्पी है मैं अकेली होते हुए भी यहाँ अपने आप को तन्हा महसूस नहीं करती बस मेरा कोई खास तारुफ नहीं मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ
1: क्या आप मुझे अपना दोस्त समझकर मेरी हमदर्दी कबूल फरमाएंगी
0: जहे नसीब जहे नसीब मुझे खुशी हुई दुनिया में मेरा कोई हमदर्द और दोस्त भी है लेकिन ये दोस्ती कितने दिनों की है आप यहाँ चंद दिन रहकर रुखसत हो जाएंगे और मुझे भूल जाएंगे
1: आप इतने दूर की सोचने लगी मैं तो यहाँ आज ही आया हूँ
0: मैंने कुछ गलत कहा
1: नहीं नहीं होटल में कोई हमेशा के लिए नहीं ठहरता अच्छा आज रात आप रात के खाने में मेरा साथ देंगी
0: अगर आपकी इसी में खुशी है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ
1: थैंक यू वेरी मच
0: जाने आज की शाम इस कदर उदास क्यों लग रही है कॉफी के बाद कुछ टहला जाए
1: हाँ हाँ पहले हम नाश्ता कर लें फिर टहलेंगे
0: जरूर
1: जी भर के टहलेंगे शाम की उदासियों को मुसर्रतों में बदल देंगे

0: क्या कर रही हो?
1: कुछ नहीं आंटी, जरा
0: मेकअप कर रही हो।
1: ये लाल रिबन तुम्हारे बालों में खूब फबता है, तुम्हारे चेहरे की चमक दुबाला हो जाती है। तुम बिल्कुल मासूम लड़की नजर आने लगती हो। ये नेकलेस तुम्हारे सुराहीदार गर्दन में खूब सेब देता है।
0: आंटी बस करो अब।
1: अरे हाँ, क्या बातें हुई उस कैप्टन से?
2: यू ही, कोई खास नहीं।
1: तब एक डेढ़ घंटे तक क्या करती रही?
2: आंटी तुम इस तरह कुरेद कुरेद कर बातें पूछने लगी हो जैसे मैं कहीं तुम्हारी चुगली खा रही थी।
1: नीतू, तुम ये भूलती हो कि तुम्हारे ऊपर नजर रखना मेरी जिम्मेदारी है। कहाँ की तैयारी है?
2: उसने मुझे डिनर में शामिल होने की दावत दी है।
1: ठीक है, जाओ, होशियारी से कदम बढ़ाना। फौजी से तुम्हें काफी राज मिल सकते हैं। अच्छा, मैं चली।
3: आपने तो कुछ खाया नहीं, बहुत जल्द हाथ खींच लिया।
2: मैं तो महज आपका साथ दे रही थी, वरना मुझे भूख नहीं है।
3: तबीयत तो ठीक है?
2: जी बिल्कुल।
3: तो उठा जाए।
2: हाँ चलिए, वहाँ बाहर बैठे थे।
3: आइए। क्या यहाँ शबनम में बैठना अच्छा रहेगा?
2: यहाँ तन्हाई है, इधर कोई नहीं आएगा।
3: हाँ ठीक है।
2: यहाँ कितने दिन ठहरने का प्रोग्राम है?
3: मेरा तो यहाँ सिर्फ एक दिन के लिए रुकने का ख्याल था, फिर शिमला जाना चाहता था।
2: क्या कोई जल्दी है?
3: नहीं नहीं, कोई खास जल्दी नहीं।
2: तो फिर कुछ दिन और ठहर जाइए।
3: ठीक है, ठहर जाऊंगा। आप यहाँ कब तक हैं?
2: मेरा यहाँ कोई ठीक नहीं।
3: जाने क्यों, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे आपसे आज के नहीं बरसों से पुराने ताल्लुकात हैं। मैंने आपको एक नजर में ही पहचान लिया था।
2: आपने मुझे पहचान लिया? अच्छा बताइए तुम, मैं कौन हूँ, क्या हूँ?
3: एक देवी, इन पहाड़ों की रानी।
2: मैं आपको अच्छी लगती हूँ?
3: जान से भी ज्यादा प्यारी।
2: लेकिन मैं वो नहीं जो आप मुझे समझते हैं। मैं पहाड़ की इस वादी में खिलने वाला एक ऐसा हसीन फूल हूँ जो देखने में जाज़िबी नजर है, लेकिन जहर आलूद जिसे छूने और सूंघने से दिलो दिमाग और सारे जिस्म में जहर फैल जाता है।
3: लेकिन ऐसा क्यों? आप जो कह रही हैं वो मेरी अगना समझ से बाहर है।
2: मैं इसे समझा नहीं सकती।
3: तुमने अपनी कहानी सुनाकर अपनी ईमानदारी और नेक नियति का सबूत दिया। मैं नहीं जानता था तुम्हारी जिंदगी में इस कदर खतरनाक मोड़ है। तुम्हारे दिल में एक दर्द करवट लेता रहता है, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं तो समझता था कि तुम इस पहाड़ी वादी में खिला हुआ एक ऐसा खूबसूरत फूल हो जो अपना रंग रूप और खुशबू बिखेरता है, जो सिर्फ खिलना जानता है, मुरझाना नहीं। मैं तुम्हारी दास्तान सुनकर लगा कि तुम एक ऐसे फूल की तरह हो जिसे अपने टूट जाने का डर है। लेकिन क्यों, एक माँ बाप के न होने से क्या कोई अपनी जिंदगी में अकेला हो जाता है? तुम्हारी आंटी है, अंकल है और ये इतना बड़ा कारोबार।
2: तुम चार छह दिनों में आंटी और अंकल को नहीं समझ सकते पाल। तुम नहीं जान सकते कि हकीकत में अंकल क्या है और आंटी क्या है। ये माहौल जहां मैं रहती हूँ किस कदर जहर आलूद है। अंकल और आंटी मेरे अपने होकर के पर आए हैं, मुझे बिल्कुल अपने नहीं लगते, बिल्कुल नहीं।
3: तब तुम्हारा अपना यहाँ कौन है?
2: मैं किसे अपना कहूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आता।
3: नहीं तो क्या मैं तुम्हारा नहीं बन सकता?

0: मैंने तो तुम्हें अपना समझ लिया है।
1: मुझे अपना बनाकर क्या करोगे पॉल? मैं तुम्हारे लायक नहीं।
0: तुम्हें क्या कमी है मुझे ये बताओ। तुम खूबसूरत हो, सेहतमंद हो और जहीन भी। तुम पाक दामन हो।
1: बस और कुछ मत कहो। मैं समझ लूं कि मुझमें कोई खूबी नहीं। मैं कुछ नहीं, मैं मिट्टी का एक खिलौना हूँ जिसमें जिंदगी नहीं है, जज्बा नहीं है, हरकत नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा मुरैल नहीं है।
0: क्या?
1: हाँ पाल, मैं तुम्हारे काबिल नहीं।
0: नीतू,
1: मैं अखलाक से गिरी हुई हूँ।
0: नहीं नीतू, ऐसा मत कहो। कोई भी शख्स अपने किरदार और मॉरल पर नाज नहीं कर सकता। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती ही है और वो उसका शिकार होता है।
1: लेकिन मेरी जो कमजोरी है, उसमें जो खामी है, वो मेरा अपना अपनाया हुआ पेशा है।
0: मतलब?
1: बस मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती।
0: देखो, तुम्हें तो मुझसे इतना भी नहीं कहना चाहिए था। तुम ऐसा कह के मुझे अपने से जुदा नहीं कर सकती।
1: मैं सच कहती हूँ पॉल, मैं तुम्हारे काबिल नहीं।
0: नीतू,
1: मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मैं तुम्हारे जज्बात की कद्र करती हूँ, लेकिन अफसोस, मैं कुछ नहीं दे सकती तुम्हें।
0: पर मैं तुम्हें अपने दिल से कबूल कर चुका हूँ नीतू। मैं तुमसे शादी करना चाहता
1: हूँ। नहीं पॉल, इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो।
0: क्यों? क्या तुम्हें शादी का रिश्ता पसंद नहीं?
1: पॉल, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं तुम्हारे साथ घुल मिल सकती हूँ, घूम फिर सकती हूँ, खा पी सकती हूँ, कहीं आ जा सकती हूँ, लेकिन एक दायमी रिश्ते में तुम्हारे साथ बंध नहीं सकती।
0: क्यों नहीं बंध सकती तुम?
1: सवाल का जवाब नहीं होता पॉल।
0: शादी के मामले में मैं तुम्हारे मुंह से हाँ सुनना चाहता हूँ नीतू, हाँ सुनना चाहता हूँ। जहां तक तुम्हारी आंटी और अंकल का सवाल है, मैं उन्हें मना लूंगा।
1: नहीं पॉल, तुम इसका ख्याल छोड़ दो।
0: तुम्हारा आखिरी फैसला है?
1: मैं अपनी मर्जी से ऐसा कोई फैसला करने की हालत में नहीं। तुम गॉड से मुझसे ऐसा सवाल मत करो, मत करो, जिसका जवाब एक इनकार के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं।
0: तो तुम रोने क्यों लगी? क्या कहना चाहती हो? कहो।
1: मैं तुमसे नाटक खेल रही हूँ
0: नीतू।
1: मैं एक जासूस लड़की हूँ।
0: जासूस?
1: अंदर से सियाह, पेचीदा और मक्कारी से भरी हुई।
0: तुम जासूस लड़की हो? मैं समझा नहीं।
1: हाँ पॉल, मैं जासूस लड़की हूँ। तुम जैसे फौजी अफसरों से मिलकर उन्हें अपने जाल में फंसाकर कुछ राज की बातें उनके मुंह से उगलवाकर अंकल तक पहुंचाना मेरी ड्यूटी है।
0: नीतू, मुझे क्या कह रही हो तुम?
1: ठीक कह रही हूँ पॉल, मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए मैंने तुमसे सब कुछ साफ साफ कह दिया।
0: नहीं नीतू, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ऐसा काम नहीं कर सकती।
1: मैं सच कह रही हूँ पॉल, मेरी बात पर यकीन करो।
0: नहीं नहीं, तुम ऐसे क्यों हो नीतू? तुम ये काम क्यों करती हो?
1: मुझे इस काम में कोई दिलचस्पी नहीं है पॉल, लेकिन अंकल मुझे ये काम करने के लिए मजबूर करते हैं। अगर मैं ऐसा न करूं तो मुझे इसकी सजा मिलती है, मुझे भूखा रखा जाता है, मार पड़ती है, जान से मार डालने की धमकी दी जाती है।
0: क्या?
1: मैं बहुत बार इसकी सजा पा चुकी हूँ। मुझे माफ कर दो पॉल। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बस इसी प्यार ने मुझे सच कहने पर मजबूर कर दिया। तुम इसकी जो सजा चाहो मुझे दे सकते हो, चाहे तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दो।
0: मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दे सकता। मेरे हाथों में इतनी कुव्वत नहीं कि मैं तुम्हारा गला घोट सकूं।
1: तुमने अगर ऐसा नहीं किया तो अंकल या उसके आदमी ऐसा कर देंगे। वो मेरा गला घोट कर मुझे किसी तारीख खाई में फेंक देंगे।

0: अफवाह फैला देंगे कि मैं फिसल कर खाई में गिर गई या मैंने खुदकुशी कर ली।
1: नहीं नहीं, तो ऐसा मत कहो।
0: सच कहती हूँ, अब अंकल और उसके आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
1: नहीं तो क्या तुम उनसे आजाद होना चाहती हो?
0: उनसे आजाद होने का एक ही जरिया है पॉल, मैं मर जाऊं और इस दुनिया से कहीं दूर चली जाऊं।
1: नहीं नहीं, तो तुम यही रहोगी इसी दुनिया में, मैं तुम मरूंगी और मैं किसी दूसरी दुनिया में जाओगी, मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, चलोगी ना मेरे साथ?
0: नहीं, मैं ये जगह छोड़कर और कहीं नहीं जा सकती।
1: लेकिन मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगा यहाँ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा।
0: नहीं पॉल, अंकल मुझे इसकी इजाजत नहीं देंगे।
1: अंकल तुम्हारा कुछ नहीं लगता रितु, नहीं तो तुम्हें इसकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम बालिग हो, अपना भला बुरा खुद सोच समझ सकती हो। तुम
0: कहाँ ले जाओगे मुझे?
1: अपने घर।
0: तुम्हारे घर के लोग क्या कहेंगे?
1: घर में है कौन? एक पिताजी तो है, वो तुम्हें देखकर खुश होंगे।
0: मेरे बारे में पूछेंगे तो क्या कहोगे?
1: मैं उन्हें सब समझा दूंगा और कहूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
0: मुझे डर लगता है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम जाओ पॉल।
1: नीतू, मैं तुम्हारे बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। नीतू, बिल्कुल नहीं। मैं सब कुछ जान समझ कर अब तुम्हें अंधेरे में भटकने के लिए तन्हा नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
0: मैं क्या करूं, मैं क्या करूं मेरे परवरदिगार, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
2: तुमने अच्छी तरह सोच समझ लिया है।
0: हाँ आंटी, मैं उसके साथ जाऊंगी।
2: तुम अपने मिशन में उसके साथ जा रही हो या जज्बात की रौ में बहकर? कहीं तुम्हारे सर पर इश्क का भूत तो सवार नहीं हो गया?
0: तुम्हें कैसा लगता है?
2: मुझे तो लगता है कि उस शातिर आदमी ने तुम्हें अपनी मसनू मोहब्बत के जाल में फांस लिया है और तुम एक बहाना करके यहाँ से फरार हो रही हो।
0: नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं। मैं चंद दिन उसके और करीब रहकर उससे कुछ बातों का सुराग लगा सकती हूँ। वो आसानी से काबू में आने वाला आदमी नहीं है।
2: तुम आंटी को बुद्धू मत समझो, जिससे तुम्हारी बातों पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारा पूरे इसरार चेहरा तुम्हारे अंदर की गवाही दे रहा है कि तुम उस नौजवान अफसर को अपना समझकर उसके साथ जा रही हो, लेकिन यहाँ तुम अपने आप को समझने में भूल कर रही हो।
0: भूल?
2: वहाँ वो भी गलती कर रहा है। तुम्हें शायद अब ये ख्याल नहीं रहा कि तुम एक पेशेवर जासूस लड़की हो। जब पॉल को इस सच्चाई का पता चलेगा तो वो तुमसे किस तरह पेश आएगा, इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। और अपने अंकल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो क्या तुम्हारा पीछा छोड़ देगा? तुमने रोना क्यों शुरू कर दिया? अपने फैसले पर गौर कर लो। मेरे ख्याल में अब जो फैसला तुम करोगी वो दानिशमंदाना होगा।

0: नींबू, ये घर तुम्हें कैसा लगा?
1: पाल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये घर और इसकी चार दीवारी ऐसी महफूज जगह है जहाँ फिर मुझे तंग नहीं कर सकता। मैं यहाँ इतनी नान की सांस ले सकूंगी।
0: अब यहाँ तुम आराम करो और अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने कुछ पुराने दोस्तों से जाकर मिलाऊं।
1: जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना रात उतरने से पहले, वरना मेरा जी घबराएगा।
0: अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं, सागर जो है।
2: सागर आया छोटे सरकार।
0: देखो मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम नीतू का ख्याल रखना। और सुनो, होटल में खाने का ऑर्डर दिया हो ना, खाना ठीक वक्त पर पहुंच जाएगा ना?
3: मैं खुद जाकर ले आऊंगा सरकार।
0: ठीक है, जब तक मैं वापस ना लौटू तुम कहीं मत जाना।
3: जी।
0: अच्छा नीतू मैं चलता हूँ।
1: ओके। सागर तुम इस घर में कब से हो?
3: देवी जी, 2 साल से इस घर का नमक खा रहा हूँ।
1: क्या इस घर में पॉल के पिताजी के सिवा और कोई नहीं रहता?
3: देवी जी, वो भी सब दिन यहाँ थोड़े ही रहते हैं, कई कई दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं। और देवी जी, एक औरत के बिना घर ऐसा ही है जैसे बिना

0: यह बाती का मंदिर।
1: ये खैर तुम्हें भी सुना लगता है ना?
0: लगता था पर अब नहीं लगेगा, आप जो आ गई है।
1: कोई आया है?
0: देखता हूँ कौन है।
2: अरे तुम बड़े सरकार, आप आ गए। छोटे सरकार जी आज ही आए हैं और उनके साथ बीबी जी भी हैं।
3: अच्छा अच्छा, ये बीबी जी कौन है सागर?
2: बीबी जी सरकार, मेरा मतलब है छोटे सरकार के साथ आई है।
3: कौन कौन है?
2: तो वो अभी कुछ देर पहले बाहर गए हैं।
3: इधर आइए सरकार, बीबी जी इस कमरे में है।
1: लगता है मैंने कहीं देखा है।
3: सागर पीछे का कमरा खुला है?
2: जी सरकार।
3: ठीक है, बैग वहीं लेते।
1: याद आया, ये भी हमारे होटल में आकर ठहरे थे, वहाँ शिकार खेलने आए थे।
3: सागर बाहर जाओ, मेरे लिए एक पैकेट सिगरेट ले आओ, मैं सिगरेट लाना भूल गया हूँ।
2: जी सरकार।
3: तुमने मुझे पहचाना?
1: नशे में मदहोश शिकारी एक दिन होटल में आया था और
3: तुमने मुझे पहचाना?
1: जी हाँ।
3: तुमने अपना मुंह क्यों फेर लिया? क्या तुम जानती हो कि पॉल मेरा बेटा है?
1: मैं पहले नहीं जानती थी, मैं अब जान गई हूँ।
3: तुम यहाँ किस लिए आई हो?
1: पॉल मुझे लाया है।
3: किस लिए, जवाब दो।
1: पॉल आए तो उसी से पूछ लीजिएगा।
3: तुमने उसे अपने जाल में फंसाया होगा। तुम एक शैतान फितरत औरत हो, तुम्हें यहाँ लाकर पाल ने भूल किया है। मैं जानता हूँ तुम अच्छी लड़की नहीं हो।
1: मैं जो हूँ जैसे भी हूँ, पाल मुझे अच्छी तरह जानता है।
3: ओ, उसने तुम्हें समझने में गलती की है।
1: लेकिन मैं अब वो नहीं हूँ जो आप मुझे
3: लड़की। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे हैरत है कि तुमने यहाँ आने की जुरत कैसे की।
1: मैं नहीं जानती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ मुझे ऐसे तौहीन आमेर जुमलों की चोट सहनी पड़ेगी।
3: देखो मैं नहीं चाहता तुम्हारी बेइज्जती हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अंकल कहाँ हैं?
1: अंकल के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं जाना। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं?
3: बेहतर इसके कि मैं पॉल से तुम्हारे बारे में कुछ कहूँ, बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ।
1: कहाँ चली जाओ?
3: जहाँ से तुम आई हो।
1: लेकिन पॉल, पॉल मुझे नहीं जाने देगा। पॉल मेरे बुरे है।
3: मैं उसे समझा दूंगा।
1: लेकिन मेरी एक शर्त है।
3: कैसी शर्त?
1: पॉल को ये पता न चले कि मैं आपके कहने से यहाँ से गई हूँ। वो ये समझे कि मैं अपनी मर्जी से उसे छोड़कर वापस अपने ठिकाने को लौट गई हूँ और पॉल को मेरा पीछा मत करने दीजिएगा।

0: तक सोई नहीं? मुझे बताओ, क्या तुम्हारा मिशन कामयाब रहा? इतनी जल्दी कैसे हो जाता? तो फिर तुम लौट क्यों आई? बोलती क्यों नहीं? मेरा भेद खुल चुका है। क्या कहा? तुम्हारा भेद खुल चुका है? कैसे? पॉल के पिता ने मुझे पहचान लिया।
1: ओ,
0: तब तुम्हारा अंकल तुम्हें नहीं छोड़ेगा।
1: क्या करेगा अंकल मेरा? यही ना कि मुझे सजा देंगे, जान से मार डालेंगे और क्या कर लेंगे? बोलो बोलो।
2: तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा नीतू, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा।
0: ओहो, तुम इसके पीछे पीछे आ गए? तुम इस लड़की की जिंदगी तबाह करने पर तुले हो?
2: क्या आप हमें अकेला छोड़ने की तकलीफ गवारा करेंगी?
0: जाती हूँ। नीतू, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी।
2: नीतू, तुम मुझे छोड़कर यहाँ क्यों चली आई?
1: पॉल, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
2: क्यों?
1: मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं।
2: क्यों?
1: इस क्यों का जवाब भी मेरे पास कोई नहीं है।
2: देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ।
1: पॉल, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती।
2: वजह?
1: कुछ नहीं, बस मेरी मर्जी।
2: तुम्हें अपनी मर्जी बदलनी पड़ेगी।
1: क्यों? क्यों मुझे अपनी मर्जी बदलनी पड़ेगी?
2: इसलिए कि जिसे तुम अपनी मर्जी या ख्वाहिश कहती हो, वो असल में तुम्हारी मजबूरी है।
1: तुम इतना समझते हो तो मुझे और मजबूर क्यों करते हो?
2: क्योंकि मैं तुम्हारी मजबूरी यानी शिकस्त को फतह में बदल देना चाहता हूँ।
1: नहीं पॉल, नहीं।
2: देखो।

0: अभी आप सुन रहे थे जनाब गुरबचन सिंह का तहरीर करदा ड्रामा कौन था मंजिलें। पेशकश प्रेम वोहरा की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नश्र की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप फहीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूएकार लाया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वह भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए ताउन करे, जिन्हें उसके हुक्म ने पकड़ रखा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और उन सभी भारतीय इलाकों को बिला ताखीर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुज से 60 बहरी जहाजों को बाहिफाजत बाहर निकाला है और ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की किस्सा गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तख्लीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तख्लीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक सीईओ टेड सेरेंडोस से मुलाकात की। वजीर आजम ने यह भी बताया कि मजकूरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरी शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें। इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा है कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरी सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरका विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतालिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NDFC के साथ शराकतदारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत के तख्लीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में ताउन करे, जिन्हें उसके हुक्म ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने ये बात दोहराई है कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निपटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया अख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के तबादला ख्याल के दौरान ये मामला खासतौर पर जेर गौर आया। जनाब मिश्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके और वजीर आजम हेरिनी अमरसूरिया, वजीर खारजा विजिता हिरात और खारजा सेक्रेटरी अरुणी राजा के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। भारत ने पाकिस्तान को यह सलाह दी है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और अपनी सरजमीन पर काम करने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ठोस मुतबर और पुख्ता कार्रवाई करे। नीज उन सभी भारतीय इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। नामनेहाद यौम इस्तेहसाल के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर खारजा के तबसरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि

0: मोदी ने कहा है कि भारत में तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वो भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए ताउन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और उन सभी भारतीय इलाकों को बिला ताखीर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुज से 60 बैरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकाला है और ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेशो खिदमत है प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा।

دل نے پکارا تھے جو رول تھا اشارہ

अजनबी फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ। प्रोग्राम की अगली पेशकश मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में है, फिल्म है आया सावन झूम के।

आशु भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में ये नगमा था धूल का फूल फिल्म से। प्रोग्राम की अगली पेशकश आप सबकी नजर है मन नडे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। फिल्म का नाम है श्रीमान सत्यवादी।

मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये नगमा हमने आपको सुनवाया। फिल्म का नाम था धरती कहे पुकार के। प्रोग्राम की अगली पेशकश समाप्त कीजिए, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मन्ना डे की। फिल्म का नाम है कैदी नंबर 911।

0: बेताब फिल्म का नगमा भी आपने लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में सुना। ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। वक्त हो गया है तारीख साज प्रोग्राम का। आज का मौजू है न्यूटन।
1: अजीम तरीन साइंसदानों में सबसे मुतासिर को शख्स आइज़ैक इसहाक न्यूटन इंग्लिस्तान के लंकाशायर में क्रिसमस के दिन साल 1642 में पैदा हुआ। न्यूटन अपने वालिद की वफात के बाद पैदा हुआ। उसने माजरे रहम में सिर्फ 7 माह कायम किया, जिसकी वजह से उसकी मशनुआ मुकम्मल नहीं हो सकी। कहा जाता है कि पैदाइश के वक्त उसका हजम इतना मुख्तसर था कि वो चौथाई मग में पूरा समा जाता था। उसका बाप एक किसान था जो न्यूटन की पैदाइश से 3 माह पहले ही इंतकाल कर गया था। न्यूटन एक जहीन बच्चा था, लेकिन स्कूल से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अवैध उम्र में उसकी स्कूल की तालीम अच्छी नहीं रही। वो एक सुस्त और काहिल तालिबे इल्म था। न्यूटन का बचपन नहायत नाखुशगवार गुजरा। उसकी एक बड़ी वजह वालदेन की शफकत से महरूमी थी। सारी जिंदगी वो अपनी जहनी अजियत में मुबतला रहा और कभी कभी जहनी तवाजुन खोने के बाद अपने ही दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर हमला आवर हो जाता था। न्यूटन ने अपनी इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हासिल की। बाद में उसने ग्रेंथम में कन्ना स्कूल में दाखिला ले लिया। अभी तक वो अपनी बेपना जहनी सलाहियत का सबूत नहीं दे पाया था। बचपन में वो फितरत का गैर मुताला करता था। वो अशिया के मुजमिरात जानना चाहता था। कुदरत ने उसे भरपूर तखलीक व कुव्वत से नवाजा था। उसको कुतुबबीनी से शौक था। तबीयत की जहनी सलाहियत को लोगों से छुपाए रखता था, लेकिन हाथस्तर में चिंगारियां पिघला थी। ये उस वक्त भड़क उठी जब न्यूटन का दाखिला कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में हो गया। उसने बच्चों की तफरी के लिए कई कारामद खिलौने बनाए, जो बड़ी बड़ी मशीनों मसलन पंचक्की मोटर गाड़ी की शक्ल में होते थे। उसने आटा पीसने की एक चक्की बनाई जिसे चूहे खींचते थे। उस जमाने में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अरिस्तो के नजरिए का गलबा था। न्यूटन अरिस्तो के नजरियात का पाबंद नहीं रहा। वो एक साइंसदान होने के बावजूद फलसफे से बेइंतहा दिलचस्पी रखता था। वो कायनात के मुजमरात जानना चाहता था। ये कायनात क्या है, इसका खालिक कौन है, खुद हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, जिंदगी का मकसद क्या है, खालिक और मखलूक में क्या रिश्ता है, वगैरह वगैरह। 18 बरस की उम्र में उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने आप को साइंस और रियाजियात के लिए वक्फ कर दिया। जल्द ही अपने तौर पर अच्छी खासी तखरीक भी करने लगा। 25 से 27 साल की उम्र में उसने साइंसी नजरियात की बुनियादें हिलाकर रख दी, जिन्होंने बाद में दुनिया में इनकलाब बरपा कर दिया। तबियात तो और रियाजी के मैदान में माहिर मुफक्किर फलसफी न्यूटन का शुमार तारीख में अहम तरीन हस्तियों में किया जाता था। उसने तबियात रियाजी फलकियात में बेज बहा इंकशाफ किए। रियाजी की शाख कैलकुलस उसी की इजाद है। न्यूटन का सबसे बड़ा कारनामा कशिश सकल का इंकशाफ है। न्यूटन से पहले यह ख्याल आम था, खासकर ईसाइयों में, कि जमीन मरकज में साकित है और दीगर अजाम जमीन के चक्कर काट रहे हैं। कशिश सकल की रूह से हर मादिशे एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। कशिश की कुव्वत इजराम की आपस में दूरी और हजम पर मुनासिर है। इसी कानून के रूप से न्यूटन ने साबित किया कि सूरज चांद सितारे और दीगर अजरामे फलकी अपने अपने मदार पर कायम हैं। न्यूटन की तबीयत और कशिश सकल के मुतालिक अहम इंकशाफात में साइंस की साख

0: मेरी तब्दीलियां की, जिससे हमारा तसव्वुर कायनात यकसर बदल गया।
1: आइए आप सुन रहे थे प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजूद था न्यूटन। तहरीर जनाब मोहम्मद नसीम अख्तर की थी और रावी थे एसएम जकी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम के तहत कुछ और फिल्मी नगमे।

दोहरा फिल्म का नगमा भी आप सुन रहे थे, उदित नारायण और अलका याग्निक का गाया हुआ। यह लता मंगेशकर के साथ सुरेश वाडकर, फिल्म है सिंदूर।

ಸಾವನ್

Cioè,

0: इस नगमे के साथ ही आज का मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब आलमी खबरें नशरत की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में तकनीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तकनीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बुरे कार लाया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया कि वह भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए ताउन करे, जिन्हें उसके हुक्म ने पकड़ रखा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और उन सभी भारतीय इलाकों को बिला ताखिर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। भारत ने खलीज के बहरान के दौरान आबनाए हुरमुज से 60 बहरी जहाजों को बहिफाजत बाहर निकाला है और ईरान ने कहा है कि आबनाए हुरमुज के मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की दास्तान गोई की मालामाल रिवायत रही है और मुल्क में तकनीकी सलाहियतों वाले अफराद की बड़ी तादाद है, जिसका इस्तेमाल मवाद की तकनीक के शोबे में मुल्क की पोजीशन को एक आलमी मरकज के तौर पर मजबूत करने में किया जा सकता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में नेटफ्लिक्स के शरीक सीईओ टेड सारंगोस से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी बताया कि मस्कुरा मीटिंग के दौरान उन्होंने भारत के मीडिया और तफरीही शोबे की जबरदस्त सलाहियत पर तबादला ख्याल किया। गुज़श्ता साल नई दिल्ली में कंटेंट क्रिएटर्स की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि वो भारत के किस्से और कहानियों को दुनिया के साथ साझा करें। इस दौरान नेटफ्लिक्स इंडिया ने कहा है कि मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत की मीडिया और तफरीही सनत को आलमी सतह पर पहुंचाने के मुश्तरक विजन पर तबादला ख्याल किया। नेटफ्लिक्स इंडिया ने किस्सा गोई से मुतल्लिक पहल के आगाज का भी ऐलान किया। इस पहल में सरमायाकारी का मकसद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT और नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NFDC के साथ शराकतदारी और सलाहियत साजी के जरिए भारत के तकनीकी सलाहियत वाले अफराद की अगली नस्ल को फरोग देना है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया कि वह भारतीय माहीगीरों और उनकी कश्तियों को जल्द छोड़ने में ताउन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। साथ ही भारत ने यह बात दोहराई कि तवील अरसे से चले आ रहे इस मामले से निपटने के लिए इंसानी हमदर्दी का रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए। श्रीलंका के रहनुमाओं के साथ खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के तबादले ख्याल के दौरान यह मामला खासतौर पर जेर गौर आया। मिश्री एक दिन के दौरे पर कल कोलंबो पहुंचे थे। उन्होंने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमार राजेसनाई के वजीर आजम हरवी अमर सूर्या वजीर खारजा विजित हेराथ और खारजा सेक्रेटरी अरुणी रनराजा के साथ अलग अलग मुलाकात की। माहीगीरों का मामला भारत और श्रीलंका के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मामला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और अपनी सरजमीन पर काम करने वाले दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ ठोस मोतबर और पुख्ता कार्रवाई करे। पुलिस उन सभी भारतीय इलाकों को फौरी तौर पर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। नामियाद योम इस्तेसाल के ताल्लुक से पाकिस्तान के वजीर खारजा के तबसरे पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ढोंग दिखावे और बनावटी इकदाम से दुनिया को गुमराह नहीं किया जा सकता। भारत ने नामनिहाद योम इस्तेसाल मनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को वाजे तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जनाब जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाके भारत का अटूट हिस्सा है और रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 5 अगस्त को 2019 को जो आईनी तब्दीलियां की गई थी वो भारत का पूरी तरह अंदरूनी मामला है। बरतानिया में रहने वाले कश्मीरी लोगों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके के अवाम के साथ यकानगत का इजहार करते हुए ब्रेडफोर्ड में मुजाहरा किया और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात की हिमायत का ऐलान किया। ये मुजाहरीन शहर के वस्त में इकट्ठा हुए। ये मुजाहरीन बैनर्स और तख्तियां लिए हुए थे जिनमें बुनियादी हकूक, सिविल आजादी और इंसानी

0: मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस सुन रहे हैं। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत में तख्लीकी सलाहियत का गैर मामूली जखीरा मौजूद है, जिसे कंटेंट की तख्लीक के एक आलमी मरकज के तौर पर मुल्क की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने के लिए बरूएकार लाया जा सकता है। भारत ने श्रीलंका पर जोर दिया है कि वह भारतीय माहीगीरों और उनकी किश्तियों को जल्द छोड़ने के लिए तावुन करे, जिन्हें उसके हुक्काम ने पकड़ रखा है। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के इलाके में खून खराबा बंद करे और उन सभी भारतीय इलाकों को बिला ताखिर खाली करे जिन पर उसने जबरन और गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर रखा है। और ईरान ने कहा है कि अब नए और मुस्लिम मामले पर ओमान के साथ समझौता तय करने का काम हतमी मरहले में है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात का वक्त अब खत्म होता है। दिन में 3 बजे दूसरी मजलिस के साथ हम एक मरतबा फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? मैडम
0: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
0: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
0: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
0: ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
0: बस
1: समझ गया।
0: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: साथियों, बात करें इस फिल्म के कलाकारों की तो संजीव कुमार ने इस फिल्म में बहुत ही दमदार अदाकारी की। इस फिल्म में संजीव कुमार ने बलदेव सिंह का किरदार निभाया था। साथियों, उस समय संजीव कुमार अपने अभिनय के लिए बहुत ही फेमस थे। उन्होंने अपने अभिनय को लेकर एक अलग पहचान बना ली थी। वे हर भूमिका को बेहद सहजता से निभाते थे और दोस्तों, अनोखी रात में भी उनका अभिनय दर्शकों और समीक्षकों दोनों को बहुत ही पसंद आया था। बात करें जाहिदा की तो फिल्म की नायिका जाहिदा ने रमा और गोपा की दोहरी छवि वाले किरदार को बड़ी खूबसूरती से निभाया था। और साथियों, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि जाहिदा ने कई अच्छी फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें वह लंबी सफलता नहीं मिली जिसकी वे हकदार थीं। लेकिन अनोखी रात उनके बेहतरीन अभिनय वाली फिल्मों में गिनी जाती है।

साथियों, परीक्षित साहनी की शुरुआती फिल्मों में से ये फिल्म एक थी। शूटिंग के दौरान उनकी और संजीव कुमार की एक बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि संजीव कुमार ने उन्हें फिल्मों के लिए अपना नाम बदलकर अजय साहनी रखने की सलाह दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर अपना मूल नाम परीक्षित साहनी ही अपना लिया था। दोस्तों, इस फिल्म के जो संगीत है वो रोशन साहब का अंतिम कृतियों में माना जाता है, लेकिन फिल्म के सभी गीत अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करते हैं और इसी वजह से इस फिल्म के गीत आज भी हम सभी के दिल में जिंदा हैं और हम सभी के द्वारा खूब पसंद किए जाते हैं।

तो असित सेन का नाम आते ही संवेदनशील फिल्मों की याद आती है। उन्होंने हमेशा ऐसी कहानियां चुनी जिनमें भावनाएं प्रमुख होती थी। दूसरों उनकी फिल्मों के पात्र साधारण होते थे, लेकिन उनकी जो परिस्थितियां होती थी वो असाधारण होती थी। बात करें अनोखी रात में इस फिल्म की, उन्होंने पूरी कहानी को बिना अनावश्यक भव्यता के केवल अभिनय और वातावरण के सहारे एक यादगार फिल्म बना दी। साथियों, बहुत कम लोग जानते हैं कि जो परीक्षित साहनी थे उनकी ये शुरुआती फिल्मों में से एक थी। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की शुरुआत एक सुनसान रात से होती है, अंधेरा, सन्नाटा और अनजाने रास्ते। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे लोग जिनका एक दूसरे से कोई परिचय नहीं, लेकिन किस्मत उन्हें एक ही जगह ला खड़ा कर देती है। धीरे धीरे दर्शक समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई दर्द छुपाए हुए है। कोई अपने अतीत से भाग रहा है, कोई प्रेम की तलाश में है, तो कोई अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला है। यहीं से शुरू होती है अनोखी रात की असली यात्रा।

दोस्तों, संजीव कुमार जो थे वे अभिनय को केवल एक पेशा नहीं मानते थे, बल्कि साधना मानते थे। कहा जाता है कि किसी भी सीन की शूटिंग से पहले वे लंबे समय तक अपने किरदार के मनोविज्ञान पर विचार करते थे। यही कारण था साथियों कि उनके अभिनय में एक शालीनता दिखाई देती थी। अनोखी रात में भी उन्होंने अपने सहज अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। दोस्तों, इस फिल्म के बारे में तो बात होती रहेगी, आप बात कर लेते हैं हम अपने श्रोताओं की जो हमें संदेश भी भेज रहे हैं, उन्हें भी शामिल करते हैं अपने कार्यक्रम में। तो हमारे पास जो पहला संदेश आया है वो आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से। पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, नारायण इंगले, सोपान ताइडे का। और जो अगला संदेश है हमारे पास वो आया है गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी जी का। ये लिखते हैं, एक ही फिल्म से आज हम अनोखी रात की कहानी सुन रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये लिखते हैं कि इन्हें ये बहुत ही अच्छी लग रही है और जो हम इस फिल्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं वो भी इन्हें बहुत पसंद आ रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो संदेश आया है वो आया है हमारे पास भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा जी का। अगला संदेश है मेरठ कैंट से, दिग्दर्शन और कविता गौड़ जी का। और जो अगला संदेश आया है हमारे पास वो आया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का। अगला जो संदेश आया है वो देखिए हम शामिल कर चुके हैं। और इसके बाद जो संदेश आया है हमारे पास वो आया है पीपरिया से, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता जी का। अगला जो संदेश है हमारे पास वो आया है वड़िंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा जी का। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे कुछ श्रोताओं के संदेश, हम आगे भी शामिल करेंगे। उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। बहुत से मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कलकत्ता के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिंसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। आज उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। इंडिया ने AHF एशिया कप 2026 के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन की जूनियर टीम का ऐलान किया है। इस महीने की 30 तारीख से चीन के शहर वोकिंग में शुरू होगा और भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ी आशीष यादव और धर्मी धरन और डिस्कस

0: तफसील से। लोकसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोरगुल के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बम के मुतासिरीन को खराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आज जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए जाने के सानहे को 81 साल हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: ऐवान में हिरोशिमा और नागासाकी में एटमी बम के मुतासरीन की याद में खामोशी भी अख्तियार की गई। इसके बाद जनाब बिरला ने वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया। अपोजिशन के अरकान इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान का मुतालबा कर रहे थे। स्पीकर मौसूफ ने कहा कि वक्फे सवाल ऐवान की कार्रवाई का एक अहम हिस्सा है जो हर मेंबर को मामला उठाने का मौका फराहम करता है। जनाब बिरला ने मजीद कहा कि पार्लियामेंट बहस करने, सवाल उठाने और नजरियात के बामाने तबादले के लिए है। शोरगुल जारी रहा तो लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा की कार्रवाई नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नजर दोपहर 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। पहली बार मुलतवी होने के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 12 बजे फिर शुरू हुई तो सदर नशी सीपी राधाकृष्णन ने शोरगुल के दरमियान वक्फे सवाल चलाने की कोशिश की। इस दौरान अपोजिशन अरकान ने अपनी नारेबाजी जारी रखी। शोर शराबा जारी रहा तो सदर नशी ने कार्रवाई 2:15 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और मौसलात और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्लियामानी कायमा कमेटी के चेयरपर्सन निशिकांत दुबे ने मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय कानून, आईन और पार्लियामेंट की जीत करार दिया है। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे वजीर आजम की ताकत का इजहार होता है जो 140 करोड़ लोगों की क्यादत करते हैं, और इससे ये बात भी जाहिर होती है कि भारत के साथ जो कोई भी कारोबार करने का ख्वाहिशमंद है उसे भारतीय कानून की पाबंदी करनी होगी।
2: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है, और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के साबिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 की जिंसी ज्यादती के एक मामले में कसूरवार गर्दाना है जिसका ताल्लुक उसके एक साबिक जूनियर साथी से है। बॉम्बे हाईकोर्ट के गोवा बेंच के जस्टिस नीला गोखले और जस्टिस अमित जनसंदेकर पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने तेजपाल को ताजिरात हिंद की मुख्तलिफ तफात के तहत कसूरवार गर्दाना है। अदालत ने कि वो आज तीसरे पहर सजा सुनाएगी। सवाल के दौरान तेजपाल ने कहा कि वो सियासत का शिकार हुआ है और 2 लड़कियों का बाप है, लिहाजा उसके साथ नरमी बरती जाए। गोवा सरकार की तरफ से पेश होने वाले वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से इस्तदा की कि उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए ताकि एक मजबूत पैगाम जा सके। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तेजपाल के साबिक जूनियर साथी ने नवंबर 2013 में एक होटल के एलिवेटर में जिंसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। 2021 में जिली अदालत ने उसे बरी कर दिया था, लेकिन गोवा सरकार ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज उत्तराखंड, झारखंड, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल तक बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मुल्क के शुमाल मशरक के हिस्सों और अंडमान निकोबार जजायर में भी शदीद बारिश का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि कौमी राजधानी में कल तक औसत से शदीद बारिश हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि इस पूरे हफ्ते यहां हल्की बारिश का इम्कान है। ओडिशा में महानदी समेत बड़े दरियाओं में सतयाब में कमी आने के सबब सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर बेहतर हो रही है। मजीद तफसील हमारे नवनिगार से।
3: ओडिशा में महानदी समेत सभी बड़े दरियाओं में पानी की सतह कम होने से सैलाब की सूरत हाल रफ्ता रफ्ता बेहतर हो रही है। इस वक्त हीराकुंड बांध के 8 गेट खुले हैं ताकि उसके पानी की सतह को कंट्रोल किया जा सके। सतही आब में कमी के बावजूद सैलाब से मुतासिरा अफराद की मुश्किलात बरकरार हैं और जिंदगी के मामूलात की बहाली एक बड़ा चैलेंज है। इस दौरान कल रात से शदीद बारिश जारी रहने से राजधानी भुवनेश्वर में मामूलाते जिंदगी तरहम बरहम है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज केंजर और मयूरभंज अजना के लिए ऑरेंज अलर्ट और बकिया जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कल 30 अजला में बारिश के लिए अलर्ट भी जारी किया गया। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: जम्मू कश्मीर में सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बिला रुकावट जारी है और अब तक मुल्क भर से लाखों तीर्थंकर पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा के शुरू होने के बाद से 4,70,000 से ज्यादा अकीदतमंद पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा 28 अगस्त तक जारी रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज साबिक वजीर खारजा सुषमा स्वराज को उनकी बरसी पर खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर दाखिला ने मोहतरमा सुषमा स्वराज को शाइस्तगी और सादगी की मिसाल करार दिया। जनाब शाह ने कहा कि उन्होंने तंजीम से लेकर हुकूमत तक अपने सभी फराइज नज्म जब्त वकार और पुख्ता आजम के साथ अंजाम दिए। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मौके में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 रुकनी खवातीन की भारतीय जूनियर टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में 18 खिलाड़ी हैं जिसकी क्यादत मिडफील्डर खैदम शलेइमा चानू करेंगी। भारत के भाला फेंकने वाले खिलाड़ियों आशीष यादव और टी धरणीधरन ने अमेरिका के शहर यूजीन में जारी 20 साल तक के उम्र के खिलाड़ियों की आलमी चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। इसके अलावा डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी अमानत कलगोज ने हतमी मरहले में पहुंच गए हैं। फाइनल इतवार को खेला जाएगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मोहम्मद पर अपोजिशन के शोरगुल की वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन में 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही 2:15 बजे तक मुलतवी कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलका के सादिक एडिटर तरुण तेजपाल को 2013 के जिनसी ज्यादती के मामले में मुजरिम करार दिया है। आज उत्तराखंड झारखंड उड़ीसा मध्य महाराष्ट्र कोंकण और गोवा में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की गई है। हॉकी इंडिया ने एएचएफ एशिया कप 2026 के लिए 18 अरकान पर मुश्तमिल खवातीन की जूनियर टीम का ऐलान किया है जो इस महीने की 30 तारीख से चीन के शहर मोकू में शुरू होगा।

0: दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। मुंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मोकी में होने वाले AHF एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा की। और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धरानीधरन तथा डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मामले पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर हिरोशिमा और नागासाकी परमाणु हमलों के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इन दुखद हमलों के आज 81 वर्ष पूरे हो गए हैं।
1: आज से 81 वर्ष पूर्व जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर क्रमश 6 और 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराए गए थे। इस अभूतपूर्व त्रासदी में लाखों निर्दोष लोगों ने अपने प्राण गंवाए तथा असंख्य लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए। ये सभा विश्व को सामूहिक विनाश के हथियारों से मुक्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुनः दोहराती है।
0: बाद में श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल कार्यवाही का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो प्रत्येक सदस्य को मुद्दे उठाने का अवसर प्रदान करता है। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित हो गई है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। एक मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2:15 तक के लिए स्थगित की गई। इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाया। पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पर्वतीय और सीमावर्ती पर्यटन अवसंरचना से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि केंद्र ने राज्यों को प्रमुख साहसिक पर्यटन स्थलों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की सलाह दी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सदन के प्रत्येक सदस्य से मर्यादा बनाए रखने और प्रासंगिक विषयों पर ही बोलने की अपेक्षा की जाती है।
2: जब काउंसिल की बैठक चल रही हो, कोई भी इस प्रकार की अव्यवस्था, शोरगुल या किसी अन्य तरीके से इस अव्यवस्थित तरीके से बोलते समय किसी अन्य सदस्य के बीच में बाधा नहीं डालेगा।
0: विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अपनी मांगों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच मानसून सत्र के पहले दिन झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ। एक रिपोर्ट।
3: झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन भाजपा और एनडीए विधायकों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मंत्री चंद्रा मुंडा ने कहा कि इस मामले में सत्ता या विपक्ष नहीं बल्कि परीक्षा माफिया असली दोषी है। इस बीच मामले की जाँच कर रही सीआईडी ने रांची और लखनऊ से 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें टीडीपीएल कंपनी का अकाउंटेंट भी शामिल है। मामले में अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। विवाद को सुलझाने के लिए सरकार की 4 मंत्रियों वाली उच्च स्तरीय कमेटी आज छात्रों के साथ वार्ता कर सकती है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महेश रहमान।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से केंद्र सरकार के उस हलफनामे पर जवाब दाखिल करने को कहा है, जिसमें कहा गया है कि नीट स्नातक परीक्षा को पेपर आधारित परीक्षा से कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदलने पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं में डॉक्टर्स एसोसिएशन भी शामिल है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने अगली सुनवाई 19 अगस्त को निर्धारित की है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि वो नीट स्नातक परीक्षा को कंप्यूटर आधारित प्रारूप में आयोजित करने पर विचार कर रही है, या तो एक चरण में या फिर संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत के समान दो चरणों में। सरकार ने कहा कि उसने पेपर लीक और प्रणालीगत खामियों को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के संचालन में व्यापक सुधार किया है। पीठ ने कहा है कि वो सभी पहलुओं पर विचार करेगी और सभी पक्षों से अपने जवाब और सुझाव दाखिल करने के लिए कहेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बम्बई उच्च न्यायालय ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में आज दोषी ठहराया है। न्यायालय की गोवा बेंच की जस्टिस नीला गोखले और अमित जमसंदकर की खंडपीठ ने तेजपाल को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत दोषी पाया है। इनमें विश्वास या अधिकार के पद का दुरुपयोग कर दुष्कर्म, यौन उत्पीड़न और किसी महिला को निर्वस्त्र करने की नीयत से हमला करने से संबंधित धाराएं शामिल हैं। गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अधिकतम सजा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे एक कड़ा संदेश जाएगा कि ना का मतलब ना होता है। फैसले के बाद तेजपाल ने कहा कि वो उच्च न्यायालय के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत शर्तों में और ढील देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने आशीष मिश्रा की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस स्तर पर जमानत की शर्तों में बदलाव या ढील देने का कोई आधार नहीं बनता है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि पोत सुरक्षा का माहौल तेजी से बदल रहा है। उन्होंने कहा कि साइबर खतरे, ड्रोन हमले, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, डिजिटल नेटवर्क, सूचना प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को होने वाले जोखिमों ने समुद्री सुरक्षा को नया आयाम दिया है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पोत सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि बंदरगाह की सुरक्षा एक साझा राष्ट्रीय जिम्मेदारी है।
4: The actionable recommendation to strengthen India's port security framework and make the proposed Bureau of Port Security a robust, responsive and future-ready institution. Let us work together for a safe maritime India, a strong maritime India and a Viksit Bharat. Kyunki desh ki suraksha sarvopari hai aur hum desh ke liye ji raha hoon aur desh ke liye jiyenge.
0: भाजपा सांसद तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग की माफी को भारतीय संसद की जीत बताया है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत में व्यापार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को भारतीय कानून का पालन करना होगा।
5: ये जो जीत है ये भारत के कानून की जीत है, ये जीत भारत के संविधान की, ये जीत भारत के पार्लियामेंट की है और 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी की ये ताकत दिखाता है कि भारत में जिसको भी व्यापार करना है उसको भारत का कानून मानना पड़ेगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रादेशिक सेना पर बात की गई। बैठक को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने केरलम बाढ़, ओडिशा चक्रवात और हाल ही में असम में आई बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य तथा जरूरतमंदों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में प्रादेशिक सेना की भूमिका की सराहना की। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक लाखों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर चुके हैं।
6: अब तक 4,70,000 से ज्यादा यात्री पवित्र गुफा का दर्शन कर चुके हैं। हर दिन हजारों की तादाद में यात्री, जिनमें मर्द, औरतें, बच्चे वगैरह शामिल हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल यात्रा सिर्फ बालतल के रास्ते से ही जारी है क्योंकि पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यात्रा को सुरक्षित और सुचारू रूप से चलाने के लिए सुरक्षा बलों, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, प्रशासन और आम शहरियों की सराहना की है। याद रहे ये यात्रा 28 अगस्त को सम्पन्न होगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: नहीं, आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल तक मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर सड़क संपर्क टूट गया है, वहीं प्रमुख नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है।
1: प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कल रात से जारी बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बाधित हुई हैं। कुछ मैदानी क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति भी देखी गई है। राज्य के प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ा है और कई गाढ़ गडेरे भी उफान पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी आपदा प्रबंधन और राहत एजेंसियों को पूरी तरह सतर्कता बरतने तथा संवेदनशील क्षेत्रों में नदी नालों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि
2: बरसात के लिए आज देहरादून, बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट है। बरसात लगातार चल रही है, कई जनपदों में हो रही है। और नदियों के जलस्तर की बात करें तो वर्तमान में अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, बाणगंगा, यमुना और शारदा का स्तर बढ़ रहा है।
1: इस बीच चारधाम यात्रा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जारी है और प्रशासन यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार निगरानी बनाए हुए है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उधर ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 द्वार खुले हुए हैं।
3: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है क्योंकि महानदी समेत सभी प्रमुख नदियों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है। अभी जलाशय का स्तर बनाए रखने के लिए हीराकुंड बांध के 8 स्लुइस गेट खुले हुए हैं। पानी का स्तर घटने के बावजूद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मुश्किलें बनी हुई है और सामान्य जीवन को बहाल करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। इस बीच कल रात से हो रही लगातार भारी बारिश ने राजधानी भुवनेश्वर में जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर की कई सड़कों और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है। कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है जिससे घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा है। हालांकि दक्षिणी और पश्चिमी उड़ीसा में बारिश कम होने की उम्मीद है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि असम में आई बाढ़ के बाद स्थिति बहाल होने में समय लगेगा। उन्होंने प्रभावित लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने कहा है कि केरलम के सभी जिलों में आज और कल तेज बारिश जारी रहेगी। कासरगोड, कन्नूर, इडुक्की, एर्नाकुलम, कोट्टायम, आलप्पुझा और पथनमथिट्टा जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संस्कृत के श्लोक को साझा करते हुए कहा कि जिसमें सभी प्रकार के श्रेष्ठ वनस्पतियों तथा औषधियां पैदा होती हैं वो पृथ्वी माता विस्तृत और स्थिर हो। विद्या, शौर्य, सत्य, स्नेह आदि सद्गुणों से पालित, पोषित, कल्याणकारी और सुख साधनों को देने वाली मातृभूमि की हम सदैव सेवा करेंगे। भारतीय हॉकी ने 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन में होने वाले एएचएफ जूनियर एशिया कप 2026 के लिए 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की घोषणा कर दी है। टीम में 2 खिलाड़ियों को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अमेरिका में विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव और टी धारणीधर ने अंतिम दौर में जगह बना ली है। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी अमानत कंबोज भी अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 209 अंक बढ़कर 78,790 पर, जबकि निफ्टी 10 अंक गिरकर 24,635 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए और राज्यसभा की बैठक दोपहर 3:15 तक के लिए स्थगित। मुंबई उच्च न्यायालय ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया। अमरनाथ यात्रा सुरक्षा कारणों से एक दिन के लिए स्थगित रहने के बाद फिर से शुरू। उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। हॉकी इंडिया ने 30 अगस्त से चीन के मौके में होने वाले एएचएफ एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी आशीष यादव, टी धारणीधरन और डिस्कस थ्रो में अमानत कंबोज ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में

दोपहर के 2:30 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही कलाकार का। जी हाँ, कार्यक्रम एक ही कलाकार लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी होस्ट और दोस्त रिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज जिस कलाकार के बारे में हम बात करेंगे उनका नाम है गुलशन कुमार मेहता, जो अपने उपनाम गुलशन बावरा से लोकप्रिय थे। ये हिंदी सिनेमा के एक जाने माने गीतकार और अभिनेता थे। 42 वर्षों के अपने करियर में उन्होंने लगभग 240 गीतों की रचना की और एक चरित्र अभिनेता के रूप में उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में अभिनय भी किया। गुलशन बावरा जी ने कल्याण जी, आनंद जी, शंकर जयकिशन और आरडी बर्मन जैसे प्रख्यात संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। तो चलिए श्रोताओं, बातें तो और भी होंगी, उससे पहले आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, गुलशन बावरा जी को एक ऐसे गीतकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपने भावपूर्ण गीतों से लगभग 3 दशक तक श्रोताओं को अपना दीवाना बनाया। हिंदी भाषा और साहित्य के करिश्माई व्यक्तित्व वाले गुलशन कुमार मेहता उर्फ गुलशन बावरा का जन्म 12 अप्रैल 1937 में लाहौर शहर के निकट शेखपुरा अविभाजित भारत में हुआ था। देश के विभाजन के बाद हुए सांप्रदायिक दंगों में उनके माता पिता की हत्या उनके नजरों के सामने हो गई। इसके बाद वो दिल्ली आ गए। गुलशन बावरा जी ने अपनी स्नातक की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उनकी रुचि कविता लिखने में हो गई। वे फिल्मों में आना चाहते थे, पर अपने परिवार की परंपरा निभाते हुए गुलशन बावरा जी ने वर्ष 1955 में अपनी करियर की शुरुआत मुंबई में एक रेलवे क्लर्क के तौर पर किया। उनका मानना था कि सरकारी नौकरी करने से उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा, पर क्लर्क की नौकरी उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। कुछ समय बाद उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और अपना ध्यान फिल्म इंडस्ट्री की ओर लगाना शुरू कर दिया।

जारी। श्रोताओं, गुलशन बावरा जी को फिल्म इंडस्ट्री में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा और कई छोटे बजट की फिल्में भी, जिनसे उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इस बीच गुलशन बावरा जी की मुलाकात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से हुई, जिनके संगीत निर्देशन में लिए गुलशन मेहता ने फिल्म सट्टा बाजार के लिए तुम्हें याद होगा कभी हम मिले थे गीत लिखा, लेकिन इस फिल्म के जरिए वे खास पहचान नहीं बना पाए। श्रोताओं, फिल्म सट्टा बाजार से उनके गीत को सुनकर फिल्म के वितरक शांति भाई दवे काफी खुश हुए। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी उम्र में कोई व्यक्ति इस गीत को इतनी गहराई से लिख सकता है। तभी शांति भाई ने गुलशन मेहता को बावरा कहकर संबोधित किया। इसके बाद ही गुलशन मेहता जी गुलशन बावरा के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में प्रसिद्ध हो गए। मुंबई में 8 वर्ष की परिश्रम के बाद उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में निर्माता निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में गीत लिखने का मौका दिया, जो बेहद प्रसिद्ध और हिट साबित हुआ।

श्रोताओं आपको बता दें कि गुलशन बावरा जी ने आरडी बर्मन के साथ 150 गीत लिखे थे। उन्होंने फिल्म सनम तेरी कसम, अगर तुम ना होते, सत्ते पे सत्ता, ये वादा रहा, हाथ की सफाई आदि फिल्मों में अपने गीतों से सजाया था। गुलशन बावरा जी को फिल्म उपकार में गीत मेरे देश की धरती और फिल्म जंजीर में गीत यारी है ईमान मेरा के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।

श्रोताओं, 7 अगस्त 2009 को गुलशन बावरा जी मुंबई में एक लंबी बीमारी के बाद हमें अलविदा कह गए, पर इनके लिखे गीत सदैव के लिए अमर हो गए।

सामने आपको बता दें कि कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर सुनिएगा फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 पेश करेंगे अंदाजे नजर। आज के इस प्रोग्राम का मौजू है उर्दू सहाफत नई सदी में। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामान्य था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नए शुरू होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।

आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया था आदि वर्मन ने। फिल्म थी 1942 अ लव स्टोरी। आज के मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आप तमाम सामयीन के लिए अंदाज फिल्म का नगमा, आवाजें बाबुल सुप्रियो और अलका याग्निक की, मौसीकार हैं नदीम शर्मा।

सर्विस रखने के साथ ही आज का फिल्मी नगमों का प्रोग्राम मेरी पसंद अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर। पेशे खिदमत प्रोग्राम अंदाजे नजर।

0: की तरजीहात को, उसकी पसंद नापसंद को और उसके पूरे तर्ज जिंदगी को बदल रही हैं। तो जाहिर है कि अदब या अदबी सहाफत या उर्दू सहाफत, ये तमाम चीजें उसी के तहत आती हैं। ये अलग से कुछ नहीं हो सकती, माशरे से अलग हम करके नहीं देख सकते। और आज पिछले अहद में हम देखते हैं तो जो दिलचस्पी लोगों की थी अदब से, वो आज कम हुई है। बज़ाहिर अदब पढ़ने वाले बढ़े हैं, लेकिन सही मानों में हकीकी दिलचस्पी रखने वाले कम हुए हैं।
1: ये बहुत बुनियादी बात है कि ये वक्त के साथ साथ तरक्की तो हुई है, लेकिन पढ़ने वालों की दिलचस्पी जो है, मुझे लगता है कि बात बहुत आपने आम कही है कि कुछ कम हुई है। ऐसा ही मुनव्वर साहब, मुझे भी यही लगता है कि जो जिया साहब कह रहे हैं, एक जमाना था जब फोन, शकून और ऐसे बहुत अहम रसायल निकलते थे और सौगात, उन रसायल में जो मबाहिस होते थे उन मबाहिस को बहुत संजीदगी से लिया जाता था, उन पर बहसें होती थी, उस पर्चे में छपना जो है वो एक बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई अगर कोई पर्चे में छप गया तो महीनों उसके मजमून का चर्चा होता था। क्या सूरत हाल है कि आजकल हमारी उर्दू सहाफत जो है, जो उर्दू की जो अदबी सहाफत है, वो वसायल तो बहुत है और बहुत आसानियां पैदा हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मबाहिस खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है आपका?
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। असल में ये सूरत हाल ये है कि वक्त के साथ साथ जो तजर्बेकार साफी थे, जईद साफी थे, वो रुखसत हो गए और नए साफी जो आ रहे हैं मैदान में, नई नस्ल जो आ रही है, उनके पास मुताले का फुकदान है। वो तैयारी तो कर रहे हैं, वो अखबार में काम कर रहे हैं, रसाइल में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस मुताले की अदबी सहाफत को जरूरत है वो उनके पास कम है या नहीं है, बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि नहीं है। हालांकि है जो सतह पे भी है, लेकिन वो कोई ना कोई सतह ऐसी है कि वो जो बुनियादी जरूरतें हैं अदबी सहाफत की, वो उनसे नाशना ही नजर आते हैं। बताएं उसके ही सबसे यही है कि तजिया निगारों का एक मुसलसल बहरान पैदा हो गया उसकी वजह से, इसलिए कि जो चीजें उनके सामने आती हैं वो उस पर तजिया करने की सलाहियत उनके यहां नहीं पाई जाती, और अगर सलाहियत पाई भी जाती है तो वो उसके उन पहलुओं को नहीं उभार पाते जिनकी उस अदबी मैदान में जरूरत है। दूसरे ये कि असल में हुआ क्या है, हुआ यह है कि यहां शुमाली हिंद में खासतौर से उर्दू मीडियम स्कूलों का फुकदान है। उर्दू मीडियम स्कूल नहीं है, उर्दू मीडियम स्कूल बुनियाद है उर्दू की, और उर्दू बुनियाद फिर बनती है अदब की, और अदब फिर बुनियाद बनती है अदबी सहाफत की। सिलसिला या दर सिलसिला बात आगे बढ़ती है, और जब हमारे पास बुनियाद ही कमजोर होगी और फिर हम मामूली सतह पे उर्दू सर्टिफिकेट लेकर या उर्दू कोर्स कोई करके आगे बढ़ेंगे और अपने किसी तरह से मुलाजमत भी हासिल कर लेंगे, और मुलाजमत हासिल करना ही असल अब मौजूद रह गया है, अब सब खिदमत नहीं है। जो पहले लोग थे वो अदबी खिदमत भी करते थे, उनके सामने नजरिया यह होता था कि जो चीज है मैं इसमें अदबी खिदमत कर रहा हूं और इसको अपने तौर पर मुमकिन तौर पर जहां तक भी हो सकता है परवान चढ़ाऊं।
1: अदबी खिदमत से क्या मुराद है?
2: अदबी खिदमत से ये मुराद है जो अदबी जखायर हैं हमारे, उनको हम मंजर आम पर लाएं और उनसे दूसरे लोग बुनियादी तौर पर इस्तिफादा करें, और जब उसकी सलाहियत हमारे अंदर नहीं होगी तो हम उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरियां हैं, लेकिन आप देखते होंगे लाइब्रेरियां आजकल खाली ही नजर आती हैं। आजकल लाइब्रेरी में कई लोग जाते हैं, बहुत कम लोग जाते हैं, जो जाते हैं तो सिर्फ अपने काम के लिए, उनको इतनी तैयारी करनी है इम्तिहान की, उसके बाद खत्म। पहले ये होता था कि जो कॉलेजेस के अलावा भी लाइब्रेरियां होती थी वहां पर लोग जाते थे, अखबार के जखाइर जहां मौजूद हैं वहां पे उनका मुताला करते थे, रसाइल जहां मौजूद हैं उनका मुताला करते थे। अब जैसे आजकल की ही बात कीजिए आप, आजकल में तमाम फाइलें जब से 1942 या कब से यह है तो वहां मौजूद है, और लोग पहले किस कदर वहां आते थे और उनसे मुताला करते थे, उनसे इस्तीफादा करते थे, आज मेरे ख्याल से वो सूरत हाल नहीं है।
1: सूरत हाल ना होने की वजह मुनव्वर भाई हसन भाई, मुझे ऐसा लगता है कि क्या यह भी है कि बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गई है सारी चीजें, और अदबी मबाहिस से किसी नौ की बजाहिर कोई फायदा लोगों को नजर नहीं आता जो नई रस है। हालांकि हमने ये देखा कि भाई पिछली सदी में हर जबान का अपना एक अदब होता है, हर जमाने में अदब लिखा जाता है, आज भी दुनिया की हर जबान में अदब लिखा जा रहा है, वो पढ़ा जा रहा है, लेकिन क्या हिंदुस्तान की सतह पर उर्दू जबान व अदब को पढ़ने वाले किसी तरह की एहसास से कमतरी का शिकार है, या क्या सूरत हाल है ये?
0: देखिए तारीफ फैदर साहब, आपने जो ये सवाल उठाया है ये बहुत अहम सवाल है। असल बात क्या है, देखिए अगर पहले हम बुनियादी सवाल की तरफ जाएंगे, अदब क्या है? अदब जो है ادب کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارے جمالیاتی ذوق کی تربیت کرتا ہے، اور اس کو کہنا چاہیے کہ جو ایستھیٹک ہمارا سینس ہے اس کو سیٹسفائی کرتا ہے، اور ادب میں تخیل بھی ہوتا ہے، اعلیٰ اور ارفع خیالات بھی ہوتے ہیں، اور انسانی جذبات کی ترجمانی

0: होती है।
1: तो अदब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको हम कारोबार के तौर पर या उस तरह लें। अदब का मुताला करने के लिए जो हमारे पास जो चीज हमें प्राइम मोटिव हमारा होगा वो हमारा अदबी जौक होगा। और आज के समाज में हम ये देख रहे हैं कि कैसी मकसदियत पैदा हो गई है। मकसदियत अच्छे सेंस में भी होती है और मकसदियत बुरे उसमें भी इस्तेमाल हो सकती है कि जिस चीज का हमें कोई बराह रास्त फायदा नजर नहीं आ रहा उस चीज में हम दिलचस्पी कम ले रहे हैं। और हमने भी अपने तालिब इल्मी के दौर में हम रिसाले अदबी रिसाले पढ़ते थे तो हमें उस वक्त यही होता था कि हमें कोई किसी फायदे के लिए हमने कभी नहीं 20वीं सदी या कोई रिसाला खरीदा। हम सोचते थे चलो इसमें फिक्र तौंसे का मजमून है या करिया लाल कपूर का तंज है तीनों नाश्ता है और हम इसके लिए पढ़ते थे। आज कारीन की एक बड़ी तादाद और लिखने वालों की ऐसी है जो इस मकसद से लिख रहे हैं कि या तो उनको एक चीज छप जाए या उनको जो है कई ऐसे अक्सर लोग हमसे रब्ता करते हैं कि हमें वो रिसाला तो मिल गया लेकिन वो जो बेदार था उसमें हमारा नहीं था वो मजमून देखने ये तो हमारी नजर देते हैं ऐसे ही मजमून। इसका मतलब ये है कि अगर हमारी तहरीर कहीं छपेगी हमारी तस्वीर छपेगी तब तो हमें दिलचस्पी है अदबी सहाफत से वरना हमें अदबी सहाफत से कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये चीज है कि जो बेलौस कारीन उनकी तादाद कम हुई है आज ऐसे लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं जो अगर उनकी चीज छपी तभी उनको दिलचस्पी होती है।
2: जी ये मुनव्वर भाई मेरे ख्याल से सूरत हाल आपके सामने भी आती होगी
1: जी
2: इदारत के दौरान के
1: यही
2: जो मजामीन आ रहे हैं वो मजामीन जो है वो भी किसी एक खास मकसद के तहत आते होंगे और जो मुबाहिस जिस तरह के कायम हो रहे हैं वो भी एक खास मकसद के तहत ही कायम हो रहे हैं। मतलब कोई खालिस अदबी मौजूआत का मुताला करने के लिए और उससे कोई एक बहस सामने आ रही है या कोई नतीजा अखज किया जा रहा है जिस तरह से हम देखते चले आए मतलब ये पूरी नस्ल जो है वो हमारे सामने जो 20वीं सदी में हमारे दरमियान आई जिसमें शमी मनफी थे या बाकर मेहदी थे या वारिस अलवी थे शमसुरहमान फारूकी थे ये पूरी नस्ल जो हमारे सामने आई ये अदबी मौजूआत से वाबस्तगी रखती थी। लेकिन शायद मेरे ख्याल से आज अदबी मौजूआत के बजाय जो है वो कारोबारी मौजूआत जो है वो ज्यादा दाखिल हो गए हैं। क्या ख्याल है आपका?
0: जी असल में ये आलमगीरियत तो और ग्लोबलाइजेशन के बाद जो चीजें सामने आई हैं उसमें उन्होंने ऐसा खर्चे एक इनकलाब बर्पा किया है लेकिन उसमें अदब के लिए जो शिद्दत होनी चाहिए जो उसके लिए दिल के अंदर अपने एक जज्बा होना चाहिए वो नहीं पाया जाता और उसके लिए मैं फिर यही कहूंगा उसके लिए मुताले का फुकदान है। मुताले नहीं करते और जौक पैदा नहीं होता। मुताले करने से असल में जौक भी पैदा होता है। हम किसी एक सिंह में मुताले करते हैं उसी में जौक हमारा पैदा होता है उसी में हम परवान चढ़ाते हैं और उसी में फिर हम मजमून लिखते हैं या शायरी करते हैं या तजिया मजाया मौजू पे किसी पे मजमून मुंतखब करते हैं। उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी जो है उसको दूर करने की जरूरत है और उसको दूर करना जो है वो उसके लिए क्या किया जाएगा उसके लिए ये होगा कि हम ऐसी चीजें सामने लाएं और मुताले के लिए ऐसी चीजों का इंतखाब करें जिन्हें हमारा जहन कबूल करता हो। अब हमारा जहन तो किसी चीज को कबूल नहीं कर रहा और हमें इम्तिहान देना है उसका तो वही इम्तिहान देने में वहीं पे ही बात देर हो जाती है। इसलिए नई नस्ल में ये चीजें नहीं पाई जा रही है और नई नस्ल ये जो सोचती है कि हमें जो है अदब की खिदमत तो अपनी जगह है हमें तो सिर्फ मुलाजमत हासिल करनी है और मुलाजमत हासिल करने के लिए हमें इतना पढ़ना जरूरी है उतना ही पढ़ें बाकी क्या करेंगे।
2: नहीं इसी के दरमियान मुनव्वर भाई मतलब सहाफियों के पास तो जैसे आप हैं या जिया साहब हैं तो आप लोगों के पास जो मजामीन आते होंगे ये सब मजामीन आते हैं हर महीने किस क्या तादाद होती है?
1: मजामीन बहुत बड़ी तादाद में आते हैं लेकिन उनमें ज्यादातर जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के उन तलबा या असातिज़ा के होते हैं कि जिनको किसी वायवा में किसी इंटरव्यू में शामिल होना है और वहां एक खास तादाद जरूरी होती है मजामीन की जो आपके छपे हों उसकी गिनती होती है। उस मकसद के मजामीन ज्यादा होते हैं और खालिस अदबी ज़ौक के लिए खालिस इल्मी मुताले के लिए लिखे गए मजामीन कम होते हैं हमारे।
2: शमसुरहमान फारूकी शायद अगर ये ऐसे मजामीन छापते रहते तो शायद शबखून जो है वो एक तानी खत्म ना कर पाता। मेरे ख्याल से शायद ये सारे रखा
0: है की सूरत हाल है मजामीन की सूरत हाल ये है कि कम से कम 15-20 मजमून 10 तो कम से कम वरना 10 से ज्यादा ही मजमून कम से कम जब भी मेल खोलो तभी सामने नजर आ जाते हैं। अब उनको आप निकालिए उन्हें देखिए पढ़िए तो उसमें ज्यादातर तादाद ऐसी होती है जैसे जैसे जिया साहब ने बताया जैसे जिस स्कॉलर होते हैं कि जी साहब मेरा मजमून लगना है मुझे 2 नंबर 4 नंबर इसके मिलेंगे आप इसको छाप दीजिए। ऐसे अफराद बहुत कम हैं जैसे प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब हैं प्रोफेसर अब्दुल हक साहब हैं इनके मजामीन आते हैं प्रोफेसर अकीकुल्ला साहब हैं ये लोग मजमून लिखते हैं लेकिन वही सूरत हाल होती है कि हर महीने तो छाप नहीं सकते कोई भी रिसाला हर महीने किसी को नहीं

0: कर सकता, और उसके लिए 3-4 महीने की जरूरत होती है, 3-4 महीने बाद उनके मजामीन छापे जाते हैं।
1: इसकी क्यों कैद होती है कि हर महीने नहीं छाप सकते हैं? असल में सरकारी रिसालों में ये कैद इसलिए होती है कि किसी भी सरकारी इदारे में ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हम किसी खास जो फर्द है उसके साथ कोई फेवर कर रहे हैं, चाहे वो कितना ही अच्छा लिखने वाला क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको बार बार छापेंगे तो ये भी हो सकता है कि हम उसके साथ कोई जानिबदारी बरत रहे हों। और क्योंकि सभी को मौका मिलना चाहिए, इसकी अगर नहीं मिले तो कोशिश यही होनी चाहिए सभी को मौका, इसीलिए ये रूल बनाया जाता है।
2: अब नई सदी में जो ये 21वीं सदी है मुनव्वर हसन साहब, इतने वर्षों में आप लोग भी इतने जमाने से इदारत कर रहे हैं या हिंदुस्तान के दीगर जो रसायल यहाँ से निकल रहे हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि नई सदी में जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ, ये भी मुमकिन है कि बहुत सारे लोग जो है वो इस एकेडमिक वर्ल्ड से अलग होके भी लिखने की कोशिश करते हैं या इस तरह के भी मौजूआत होते होंगे। जैसे मैं देखता हूँ कि जो पर्चे आर्मी सतह पर कुछ पर्चे हैं उर्दू के जो निकल रहे हैं, उनमें तराजिम शाये होते हैं, उनमें बहुत अच्छे मजामीन शाये होते हैं, नज्में शाये होती हैं। मेरे ख्याल से खालिस हिंदुस्तान की सतह पर लोग कम हैं, लेकिन अगर कम भी है तो उनकी शनाख्त क्यों कम मुमकिन है? मतलब किस तरह से उनकी शनाख्त होगी कि भाई ये लोग जो है वो एकेडमिक्स की दुनिया से अलग होकर एक खालिस जज्बे के तहत मजामीन लिख रहे हैं? क्या ख्याल है मुनव्वर साहब?
0: जी बिल्कुल, इस तरह तो होता है और बहुत से लोग कर भी रहे हैं ऐसा, अपने अपने मौजू से हटके भी लिखते हैं, मुख्तलिफ मौजूआत पर लिखते हैं, लेकिन वही सीनियर्स जो है वो मामला ये होता है कि उनकी सब चीजें सामने नहीं आ पाती हैं, फिर यह होता है कि वो किताबी शक्ल में भी सामने आती हैं, वो लोग उनको किताबी शक्ल में शाये करके पेश करते हैं, इसलिए सारे मजामी रसाइल में चले जाएं ऐसा मुमकिन नहीं होता। अखबार में तो खैर जा सकते हैं, अखबार में तो छप जाती हैं चीजें, लेकिन रसाइल का यहां तक ताल्लुक है, रसाइल का एक मिजाज होता है, हर रिसाले का एक अपना मिजाज होता है, वो उसके एतबार से मजामीन उसमें शाये किए जाते हैं, उसी के एतबार से अफसाने शाये किए जाते हैं, उसी के एतबार से अगलें शाये की जाती हैं। बाद रसाइल जो है वो सिर्फ जदीद तर्ज के वालों ने शाये करते हैं, बाद रसाइल जो है रिवायती वालों ने शाये करते हैं, बाद रसाइल जदीद और रिवायत दोनों को मिला के शाये करते हैं। ऐसे रसाइल की तादाद ज्यादा है जिसमें जदीद और रिवायती दोनों तरह के वालों ने शाये होती हैं और वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं, इसलिए कि उसके कारी दोनों तरह के मिल जाते हैं उसको। और यही बात सूरत हाल मजामीन की है, जब मजामीन का इंतखाब किया जाता है, आज सवाल पसंदी बहुत ज्यादा आ गई है नई नस्ल में, या नई नस्ल को छोड़िए जो पिछली नस्ल के भी बाज लोग हैं उनके यहाँ भी सवाल पसंदी आ गई है, और वो भी कोई किताब उठाई और उस पर कोई तबसराती मजमून लिखा और ज्यादा तवील मजमून हो गया तो उसको भेज दिया, साहब ये एक मजमून हो गया है इसको आप शाये कर दीजिए, नहीं शाये कर पाते हम लोग, मजबूरी है। रसाइल के सफात भी महदूद होते हैं, उन्हीं के अंदर मजामीन समेटने हैं, अब उसी में अगर हमारे पास 4-5 सफे के 8-10 मजमून आ गए तो हमारे रसाइल का तो पेट भर गया, और मजामीन आए हमारे पास 20-25 तो जाहिर है 15 मजमून तो नहीं छप पाएंगे, 15 मजमून में भी कोई और मजमून होंगे एक दो तो अगले महीने काम आ जाएंगे, वरना वो रखे जाएंगे या उनका तकाजा होगा, जैसे बताया उन्होंने किसी का तकरूर है, किसी की तरक्की है, किसी स्कॉलर की PhD जमा हो रही है उनको करना है, अब उसमें सूरत हाल ये होती है कि उनको बताया जाए।
2: ये मतलब बात बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन ये सब सूरत हाल को बदला कैसे जाए? मतलब हिंदुस्तान की सतह पर ये तो मसाइल है, ये मसाइल को कैसे बदला जाए? मतलब हमारे सामने, हमारे पेश नजर आपका जो तजर्बा है, हमारे पेश नजर जो मौजूआत या जो रसायल है कि भाई ये रसायल थे और इन रसायल को हमने जो है वो मतलब ऐसा जाना कि भाई इसी तरह से रसायल होना चाहिए, तो अब सूरत हाल को तब्दील करके रसायल की दुनिया में इंकलाब कैसे लाया जाए?
1: आप सही कह रहे हैं कि उसमें तब्दीली की बात भी हमें सोचनी चाहिए, हम यही नहीं सोच सकते सिर्फ के जो मसाइल हैं हम उनको गिनाने लगे। बात यह है कि अगर हम लोग अदब में सच्ची दिलचस्पी लें और जो रसाइल हैं उनको खरीदें, उनकी सरपरस्ती करें, उन्हें पढ़ें, और उनमें अगर हमें कोई कमी लगती है तो उसको पॉइंट आउट करना भी जरूरी है कि भाई आप जो है मुदीर को लिख सकते हैं कि इसमें आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगी, और उसमें अगर हम लोग दिलचस्पी लेंगे और रसाइल से पहले तो अदब में दिलचस्पी लेंगे अगर हम, तो मैं समझता हूँ कि रसाइल में एक नई जान पड़ सकती है। वैसे तो आप देख रहे हैं कि नई सदी जो है इसमें पूरा प्रिंट मीडिया ही एक डिक्लाइन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लोगों का ज्यादा वक्त जो है डिजिटल मीडिया में, मोबाइल में सर्फ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ डिजिटल रसाइल भी निकल रहे हैं, अदबी रसाइल अगर हम देखें, और जो सरकारी रसाइल है निजी भी है, ओवरऑल म्यार में मैं समझता हूँ कमी जरूर आई, लेकिन अगर हम लोग दिलचस्पी लें अपने जबान में, अपने अदब में, और रसाइल को खरीद कर पढ़ेंगे तो हालात बेहतर हो सकते हैं और नई सदी में हम एक अच्छी अदबी सहाफत जो है पेश कर सकते हैं।

0: खरीद के पढ़े जाए, इसकी पॉलिसी कैसे बनेगी हसन भाई?
1: खरीद के पढ़ना पॉलिसी क्या है, कुछ बहुत ज्यादा पैसे तो खर्च होते नहीं है, बस अपने दिमाग को इस तरफ लगाने की जरूरत है।
0: क्या कारईन जो इतने मजामीन भेज रहे हैं, क्या उर्दू के रसायल जो मुदीर हैं या जो इदारे रसाले निकाल रहे हैं, क्या उनको मालूम है कि उनके रसायल का कारी कहाँ है और उसको किस तरह से पकड़ना है? क्या ये पूरी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में तो कहीं कोई कमी नहीं है जिससे कारी तक हमारे रसायल पहुंच ही नहीं रहे हैं? क्या इस तरह की कोई कमी महसूस करते हैं आप?
1: नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन जिस डिजिटल दौर से हम गुजर रहे हैं उस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए कि उसकी उतनी जितनी मेहनतों की जरूरत है उतनी मेहनत नहीं हो पाती। असल में हुआ है कि एक बड़ा तबका जो है अदबी सहाफत का ही कह लीजिए, नई सदी में, इसमें 21वीं सदी में, ये सोशल मीडिया की तरफ चला गया है अभी गुज़िश्ते 8-10 साल से, और सोशल मीडिया पर जाने के बाद उनके सामने सूरत हाल यह है कि उनकी एक चीज अभी शायद हुई, अभी उनके पास कमेंट आने शुरू हो गए, बस वो फारिग हो गए, कहने लगे बहुत अच्छा मैंने लिखा। अभी पिछले दिनों एक थी शायद, मैं एक नज्म पढ़ रहा था कोई, उसमें लिखा हुआ था आओ बच्चों, भूलने के साथ तखातुब था, तो मैंने उसमें कमेंट किया कि ये गलत है और आप जो है आओ बच्चों लिखिए, तो उल्टा बजाय इसके कि कोई उसमें अच्छा कोई अदीब होता है कोई शायर होता है, कुछ लोग उनको फिर मेरे पास कमेंट आने शुरू हो गए, कैसे नहीं, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा, ये क्यों होगा। मैंने उन्हें लिख के समझाया कि जैसे आप ए लोगों बोलते हैं, ए लोगों नहीं बोलते, इसी तरह से आओ बच्चों बोलेंगे। तो वो ये शायरा थी, उनकी समझ आई बात, और उन्होंने दोबारा फिर वो नज्म अपनी ठीक करके दोबारा पोस्ट की। तो ये सूरत हाल है, 4 हमारे पास कमेंट आ गए, 10 कमेंट आ गए और हम फारिग हो गए कि हमने बहुत अच्छा लिख दिया है। रसाइल में तो ऐसा हो ही नहीं सकता किसी भी शक्ल में, चाहे कोई कितना भी कमजोर अदीब हो, वो ऐसा जाने ही नहीं देगा। लेकिन यह है कि चीजें ये सोशल मीडिया से नुकसान पहुंच रहा है, सोशल मीडिया में इसलाह की जरूरत है, सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इसमें इसलाह करें, और अच्छे लोग जो हैं वो भी सोशल मीडिया से जुड़ें और इसी तरह से जो चीजें देखें उन पर कमेंट करें, उन्हें बताएं, इसलाह करें उनकी, इसलाह करेंगे। अब मैंने उन्हें बताया कि जब आप सही लिखोगे तभी तो बच्चों की इसलाह होगी, वरना बच्चे तो यही पढ़ेंगे यही बोलेंगे, और जब तक इसलाह का आपके यहाँ पहलू नहीं होगा तो यही चलता रहेगा, यही सिलसिला आगे बढ़ जाएगा।
0: यकीनन
2: जैसे आप कुछ कह रहे थे, मैं ये एक तो आपने मार्केटिंग की बात की, थोड़ा सा प्रिंट मीडिया की मार्केटिंग मुतासिर हुई है, बहुत सी जो न्यूज एजेंसियां हैं बुक शॉप्स हैं उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया है या कुछ और कारोबार करने लगे, उससे हमारे भी काफी एजेंट्स और कम हुए हैं, और जब एजेंट नहीं होगा तो वो सप्लाई नहीं पहुंच पाती उन जगहों तक जहां तक हमारी पहुंचनी चाहिए, ये एक मसला है। और दूसरी बात, अभी जैसे मुनव्वर साहब ने कही, एक और अहद हाजिर में एक नई मसला ये भी है कि कोई भी शख्स जो है, एक नई तब्दीली आई है रवैये में कि वो सिर्फ तारीफ सुनना चाहता है। ये इंसानी फितरत है, हम ये चाहेंगे कि लोग हमारी तारीफ करें या हमें बहुत बड़ा चढ़ा के पेश करें, लेकिन हमें इसके लिए भी तैयार होना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हुई है या किसी दूसरे ने हमारी कोई गलती की तरफ निशानदेही की है तो उसे हमें मानना भी चाहिए। लेकिन आज ये एक अफसोस की बात यह है, और इससे अदब का नुकसान भी हो रहा है, कि आज का अदब लिखने वाला ये तवक्को कर रहा है कि जैसे ही उसकी तहरीर सामने आएगी तो तारीफ से लोग भी माने, और अगर कोई उसकी तनकीद करता है तो वो चाहे कितनी ही सेहतमंद और जायज तनकीद क्यों हो तो वो बुरा मानते हैं लोग, ये चीज गलत है।
0: मेरे ख्याल से शायद 20-21 सालों में मंजरनामा बहुत तेजी से तब्दील हुआ है, जो आम लिखने वाले हैं वो तेजी से हमारे दरमियान से गायब होते चले गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अब संजीदा मौजूदात में बहस करने वाले जो लोग हैं वो अगर हैं भी तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा वो शिरकत नहीं करते बल्कि किनारा कर रहे हैं। सूरत हाल इस कदर बिगड़ चुकी है, एक तो सोशल मीडिया और एक रसायल का जो एक पूरा एक, मैं समझता हूं कि एकेडमिक दुनिया जो हावी हो चुकी है रसायल पर, इसकी वजह से भी जो है, जो कि हर टॉम डिक एंड हैरी जो है वो पीएचडी में आ गया है, और पीएचडी के मौजूद बड़ी ऊट पटांग से होते हैं, उन मौजूद पे पीएचडी के वो मजामीन लिखते हैं, और जब मजामीन लिख के भेजते हैं तो जाहिर है कि मुदीर एक नहीं मना करेगा, 2 मना करेगा, 4 मना करेगा, लेकिन वो उसकी भी एक मजबूरी है कि वो इदारत को अपनी जारी रखेगा तो कहां तक मना करेगा। तो मेरे ख्याल से इस फिजा से भी जो है वो संजीदा लिखने वाले वो शायद दूर हुए हैं, क्या ख्याल है?
1: असल में संजीदा लिखने वाले दूर हुए हैं, और उसकी वजह यही है कि वो क्या करें, उनके सामने मसला यह है कि वो करें क्या, दूर क्या हो गए, एक तो एक पूरी की पूरी नस्ल खत्म हो गई है, या वो उनकी इस दहलीज पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने लिखना पढ़ना छोड़ दिया है, और नई नस्ल जो आई है वो अपना जिस तर्ज पे लिख रही है वो सबको पता है, और कुदरत बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल, पहले ये होता था कि लोग बर्दाश्त भी करते थे और हिम्मत भी रखते थे बर्दाश्त करने की। मुझे एक पुराना वाकया याद आ गया कि हजरत माहिर कादरी तफसीर निगारी में बहुत मारूफ था,
3: फरहान निकालते थे,
1: बहुत फरहान निकालते थे और किसी की भी किताब के अपना
3: तबसरे करते थे,
1: इतना तबसरा करते थे कि हर बहर उसको। अब उनके पास जोश मिली आबादी की यादों की बारात गई तो उन्होंने कहा कि भाई क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि जोश साहब अपने हाथ से लिख के भेजेंगे तो तबसरा करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा। तो जोश साहब ने एक किताब भेजी, उसको लिखा बकरा हाजिर, जोश साहब ने लिख के भेजा। तो इतनी सलाहियत थी, हालांकि जोश मिली आबादी के सामने पास की कतारें खड़ी रहती थी, उसके बावजूद भी उन्होंने, उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं गिरफ्त करेंगे मेरी, लेकिन उनके अंदर यह सलाहियत थी कि वो उसको बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते थे। आज बर्दाश्त करने की हिम्मत है नहीं किसी में भी, और आप किसी भी अदीब को उठा लीजिए, किसी को भी कोई बर्दाश्त नहीं करता।
3: गुफ्तगू में बहुत आप लोगों से दिलचस्प गुफ्तगू हुई, मारूल कादरी का आपने तस्करा किया। अभी मैंने कुछ दिनों पहले मैं उनवान चिश्ती का एक मजमून देख रहा था कि उन्होंने अपनी एक किताब है उनकी गालिबियात चंदवानात, तो उसके आखिर में जो है वो कसीदे राइया का उन्होंने किसी मौलवी से तर्जुमा करवाया था और वो उसको कसीदे राइया के तर्जुमे को उन्होंने उसे शामिल किया। तो एक बहुत अच्छे आलिम है, जलील शख्सियत है, उन्होंने उसके ऊपर तबसरा करा। उन्होंने कहा कि उनवान चिश्ती को या तो अरबी नहीं आती थी या उन्होंने जिससे कराया उसे नहीं आती थी, कि पूरे कसीदे राइया को जो है उन्होंने तबाह कर दिया। तो उस पूरे मजमून को उन्होंने लिखा छपा और जितने संजीदा लिखने वाले हैं सारे लोगों ने उसकी तारीफ की और उसको सराहा कि भाई उनवान चिश्ती जैसा आदमी है उससे गलती हुई है। तो हमारे वहां मेरे ख्याल से बात सही है कि जो एक पूरा मुआशरा तनकीद बर्दाश्त करने वाला था वो शायद खत्म हो गया। इस गुफ्तगू में हसन जिया साहब ने जो बातें कही या मुनव्वर साहब आपने जो बातें कही, ये हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा सोचने का मकाम है कि आज जो पूरा मंजरनामा हमारे सामने है उर्दू सहाफत को कैसे तब्दील किया जाए, कैसे संजीदा मौजूआत को पेश नजर रख के उन पर काम किया जाए। पुराने लोगों ने जो काम किया है इस वक्त जरूरत यह है कि उनको सामने दोबारा लाया जाए। जब तख्लीकी सलाहियतें कमजोर पड़ने लगती हैं किसी मुआशरे में तो उनको इस बात को की जरूरत महसूस करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने जो काम किया है हम पहले उसको सामने लाए और लाते रहे उस वक्त जब तक हमारे अंदर जो है तख्लीकी सलाहियत वो दोबारा जोश न मारे या बेहतर तरीके से हमारी सलाहियतें काम में न आए। आज की इस गुफ्तगू में उर्दू सहाफत के मौजू पर मुनव्वर हसन कमाल साहब और जनाब हसन जिया साहब आप दोनों से गुफ्तगू हुई, बहुत मालूमाती, बहुत अहम मौजू और बहुत ही अहम निकात की तरफ आप दोनों ने इशारा किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं और मैं आकाशवाणी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस मौजू पर एक बहस करवाई जिसका आज का जो मौजू था कि नई सदी में उर्दू सहाफत, इस मौजू पर बहुत ही बामानी बहस हुई। बहुत बहुत शुक्रिया।
4: सामीन अभी आप मुबाहिसा सुन रहे थे, शुरका थे जनाब मुनव्वर हसन कमाल, जनाब हसन जिया, जनाब तालीफ हैदर। निजामत के फराइज अंजाम दे रहे थे जनाब तालीफ हैदर। तो सामीन ये था आज का प्रोग्राम अंदाजे नजर। अपने मेजबान नसरीन बेगम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।

फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था गुलाम मोहम्मद ने। और शामिल ये सुनी प्रोग्राम की अगली पेशकश कुमार सानू और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में, जान की कसम फिल्म का ये नगमा।

0: मौसम
1: क्या बहार है,
0: सारा आलम
1: बेकरार है,
0: ऐसे में तू हम
1: दीवाने हो जाए ना।
0: देखो मौसम
1: क्या बहार है।

0: दरिया की हर मौज में अरमानों का जोर है, लहरें डोले
1: झूम झूम के
0: शाही का मुँह
1: झूम झूम के,
0: ऐसे में क्यों हम
1: दीवाने हो जाएगा।
2: उस फिल्म का नाम आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, नगमनी गाते मजरू, मुसीकार चित्रगुप्त। और सामने सुनिए अनुराधा पौडवाल कुमार सानू की आवाजों में फूल और कांटे फिल्म का नगमनी गा रानी मलिक, मुसीकार नदीम शेरवानी।

हवे ता कोई वो पैसे भी ना होवन ता किंज करे सा। इस वेले ता बचत ही काम आवदी है। हुणे बचत किवे करे सा तुहाको दसेंदे हां ना। बैंक विच बचत खाता खुलवा घिनो, एफडी भी करवा सकते हो। इंदा ब्याज मिलदा रहंदा है ते फिर नकद रकम कढ़ा भी कढ़ाई जा सकती है। पोस्ट ऑफिस विच भी पैसा सुरक्षित रहंदा है। बचत पत्र भी खरीदे जा सकती है। जीवन बीमा भी बहुत बढ़िया तरीका है। बाकी इंजन फिजूल खर्चे तुम बचो। बचत का मकसद यही है कि किसी को कर्जा न लहाना पवे तो बुढ़ेपा भी सुखी वसे। ते फिर आज तुम ही बचत शुरू करो। ते आओ सुनेंदे हां एक गीत जीशम खान रोखड़ी दी आवाज़ विच।

मोती आजकल ग्लूकोमा यानी काला मोतिया के मामले बहुत देखे जाते हैं। इस नाल अखां दी रोशनी घट जाती है ते जे इलाज ना कीता वे सी तां बहुत नुकसान होंदा है। इसलिए ध्यान देवो कि अखां अगो धुंधला आसी काला आसी तां फौरन डॉक्टर को दिखाओ कि ग्लूकोमा तां कहनी। डरो ना, इसका इलाज दवाइयां नाल भी थींदा है। अखां ते ध्यान देवो, अखां हैं ता जहान है। तो हुण वारी है गीत दी।

Ich bin ein Terrorist, ich bin ein Terrorist.

Marines.

I'm gonna go to the hospital.

Peace.

ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ

ਕੋਸਾ ਨੂੰ ਪਰਖ ਜਾਣੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ।

ਮਾਲਕ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਾਹਤ।

मधुबी मोहम्मदी।

Let's go.

I'm gonna go get some more.

अभी है जारी। जान भी दे देंगे हम अपनी, जंग अभी है जारी। नहीं हटेंगे पीछे, हर हद पूरी है तैयारी।

अगस्त 1947 नु आजादी मिली, फिर देश की संविधान सभा ने जनवरी 1950 च यह मन्या कि वंदे मातरम नु राष्ट्रीय गीत दे समान सत्कार मिलेगा। यह भारत दे दिल विच वंदे मातरम दी महत्ता दा सब तो वड्डा उदाहरण है। गीत दी हर लाइन मां भारत दे रूप नु सुंदरता, शक्ति, तन ताना ते शांति दे रूप च दर्शाउंदी है। सुजलाम, सुलफाम, मलियम, शीतलाम, यह शब्द सिर्फ वर्णन नहीं, यह तां भारत मां दी धार्मिकता, सभ्याचारिकता ते प्रकृति दी विविधता नूं प्रगट करदे ने। अज जदों टेक्नोलॉजी मशीनीकरण ते रुझाना दा दौर है तां देश भगती दी महत्ता कई बार कमजोर लगन लग पैंदी है, पर वंदे मातरम सानूं याद दिवाउंदा है कि धरती साडी मां है, इस मिट्टी ने सानूं पालिया है, असीं जिथे भी जाइए पर साडी रूह इस धरती नाल जुड़ी है। जे असीं अपनी मां भारत दा कर्जा नहीं चुका सकदे तां घट्टो घट उस दा सतिकार तां करिए। अज दी नौजवान पीढ़ी नूं इह गल जरूर सिखनी चाहीदी है, वंदे मातरम सिर्फ बोली दा नारा नहीं, इह जिम्मेवारी है। मां भारत दी सेवा कदे सैनिक बन के, कदे अध्यापक बन के, कदे किसान, कदे डॉक्टर, कदे इंजीनियर या कदे एक सच्चे नागरिक दे रूप विच हर कोई कर सकदा है। जे असीं सच्चे दिलों वंदे मातरम कहंदे आं तां सानूं अपनी मां भारत लई कुछ ना कुछ करना भी चाहीदा है। वंदे मातरम ने भारत नूं आजाद कीता, अज यही गीत सानूं एकता, प्यार ते राष्ट्रपति दे रस्ते ते लै जांदा है। आओ सारे मिलके ओही जज्बा, ओही हिम्मत ते ओही समर्पण अपने अंदर जगाइए ते मां भारत नूं नमन करिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੇ ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨ ਵਾਣੀ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोबरधन को अपनी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगर पालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
1: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस पर कुल 8,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। परियोजना से यात्रा का समय घटकर आधा हो जाएगा। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। विधेयक में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई राशि को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। उधर लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे

0: ये योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। श्री जोशी ने कहा कि योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए कमाए हैं। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बंबई उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपनी कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख से अधिक का जुर्माना भी लगाया जो पीड़िता को दिया जाएगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्षों से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की है। तन्वी शर्मा ने कोरिया मास्टर्स महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। प्री क्वार्टर में तन्वी ने श्रेयांशी वली शेट्टी को हराया। अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज भी सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, साय के 7:05 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम किसानवाणी का, जो कि है प्रायोजित कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा।

0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को सम्मान, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम स्वीकार करें कमलेश मुद्गल और
4: गौतम झा का
3: नमस्कार। जानकारी से भरपूर ये कार्यक्रम हम आपके लिए ला रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आप सभी श्रोता इससे लाभ उठा रहे हैं।
4: बिल्कुल कमलेश जी, बहुत सही कहा आपने, लाभ तो उठा ही रहे हैं हमारे श्रोता, लेकिन उनके मनोरंजन का भी हम पूरा ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ कृषि से जो संबंधित कार्यक्रम है उसका भी हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि किसान भाइयों को नई नई जानकारियों से अवगत कराया जाए।
3: और जब हम देखो गौतम, नई नई जानकारी देने की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं FPO की, तो मालूम है आपको कि ये FPO क्या है?
4: जी बिल्कुल, FPO जो है वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। और किसानों का एक पंजीकृत समूह होता है कमलेश जी, जो मिलकर खेती, खरीद, भंडारण, प्रोसेसिंग और अपनी उपज की बिक्री करता है ताकि किसानों को बेहतर दाम और कम लागत मिल सके।
3: क्या बात है। और जब हम इसके फायदे बताने की बात करते हैं, यानी जो हमारे किसान भाई इससे लाभ उठा सकते हैं, वो लाभ क्या है? देखो, बीज, खाद और कीटनाशक जो थोक में इनको सस्ते दाम पर मिल जाते हैं, फसल को ये मिलकर बेच सकते हैं जिससे कि इनको बेहतर कीमत मिल जाएगी, बैंक ऋण और सरकारी योजनाओं तक इनकी आसान पहुंच हो जाएगी और छोटे

0: किसानों की जो सौदेबाजी की जो ताकत है ना, उसमें भी इनको बढ़ावा मिलता है। और मैं आपसे एक ये बात पूछना चाह रही थी कि आज बड़ा आप ना धीरे धीरे बोल रहे हो कि घर से कुछ दाल रोटी सब्जी कुछ खाकर आए हो कि नहीं खाकर आए हो, ये बता दो मुझे।
1: बिल्कुल खा के आए हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, सब्जी थोड़ा कम हो रहा है ना थाली में, तो वो भी एक प्रभाव कह सकते हैं।
0: लेकिन मैं ये कह रही थी कि दाल तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दाल खाएंगे तो उससे हमें प्रोटीन मिलेगा, और जो प्रोटीन है वो तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आपस में तो बात कर लेते हैं कि दालें हमें क्यों खानी चाहिए, क्यों हमें इसका उत्पादन करना चाहिए, क्यों हमारे किसान भाई जो है दाल का उत्पादन करे, लेकिन जो विस्तृत जानकारी है वो तो हमारे विशेषज्ञ ही दे पाएंगे ना।
1: बिल्कुल, एक चीज मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कमलेश जी, कि जैसे आपने दाल की बात करी तो कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी रंगीन मिजाज, तो अगर आदमी खुश है तो वो रंगीन मिजाज का होता है, बातचीत करता है बहुत अच्छी तरीके से, आपको लगेगा कि उसमें कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। कमलेश जी दलहनी फसलों की बात कर रहे थे, दाल की बात कर रहे थे, तो क्यों ना हमारे विशेषज्ञ भी स्टूडियो में मौजूद है, बैठे हुए हमारे सामने, तो हम जो विस्तृत जानकारी है अपने श्रोताओं को इनके द्वारा दिलवाते हैं। तो आज के जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर यशवीर सिंह सिवे, आप सहायक महानिदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा नई दिल्ली में।
0: डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद जी, बहुत बहुत।
0: दालें हमारे भोजन का अभिन्न अंग है, और कहना चाहिए कि बिना दाल के भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्यों इतने महत्वपूर्ण है ये दालें हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए?
2: हाँ देखिए, दालों के बिना तो भारत में विशेषकर जो हमारा खाद्यान्न का जो आपूर्ति है या प्रोटीन की पूर्ति है वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी ज्यादातर जो जनसंख्या है वो वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन में दाल रोटी का बड़ा महत्व है
0: जी।
2: तो दाल जो है हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, और दाल एक साथ एक तरीके से जब हम उगाते हैं तो हम मिट्टी का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, क्योंकि वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति तो करते ही हैं, क्योंकि ग्रंथियां होती हैं उनकी जड़ों में, और जो ग्रंथियां बनती हैं उनमें वातावरण की नाइट्रोजन जो होती है वो इकट्ठा करती है, अर्थात एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी पूर्ति करते हैं और जो आगे आने वाली फसल है उसके लिए भी काफी मात्रा में नाइट्रोजन को छोड़कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, और यदि हम डबल पर्पज कहते हैं मूंग या उड़द या काउपी आते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं, एक तो हमें दाने से जो है दाल मिल जाती है, और बचा हुआ जो अवशेष है मिट्टी में मिलाकर ग्रीन खाद के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि यदि हम दालें ज्यादा उगाएंगे तो उसका जो हमारा वातावरण भी ठीक रहेगा, वातावरण इस वजह से ठीक रहेगा क्योंकि हमको कम केमिकल फर्टिलाइजर देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि दालों के अंदर जो विशेषकर हमें फास्फोरस देने की जरूरत पड़ती है, बाकी पोषक तत्वों की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन की बहुत कम मात्रा 15 से 20 किलोग्राम की जरूरत पड़ती है, जबकि हम कंपेयर करें हमारी दूसरी सीरियल से, जैसे हमारी मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, या हमारी धान है, उसमें बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की, लगभग 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, लेकिन इसमें केवल 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, अर्थात मिट्टी का स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के स्वास्थ्य के लिए, वातावरण का स्वास्थ्य इस वजह से जरूरी है क्योंकि जो हम नाइट्रोजन डालते हैं तो जैसे धान के अंदर, मक्का के अंदर, तो काफी मात्रा में जो वो अमोनिया गैस बनकर उड़ जाती है, लगभग 60% जो वातावरण में चली जाती है। तो उस तरीके से वातावरण को सुरक्षित रखना है, मिट्टी को सुरक्षित रखना है, और हमारे मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमको दालों का बहुत बड़ा महत्व है। और विशेषकर जैसे मैंने पहले ही कहा कि हमारे भारत में जो है काफी जनसंख्या जो वेजिटेरियन है और दाल रोटी पर निर्भर करती है
0: जी, यानी कि अगर हम दाल की खेती करते हैं, दलहनी फसलों की खेती करते हैं, तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात बन जाती है।
2: बिल्कुल,
0: तो ऐसी कौन कौन सी प्रमुख दलहनी फसलें हैं जिनको उगाकर हमारे किसान भाई अधिक मुनाफा कमा सकते हैं?
2: देखिए, इस समय जो खरीफ का मौसम चल रहा है इसमें अरहर या तूर कहते हैं हम, वो एक प्रमुख फसल है हमारी, उसके बाद में जो है मूंग उड़द लोबिया कहते हैं, ये प्रमुख फसल है, चार फसलें ऐसी हैं, ग्वार भी कुछ क्षेत्र में उगाई जाती है, पांच कह सकता हूं मैं, इनमें सबसे जो प्रमुख फसल है वो अरहर की है, क्योंकि अरहर की फसल जो है लंबे ड्यूरेशन की भी होती है, लेकिन मूंग उड़द काउपी हम मोट कहते हैं उसको भी उगा सकते हैं, तो ये कम अवधि की होती हैं, और विशेषकर मूंग उड़द तो जो है अभी तक उसकी बुआई चल रही है, और अभी बुआई कर भी सकते हैं और भी कर सकते हैं, मतलब उसकी अगेती फसल काटने के बाद में, विशेषकर जिन्होंने मक्का लगाई है, ज्वार लगाई है चारा काटने के बाद में, तो उसको जो है आप उसके बाद में मूंग उड़द लोबिया लगा सकते हैं, उसका तो इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि वो कम अवधि की होती है और विंडो पीरियड में भी हो जाती है, लेकिन अरहर जो लंबी अवधि की है इसको जो हम जून के महीने में लगाते हैं, और अभी जो हमारे भारत सरकार ने जो है पल्स मिशन भी चलाया, पल्स मिशन बहुत बड़ी योजना है भारत सरकार की, उसमें आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, क्योंकि इस साल हमारा पल्स का प्रोडक्शन जो लगभग 25 मिलियन टन के आसपास हुआ है, इसको हम 35

0: मिलियन टन करना चाहते हैं, अर्थात हमको 10 मिलियन टन 5 साल में जोड़ना है, तो उसके लिए जो है भारत सरकार ने 11,440 करोड़ रुपए रखे हैं, जो 2025-26 से शुरू हो गया है और 30-31 तक चलेगा। इसमें बहुत सारे उनके हमारे ICR के और जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, सबको जोड़ा गया है। इसमें प्रमुख जो आयाम है वो ये है, एक तो क्षेत्रफल को बढ़ाना, क्षेत्रफल को जहां पे हम धान काटने के बाद में हमारा खेत खाली रहते हैं, विशेषकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तो वहां पे हमको जो मूंग उड़द को उगाना है कम अवधि की होती है, एक तो क्षेत्रफल उगाने की बात है, दूसरी हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमको अच्छे बीज की जरूरत है, तो उसमें जो है भारत सरकार ने ये रखा जो सीड किट देने, करीब 88 लाख हमको सीड किट 5 साल में देने हैं। ये बहुत बड़ा एक सहयोग होगा किसानों के बीच में, अच्छे क्वालिटी के सीड ले जाएंगे जो अच्छी पैदावार देने वाली किस्में हैं। दूसरा ये है कि इसके साथ साथ कि हमको जो है करीब 1000 प्रोसेसिंग और पैकेजिंग सेंटर बनाने हैं, उसमें अनुदान दे रही है गवर्नमेंट 25 लाख रुपए। यदि कोई जो प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का यूनिट बनाना चाहते हैं तो उसके 25 लाख रुपए पर फार्मर के हिसाब से आपको सब्सिडी दे रही है। तो इसमें एक तो है कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्षेत्रफल को बढ़ाना है, प्रोसेसिंग को, पैकेजिंग को बढ़ाना, ताकि जो उसकी उपलब्धता बन सके और हमारा स्टोरेज और फूड चेन वैल्यू एडिशन सब इसके अंदर आ सके। तो पल्स मिशन जो बहुत बड़ा हमारा एक तरीका भारत सरकार का एक मिशन है, जिसमें हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से भारत सरकार ने अपने आप को तैयार किया है और अच्छे अच्छे बीज लेके, अच्छे अच्छे प्रौद्योगिकी लेके आ रही है, तो मेरे विचार से इसमें हमको सफलता मिलेगी।
1: हमें पूरा यकीन है कि जो हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और उनको जो जानकारी दी जा रही है उससे उनको पूरा लाभ मिल रहा होगा। तो अभी रुकते हैं एक छोटे से अंतराल के लिए और अंतराल के बाद दोबारा से लौटते हैं।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे,
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: ब्रेक के बाद पुनः एक बार कार्यक्रम में आपका स्वागत है, और चर्चा चल रही है दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य एवं देखभाल, और विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर यशवीर सिंह सिवे।
1: तो डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं दलहनी फसलों की, तो कुछ ऐसे उत्तम किस्में होंगी जिनको कि हमारे किसान भाई लगाएंगे तो उनसे उनको अधिक मुनाफा मिलेगा, तो ऐसी वो कौन कौन सी किस्में हैं जिनको कि किसान भाई लगा सकते हैं?
0: देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा, बहुत सी किस्में जो है येलो मोजेक पर ऐसा आता है और ये प्रमुख समस्या है विशेषकर खरीफ के सीजन में, तो ऐसी बहुत सारी किस्में निकाली गई है, लेकिन वो लोकेशन स्पेसिफिक है, किसान भाइयों को उनके बीज की उपलब्धता जो है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है, जो हमारे बीज के वितरण सहकारी कोऑपरेटिव है, उसके माध्यम से अवेलेबल कराए गए हैं, क्योंकि इस समय तो ज्यादातर लगा ली है, लेकिन जब भी किसान भाई बीज को लें, ये सुनिश्चित करें कि किसी प्रमाणित संस्था से बीज को लेना चाहिए, चाहे वो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, कृषि विश्वविद्यालय है, पूसा संस्थान है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और बीज खरीदते समय जो है अपनी जो है रसीद जरूर लें, क्योंकि बीज जो है जैसा बोएंगे हम वैसा ही काटेंगे विशेषकर, और ये भी बात ध्यान रखने की है, जब हम बिजाई करते हैं तो बीज का शोधन करके बोए। बीज का शोधन जो है 2-3 तरीके से किया जाता है, एक तो जो है हम बायोन्यूकुल यानी कि बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो भी राइजोबियम का टीका है उससे जो उपचारित करने के बाद बोए, और दूसरे जो कभी कभी जो हमारी बहुत सी जो सॉइल बॉर्न डिजीज होती हैं, तो उसके लिए हम फंजीसाइड का भी इस्तेमाल बताते हैं कि उसका भी इस्तेमाल करके फंजीसाइड का भी हम सीड कोटिंग करके जब बोएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से अपने क्षेत्र के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं को बोएं, और जो अपने क्षेत्र के लिए अनुमोदित नहीं है उनको ना बोएं। रीजन स्पेसिफिक किस्में का निकालने का मतलब ये होता है कि अपने क्षेत्र विशेष के लिए, क्योंकि जलवायु अलग है, मिट्टी अलग है, ड्यूरेशन अलग है, तो ग्रोइंग सीजन अलग है, उसी हिसाब से जो चुनना चाहिए। तो ये तो होगी किस्मों की बात। अब आती है बात कि इस समय जो लगी हुई है, अब उसको उनमें क्या कर सकते हैं किसान भाई, क्योंकि इस समय जो है अरहर एक लंबी ड्यूरेशन की फसल है। अरहर को हम जो सिंगल क्रॉप के रूप में भी उगाते हैं और मिश्रित खेती के रूप में भी उगाते हैं। अरहर के साथ

0: में उगाते हैं, ज्वार बाजरा मक्का ये सब उगा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम जो हमारी मूंगफली है, सोयाबीन है, इसको भी उगा सकते हैं सह फसली खेती के रूप में। अर्थात जो है हम दो लाइनों अरहर के बीच में जो है विशेष कर हम एक मक्का की, ज्वार की, बाजरे की ऐसे लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सह फसली खेती कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस समय जो लगा ली है उसकी देखभाल करनी है, तो इस समय जो है क्योंकि बारिश भी अच्छी हो रही है और कहीं कहीं बारिश नहीं भी हो रही है, दोनों ही चीजें हैं, एलिनो का भी इफेक्ट है। तो जहां पे बारिश अच्छी हो रही है वहां तो पानी का निकालने का प्रबंध उचित रखना चाहिए, और जहां बारिश नहीं हो रही है वहां पे हमको जो पानी की जरूरत है पानी लगाना चाहिए, लेकिन हमको फ्लड इरिगेशन नहीं देना चाहिए इनके अंदर। जो विशेषकर जो दाल वाली फसलें हैं हमारी, इनके अंदर स्प्रिंकलर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। और विशेषकर मैं ये बताना चाहूंगा कि अरहर के अंदर जो है ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब आती है बात कि जिन्होंने जो है मूंग उड़द लगा ली है उनकी देखरेख कैसे करें। मूंग उड़द को लगाने के लिए जितनी भी दाल वाली फसलें खरीफ के सीजन में विशेषकर हम ये बताते हैं किसान बहनों और भाइयों को कि उनको जो रेज बेड पर लगाना चाहिए। रेज बेड पर इस वजह से लगाना चाहिए यदि बारिश ज्यादा भी हो जाती है तो उनकी फसल को नुकसान ना हो। और दूसरी जो बात यह है उसमें जो है हमारे खरपतवार भी कम आते हैं, तो इस तरीके से जो बुआई करनी चाहिए। और बिजाई कर ली है अब इस समय जो है विशेषकर जहां पानी की कमी है पानी जरूर दें, और जहां पानी की जरूरत नहीं है और पानी अधिक हो गया उसको पानी का उचित निकास रखें। और दूसरी बात यह है कि इस समय कभी कभी खरपतवार बहुत ज्यादा अटैक होता है, और खरपतवार जो हमारे वातावरण से जो हमारी सनलाइट है उसके लिए कम्पीट करते हैं, मॉइस्चर के लिए करते हैं, नमी के लिए, पोषक तत्वों के लिए करते हैं, इन सब के लिए जो प्रतिद्वंदता करते हैं फसल के साथ में, तो उनको निकालना जरूरी है। और इस समय जो है किसी भी खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम प्री मेजन सर्विस राइड होती है इनमें उन्हीं को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। इस समय जो है वो या तो जो है खुरपी से या हैंड सिंग हैंडों से खरपतवारों को निकालें। उसके दो फायदे होंगे कि एक तो खरपतवार निकल जाएंगे और खरपतवारों को जो है ऊपर हम मल्चिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर बिछा सकते हैं। और दूसरी बात यह है जड़ों के अंदर जो वायु का संचार अच्छा होगा, तो यदि जड़ों के अंदर वायु का संचार अच्छा होगा तो ग्रंथियां जो बनती हैं, नूडल जो बनती हैं अच्छी बनेंगी, और वातावरण से जो है उनकी नाइट्रोजन की एकत्रीकरण करने की क्षमता बढ़ जाएगी।
1: तो डॉक्टर साहब कीट प्रबंधन की बात करें तब हमारे किसान भाई क्या करें?
0: देखिए कीट भी एक प्रमुख समस्या है, विशेषकर जो है इस समय हमारी व्हाइट फ्लाई आती है, सफेद मक्खी आती है, और वो वायरस का कैरियर का काम करती है। यात्रा जो हमारी येलो मोज़ेक वायरस डिजीज है विशेषकर मूंग उड़द काउपी के अंदर आती है, तो उसको जो है वायरस को नियंत्रण करने के लिए हमको जो सफेद मक्खी को नियंत्रण करना पड़ेगा। तो सफेद मक्खी को नियंत्रण करने के लिए हमको इमिडाक्लोपीड दवाई आती है, उसको जो है 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, और घोल की मात्रा जो है लगभग 200 लीटर जो है प्रति एकड़ के हिसाब से, और हेक्टेयर में जो है करीब 500 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जो है सफेद मक्खी का नियंत्रण करें ताकि जो है उनकी क्रॉप जो है ये जो येलो मोज़ेक वायरस से बच सके। तो इस समय जो है विशेषकर सफेद मक्खी का ही होता है, और आगे आने वाले समय में होगा प्रकोप जो एक हमारा पोर्ट बोरर भी आता है, तो लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है, अभी नहीं बनी होंगी पोर्ट्स वगैरह, लेकिन हाँ कुछ जिन्होंने लेट स्विंग की होगी मूंग की उनमें आने की संभावना हो जाती है। तो पोर्ट बोरर के लिए हमको विशेषकर ये ध्यान रखना है कि निगरानी करते रहना है और जैविक नियंत्रण भी करें हम, येलो जो हमारी ट्रैप होती है उनको लगाएं ताकि वो उस पर चिपक जाएं, और जो हम किस तरीके से कंट्रोल से कर सकें। और नीम ऑयल का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नीम ऑयल क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत से किसान भाई और बहन आजकल जैविक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती करने के लिए उनको जो है किसी भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि बायो फर्टिलाइजर का जो खाद के रूप में इस्तेमाल करना है। और इसके साथ साथ जो है उनको नीम का जो है घोल बनाकर, अर्थात 1 मिलीलीटर जो है प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए ताकि उनके जो कीड़े मकोड़े जो भी हैं वो नियंत्रण हो जाए। तो इस तरीके से जो है कीटों का नियंत्रण भी जैविक तरीके से भी किया जा सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, जो भी जलवायु परिवर्तन होता है उससे हमारे जो दलहनी फसलें हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: हाँ देखिए, इस साल जो है एलिनो का इफेक्ट है और एलिनो के इफेक्ट की वजह से हमने पूरे ICR ने खेत बचाओ अभियान चलाया था, उसमें हमने यही कहा था कि इस साल जो है आपको दाल वाली फसलें बोनी चाहिए। जैसे एलिनो का इफेक्ट है तो इसमें जो है कहीं बारिश बहुत ज्यादा हो जा रही है, सडनली हो जा रही है, और जलवायु परिवर्तन का ही प्रभाव है, और कहीं हो नहीं रही है, तो इसका प्रभाव सभी फसलों पे आता है, लेकिन विशेषकर जो हमारी दाल वाली है इन पर कम प्रभाव पड़ता है
1: जी।
0: जो अधिक पानी वाली फसलें उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है
1: जी। यानी कि जो हमारी दलहनी फसलें हैं उनमें कम पानी की आवश्यकता है, तो इसलिए जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है इनके ऊपर कम पड़ता है, यानी ये हमारे वातावरण के लिए भी लाभदायी है
0: और इनको इस वजह से ही जो

0: खेत बचाओ अभियान में जो हमने 1 जून से 30 जून के बीच में चलाया था, उसमें यही बताया था कि अपने कम से कम जो है 10-15% या 25% तक भी दालमी फसलों को लगाएंगे इस साल तो अच्छा मुनाफा कमाएंगे, आपकी जब मिट्टी भी अच्छी रहेगी, वातावरण भी अच्छा रहेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। वो इसी वजह से बताया गया था क्योंकि बारिश कम होने की संभावना है और बारिश होगी भी तो कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसी वजह से दालों को जो प्रीफर किया गया इस साल।
1: मिट्टी स्वस्थ होगी तो उसमें जो भी हम फसलें उगाएंगे वो सारे स्वस्थ रहेंगे, यानी उनके अंदर जितने भी पोषक तत्व बरकरार रहेंगे उतने ही पोषक तत्व हमें मिलते रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, जब हम दलहनी फसलों की बात करते हैं तो क्या मृदा स्वास्थ्य में दलहनी फसलों की अहम भूमिका है?
0: बिल्कुल, मृदा स्वास्थ्य का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि नाइट्रोजन की, जैसे मैंने बताया, इनमें बहुत स्टार्टर डोज की जरूरत पड़ती है 15-20 किलोग्राम, और जबकि हम धान को देखें तो 120-150 किलोग्राम नाइट्रोजन की, ऐसी मक्का के लिए 120-150 किलोग्राम है, तो इसका मतलब ये बहुत मीगर अमाउंट जो है इसको नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है, और ये अपनी तो पूर्ति करते ही है, इसके साथ साथ जो आने वाली फसल है उसके लिए भी नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर में छोड़ कर जाते हैं, और जो जीवाणु होते हैं उनकी भी एक्टिविटी जो बढ़ जाती है, और जो हमारे अवेलेबल पोषक तत्व तो नहीं है उनको भी अवेलेबल कराते हैं, विशेषकर फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, तो इस तरीके से इनको उगाने से मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहता है और आगे आने वाली जो फसल बोते हैं उनमें भी हमको कम पोषक तत्व तो देने की जरूरत पड़ती है।
1: हमारे अन्नदाता हमारे देश की समृद्धि के विशेष सहायक है और कहा जाए तो सभी कुछ उनके कंधों पर ही निर्भर है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि जो हमारे अन्नदाता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो कुछ किसानों के मन में ये भी बात आएगी कि मुझे भी अगली बार जो है अपने खेत में दलहनी फसलें उगानी है, तो चलते चलते आप उनको क्या सलाह देंगे कि क्यों वो दलहनी फसलें उगाएं जिससे कि उनकी लागत भी कम हो लेकिन मुनाफा उनको अधिक से अधिक?
0: हाँ, देखिए, दलहनी फसलों का बहुत बड़ा महत्व है, यदि हमको मिट्टी के स्वास्थ्य रखना है और इसके साथ साथ हमारा उत्पादन भी बढ़ाना है, वातावरण भी ठीक रखना है और अपनी खाद्यान्न की पूर्ति भी करनी है, खाद्यान्न के साथ साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में हमारी प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें आती है, तो हमारी दाल वाली फसलें एक अच्छा स्रोत है और हमारे यहाँ इसकी बड़ी आपूर्ति भी है, डिमांड भी है, अर्थात जो है मैं ये कहना चाहूंगा किसान भाई दो दाल वाली फसलों को अपने फसल चक्र में जरूर अपनाएं और एक सीजन के अंदर जरूर उगाएं, और जिन्होंने इस समय उगाई है उनकी देखरेख करें, जाते रहें और सुपरविजन करते रहें, जहां जहां उनको जरूरत है खरपतवार निकालने की खरपतवार निकालें, और इसके साथ साथ यदि बारिश ज्यादा होगी है तो जल निकास का प्रबंधन रखें, और यदि पानी देने की जरूरत पड़ रही है तो वो ड्रिप इरीगेशन से या स्प्रिंकल इरीगेशन से पानी दें, फ्लड इरीगेशन से ना दें। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे भारत सरकार ने बहुत बड़ा पल्स मिशन चलाया हुआ है, हमको जो है करीब करीब 10 मिलियन टन अगले 5 साल में उत्पादन बढ़ाना है अपना, ताकि हम आत्मनिर्भर हो सकें पल्सिस के अंदर, क्योंकि हमारा अभी जो प्रोडक्शन है वो लगभग 25 मिलियन टन के आसपास है, तो इन सभी का किसान भाई पूरी तरीके से सदुपयोग करें और लाभ उठाएं विशेषकर पल्स मिशन का, ताकि हम पल्सिस के अंदर आत्मनिर्भर हो सकें, अपनी मिट्टी को और धरा को स्वस्थ रख सकें, अपने वातावरण को स्वस्थ रख सकें और एक अच्छा पैदावार लें और अच्छा मुनाफा कमाएं और अच्छा स्वस्थ रखें।
1: जी, क्योंकि अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम भी तो स्वस्थ हैं। दलहनी फसलों में समसामयिक कार्य एवं देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर साहब आपने विस्तृत जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और गौतम, हमारा जो भारतवर्ष है वार त्योहारों का देश है, और जब बात आती है सावन की तो जब सावन की फुहारे पड़ती हैं, बोछारे गिरती हैं, तो मन मयूर नाच उठता है, तो आपका मन मयूर भी नाच उठ रहा होगा, तो क्यों ना हम अपने श्रोताओं को सुनवा दें ये सावन गीत।
2: और

0: सावन की इस झड़ी को देखते हुए हम किसान भाइयों को कुछ सलाह भी तो देना चाहेंगे, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारे किसान जो है वो उन्नति करें, प्रगति करें, और वो तभी संभव है जब जैसा भी मौसम आए उसके अनुरूप वो कार्य करें।
1: बिल्कुल कमलेश जी, बहुत सही कहा आपने। अगर किसान भाई पहले से ही तैयारी करके रखेंगे और उनको पता होगा कि मौसम क्या होने वाला है, कब बरसात होने वाली है, कब जो है ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है, तो किसानों की जो है तैयारी उस हिसाब से रहती है।
0: और जब आपने सलाह की बात की है तो मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहूंगी कि जिन किसानों की टमाटर, हरी मिर्च, बैंगन व अगेती फूल गोभी की पौधे तैयार है, वे मौसम को मद्देनजर रखते हुए रोपाई मेंढों पर करें तथा जल निकास का उचित प्रबंध रखें।
1: जी बहुत सही कहा आपने कमलेश जी, और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा किसान भाइयों को कि किसान अगर वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं, और इस मौसम में किसान जो है स्वीट कॉर्न तथा बेबी कॉर्न की अगर बुआई करना चाह रहे हैं तो जल निकास उचित प्रबंध रखें, क्योंकि अगर जल जमा होता है तो किसान भाइयों आपको नुकसान हो सकता है।
0: और गौतम, ये जो समय चलता है ना, इस समय अगर हम भीग गए तब भी, और कई बार नहीं भीगे तब भी, कई बार तो ये लगेगा कि शरीर में जान ही खत्म हो गई है, तो जो हमारे पुराने नुस्खे होते हो तो यही कहते हैं कि भाई इस समय जो है ना वो आप ऐसा करो कि मौसमी का जूस पियो। लेकिन हमें लगता है कि मौसमी भी इतनी महंगे या बाकी फल भी इतनी महंगे, तो हम खाएं क्या और कैसे खाएं?
1: बिल्कुल बहुत सही कहा आपने, तो जिक्र कर ही दिया है आपने भाव का, तो जो हमें आजादपुर मंडी से प्राप्त भाव होते हैं मौसमी जो है वो 50 रुपए प्रति किलो है, और उसके बाद अगर हम लोग सेब की बात करें तो सेब जो है 200 रुपए प्रति किलो है, और पपाया की बात करें यानी कि पपीते की बात करें तो 30 रुपए किलो, और पाइन एप्पल की बात करें तो 50 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। और सब्जियों के जो भाव हमें प्राप्त हैं, आलू की भाव की बात करें तो 18 रुपए प्रति किलो, प्याज की बात करें तो 30 रुपए प्रति किलो, टमाटर की बात करें तो 40 रुपए प्रति किलो, और अगर पत्ता गोभी की बात करें तो 8 रुपए प्रति किलो,
0: और शिमला मिर्च जो रेट है वो है 60 रुपए प्रति किलो, और हरी मिर्च के बिना तो सब्जी में स्वाद ही नहीं आता, तो उसका जो रेट है वो है 40 रुपए प्रति किलो। तो ये थोड़ी सी जो जानकारी थी वो हमने साझा की, जो हमने प्राप्त की थी आजादपुर सब्जी मंडी के भाव। और गौतम, तो आज का सफर किसान वाणी का यहीं तक।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों बहनों को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी, जो कि था प्रायोजित कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं गजलों का कार्यक्रम, जिसमें आज हम सुनेंगे जगजीत सिंह जी के स्वरों में गजलें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दो।
2: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कनकलता। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित 3 विधेयक सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से देश में 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली में इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के 8वीं विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल सुबह 11 बजे पुराना सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होगा।
7: कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की 2 रिपोर्ट और दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग से संबंधित 1 अधिसूचना सदन के पटल पर रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त समयबद्ध सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड से संबंधित 3 विधेयक भी 8वें विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तुत किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने सभी सदस्यों से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने और 3 दिवसीय सत्र को सार्थक और उत्पादक बनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
6: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। आज नई दिल्ली में आयोजित भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है।
8: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल।

0: लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
1: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
2: श्री जोशी ने गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के बारे में कहा कि देश वर्ष 2030 तक 500 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के सतत ऊर्जा भविष्य के लिए तकनीकी रोडमैप, भारत के ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकल्प 2030-2047 को जारी किया गया। श्री जोशी ने अत्याधुनिक स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी ने इस अवसर पर कहा कि वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके अंतर्गत देश के प्रचुर कृषि अवशेष, पशु गोबर, गन्ना अपशिष्ट, नगरपालिका जैविक अपशिष्ट और अन्य जैव संसाधनों को स्वच्छ ईंधन और जैविक खाद में परिवर्तित कर ग्रामीण आय और राष्ट्रीय आर्थिक मूल्य में वृद्धि का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
2: नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। श्री नायडू ने कहा कि SAF एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित विमानन ईंधन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की मान्यता प्राप्त है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.uv.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पीतमपुरा स्थित सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टेम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
4: इस लैब के माध्यम से स्कूली छात्रों को प्रयोगात्मक शिक्षा, रचनात्मक सोच और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सभी आधुनिक तकनीक और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का हर विद्यार्थी अपने सपनों को साकार करे, यही दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने बल देते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों में विश्व स्तरीय शिक्षण सुविधाओं का विस्तार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, जिससे प्रत्येक छात्र भविष्य की वैश्विक चुनौतियों और अवसरों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सके। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह इनोवेशन लैब सार्वजनिक निजी भागीदारी जन भागीदारी की उस शक्ति का उदाहरण है जो सरकारी विद्यालयों में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नए आयाम स्थापित कर रही है। नितिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
2: दिल्ली शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज सचिवालय में बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। श्री सूद ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान शहर में बिजली की तैयारियों का जायजा लिया गया और बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में दिल्ली के हर निवासी के लिए बिना रुकावट, भरोसेमंद और कुशल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कला तथा संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज आगामी पंजाबी साहित्य और सांस्कृतिक महोत्सव के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की। श्री सिरसा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस आयोजन के माध्यम से पंजाबी भाषा, साहित्य, संगीत और समृद्ध विरासत को और बड़े स्तर पर लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी भी संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर सके। श्री सिरसा ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि दिल्ली में हर भाषा, संस्कृति और परंपरा को पूरा सम्मान मिले। दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खेरवार ने आज नजफगढ़ जोन के अंतर्गत द्वारका विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्वच्छता और विकास कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री खेरवार ने अधिकारियों को नियमित रूप से कूड़े को हटाने और उच्च स्तर की साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। वस्त्र मंत्रालय कल राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने के लिए एक राष्ट्रीय समारोह का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे।
5: वस्त्र मंत्रालय ने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत का जश्न मनाना और राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता देना है। मंत्रालय के अनुसार समारोह का प्रमुख आकर्षण संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों का वितरण होगा। इस अवसर पर 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। समारोह के दौरान अर्थ रूट थ्रेड, ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इसके साथ ही पुरस्कार विजेता हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने रोजगार धोखाधड़ी मामले का पर्दाफाश कर राजस्थान के जोधपुर से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह मामला टेलीग्राम आधारित पार्ट टाइम रोजगार और निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन और 1 सिम कार्ड बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने रोजगार धोखाधड़ी के नाम पर लोगों से लगभग 3 लाख की ठगी की। इस मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की 7वीं पुण्यतिथि पर वसंत उद्यान में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने बताया कि सुषमा स्वराज का स्नेह, आत्मीयता और प्रत्येक कार्यकर्ता पर उनका अटूट विश्वास आज भी सभी की स्मृतियों में जीवित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से शिवाजी स्टेडियम तक यात्रा की। इस दौरान श्री यादव ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम की बेहतरीन सेवाओं की सराहना की और स्वच्छ सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रीवा सोलर प्लांट के साथ इसके जुड़ाव की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जुड़ाव टिकाऊ शहरी परिवहन के लिए प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि राजधानी में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का सफल आयोजन हुआ, जिसमें देश के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा पदक और पुरस्कार जीते। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों को मौके, सुविधाएं और साथ मिले तो वे काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस 1.5 साल के कार्यकाल में सरकार ने दिल्ली में शिक्षा को बेहतर बनाने और सरकारी स्कूलों में अच्छी सुविधाएं देने के लिए काम किया है।
6: हमारा देश जो एक युवाओं का देश है, यहाँ के बच्चों को अगर मौका मिले, सुविधाएं मिले, प्लेटफॉर्म मिले तो वो बड़े से बड़े मुकाम पे पहुंचने की ताकत रखते हैं। और मैं विश्वास दिलाती हूँ अपने सभी इन स्टूडेंट्स को, 1000 स्कूल जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत चलते हैं, इस 1.5 ईयर ऑफ अवर टेन्योर हमने ये कोशिश की है कि दिल्ली में एजुकेशन को एक अलग जगह लेके जाया जाए, जहां पर हमारे इन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को हम बेहतर सुविधाएं दे सके।
2: दिल्ली में इस वर्ष 4 अगस्त तक 137 दिन स्वच्छ वायु वाले दर्ज किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए विभिन्न उपाय लगातार किए जा रहे हैं। सरकार के अनुसार 2,243 मीट्रिक टन निर्माण और अपशिष्ट का वैज्ञानिक तरीके से संग्रह और निपटान किया गया है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए हैं। सरकार ने बताया कि 81 सड़क सफाई वाहनों ने 2,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों की सफाई की है और 169 मीट्रिक टन सड़क की धूल हटाई।

0: प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज बारिश हुई। आज का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया है कि कल बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा का 3 दिवसीय मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से 50 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा के सरकारी सर्वोदय विद्यालय में स्टीम इनोवेशन लैब का शुभारंभ किया। दिल्ली सरकार ने कहा, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए इस वर्ष 11,700 से अधिक चालान जारी किए गए। और दिल्ली पुलिस ने रोजगार और निवेश धोखाधड़ी मामले में राजस्थान से 2 साइबर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। शाम की ठंडी हवाएं, ढलता हुआ सूरज और दिल में किसी की मीठी मीठी सी याद, ऐसे ही खूबसूरत एहसासों को और भी खास बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं प्यार से सजे और दिल को छू लेने वाले सदाबहार रोमांटिक गीत। मोहब्बत की शाम हो और गीतों का साथ हो, हर धड़कन में बस प्यार की ही बात हो, तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत सा प्यारा सा गीत।

तो ये गीत हमने लिया था फिल्म ब्लैकमेल से। शाम ढली तो यादों ने फिर दस्तक दी, हवा ने भी प्यार की खुशबू बिखेर दी। संगीत के इन सरों में खो जाइए, दिल की हर धड़कन को मुस्कुराने दीजिए।

0: परिक्रमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: चांद भी ज्यादा ही हसीन लगता है जब किसी अपने का ख्याल दिल में रहता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो हर गीत अपना सा लगता है।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, और आवाज थी लता मंगेशकर और कुमार सानू जी की।

जदो मोहब्बत की किताब का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जिसमें सिर्फ एहसास हो, ना शिकवा ना कोई शिकायत, बस एक दूसरे के मुस्कान का जिक्र हो, खुशी का जिक्र हो, है ना।

0: जारी।
1: श्रोताओ मैं बता दूं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर और मैं हूं आपकी दोस्त रचना अग्निहोत्री। और यदि किसी प्रकार की प्रतिक्रियाएं आप

कार्यक्रम के बारे में भेजना चाहते हैं तो वो सादर आमंत्रित हैं। हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com। एक बार पुनः बता दूं, iprradiodelhi@gmail.com। इस पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। श्रोताओं, मुस्कुराने की कोई वजह बन जाए, जिंदगी का सबसे हसीन सफर बन जाए। दुआ है हर दिल को ऐसा हम सफर मिले जो हर शाम को मोहब्बत का असर बन जाए।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म पापा कहते हैं फिल्म से, और आवाज थी कुमार सानू और अलका याग्निक जी की। दोस्तों, कुछ रिश्ते आवाज नहीं देते, बस दिल की धड़कनों में बस जाते हैं, और कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हर बार सुनकर उसी पहली मोहब्बत का एहसास दिला जाते हैं।

शो तो ये गीत हमने लिया था फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से और आवाज थी कविता कृष्णमूर्ति जी की। इश्क की राहों में मौसम बदल जाते हैं, कुछ चेहरे उम्र भर दिल में बस जाते हैं। जो प्यार सच्चा हो उसे अल्फाज नहीं चाहिए, बस एक मुस्कुराहट, और सालों गुजर जाते हैं।

श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म दस्तक से। आवाज थी उदित नारायण जी की। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये रोमानी शाम आपके दिल को छू गई होगी और इन गीतों ने आपकी यादों को फिर से महका दिया होगा। इसी के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम को समेटने की। सुरों का ये कारवां यूं ही चलता रहे, हर शाम प्यार के गीतों से महकती रहे। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, फिर होगी मुलाकात एक नई गीत मालिका के साथ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं समाचार संध्या।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ। और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
3: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को एड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
2: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि परियोजना से यात्रा समय घटकर आधा हो जाएगा।
3: आज का दूसरा बड़ा फैसला है, असम में एक हाईवे बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, यह है बहारा चारियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेकर तेजपुर तक। यह 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीज का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। आगे जाके ब्रह्मपुत्र टनल को भी ये जोड़ेगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर

0: सिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है।
1: आर्टिकल 370 गेटिंग अब्रोगेटेड।
2: अनुच्छेद 370 का निरसन इस बात को सिद्ध करता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसमें वे क्षेत्र भी शामिल हैं जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पूरा सहयोग और संरक्षण मिले, क्योंकि हम सभी एक ही देश का हिस्सा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही में कई बार व्यवधान आया।
3: लोकसभा की कार्यवाही 2 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सका, जबकि राज्यसभा में इन्हें कुछ समय के लिए ही संचालित किया जा सका। हंगामे के बीच लोकसभा ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। इस विधेयक में संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 तथा वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन का प्रावधान है। उधर राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पारित कर लोकसभा को लौटा दिया। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग की थी। यह राशि मुख्य रूप से ऋण के पुनर्भुगतान पर खर्च की जाएगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श किया। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। यह सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग हैं और इन्हें एक नहीं समझना चाहिए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ 50 लाख से अधिक परिवारों को मिल चुका है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही।
4: 19 लाख हाउसहोल्ड्स आर रिसीविंग जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल।
5: 19 लाख परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। 12 लाख से अधिक परिवारों ने अतिरिक्त बिजली बेचकर 421 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने से महज 9 महीनों में लगभग 3.25 गुना की वृद्धि हुई है।
4: मोर देन 3.2 टाइम्स इन जस्ट 9 मंथ्स।
0: ब्रिक्स उद्योग और व्यापार मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक आज जयपुर में शुरू हुई। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वैश्विक व्यापार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, डिजिटल सेवाओं और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस बैठक में शामिल हो रहे हैं।
6: ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जिसमें 9 देश मिलकर दुनिया के सामने जो

0: चुनौतियां हैं जो हम सब अपने अपने देशों के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से अच्छी नीतियों के साथ विश्व भर में प्रगति हो सके उसकी चिंता करते हैं।
1: दो दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार आज मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री चंचल कुमार ने आज कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार का उद्देश्य वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए एक ऐसा मंच बनाना है जहां परियोजनाओं, भागीदारी तथा को प्रोडक्शन के नए मार्ग उजागर हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, एआई मंत्री एडवोकेट आशीष शेलार ने कहा कि ब्रिक्स वेव बाजार वैश्विक क्रिएटिव इकोनॉमी के भविष्य को आकार देने के लिए प्रभावी साबित होगा। ईशाराणी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। झारखंड और केरलम में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गईं।
3: छात्रों का आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सरकार की ओर से गतिरोध समाप्त करने की गंभीर कवायद शुरू की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 4 मंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके जवाब में छात्रों की तरफ से वार्ता के लिए 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की घोषणा की गई है, जो सीधे सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी बातें रखेंगे। इस मुद्दे पर विपक्ष ने आज झारखंड विधानसभा के भीतर और बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए के विधायकों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महवेश रहमान।
1: उधर केरलम के तिरुवनंतपुरम में भाजपा युवा मोर्चा ने सचिवालय तक एक विशाल विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों ने लोक सेवा आयोग की मेरिट सूची में शामिल होने के बावजूद पिछले 2 वर्ष से नियुक्ति पत्र न पाने वाले उम्मीदवारों के लिए न्याय की मांग की। बम्बे उच्च न्यायालय की गोवा बेंच ने आज तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को 2013 में अपने कनिष्ठ सहकर्मी के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल की कड़ी सजा सुनाई। न्यायालय ने तेजपाल पर 10 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भी लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। सरकार ने आज बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मेजबान सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि अभियान ने 5 सफल वर्ष पूरे कर लिए हैं और यह एक जन आंदोलन में बदल गया है। यह राष्ट्रीय एकता और गौरव की भावना को दर्शाता है। हर घर तिरंगा अभियान इस महीने की 9 से 17 तारीख तक चलाया जाएगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 374 अंक बढ़कर 78,955 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ। और अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 95.22 रूपये पर बंद हुआ।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई से मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। पिछले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जबरन गायब किए जाने, अत्यधिक बल प्रयोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक और कब्जे वाले क्षेत्र में जवाबदेही की कमी पर बार बार चिंता व्यक्त की है। 27 जुलाई को पीओजेके में तथाकथित विधायी चुनावों के पहले दिन रावलकोट में हिंसक झड़प हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णामूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। प्री क्वार्टर फाइनल में तन्वी ने श्रेयांशी बलिशेट्टी को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ ऊर्जा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी दी। असम में गुवाहाटी और तेजपुर के बीच 4 लेन की राजमार्ग परियोजना को भी स्वीकृति। लोकसभा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कर राहत उपायों से संबंधित विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मध्यम दूरी की अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा में सफल परीक्षण। केंद्र ने विमानन टर्बाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने के दावों को खारिज किया। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Union Cabinet approves Gobardhan scheme to boost clean energy and rural economy. Also gives nod to 4-lane highway project between Guwahati and Tezpur to enhance connectivity in Assam. Lok Sabha clears legislation providing tax relief measures to support economy and boost foreign investment. Prime Minister Narendra Modi and his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu reaffirm commitment to deepen bilateral ties. India successfully test fires medium-range Agni-4 ballistic missile in Odisha. Centre rejects claims of ethanol blending in aviation turbine fuel. Student protests over recruitment exam issues intensify in Jharkhand and Kerala. And in badminton, Tanvi Sharma, Ashmita Chaliha and Rakshita Ramraj enter women's singles quarterfinals at Korea Masters. And now the news in detail. The Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix.
6: भारत की जो नेचुरल गैस का कंजम्पशन है,
7: इंडिया करंटली इम्पोर्ट्स नियरली 50% ऑफ इट्स नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट्स एंड द गवर्नमेंट इज टेकिंग कंटिन्यूअस स्टेप्स टू रिड्यूस दिस डिपेंडेंस। अंडर द स्कीम द प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस इज टारगेटेड टू इंक्रीज 10-fold ओवर द नेक्स्ट डेकेड। फ्रॉम एन एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव द इनिशिएटिव इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बाय अप्रोक्सीमेटली 40 मिलियन टन्स। इकोनॉमिकली इट इज प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट अराउंड 75,000 करोड़ रुपीज टू द नेशनल GDP एंड जनरेट नियरली 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कंट्री।
6: अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
5: Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam.
7: Today's second major decision is related to an important highway project in Assam. It is the Baihata-Chariali-Tezpur 4-lane highway, stretching from Baihata-Chariali, located just outside Guwahati, to Tezpur. The highway will be 135 kilometers long with an investment of approximately 8,970 crore rupees. It will also be connected to the Brahmaputra tunnel in the future.
5: On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. The Parliament has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026, with the Rajya Sabha returning the legislation to the Lok Sabha after a discussion. The Lok Sabha had already passed the bill when the House assembled at 2:45 p.m. after the second adjournment Finance Minister Nirmala Sitharaman moved the bill.

12:30 पर सुर्खियों में प्रोग्राम सुनिएगा, 12:45 पर बरमे मौसीकी प्रोग्राम के तहत सुनिएगा इश्तियाक हुसैन खां का गाया ख्याल राग छाया में, शाम 12 बजे आलमी खबरें सुनिएगा।

अंध्या राय ने ऐवान की कार्रवाई दिनभर के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया और कहा कि लोकसभा की कार्रवाई कल दिन में 11 बजे दोबारा शुरू होगी। इससे पहले दिन में 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम हमलों के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश किया। ओम बिरला ने कहा कि आज जापान पर अफसोसनाक एटमी हमलों को 81 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने आज भारत इसराइल खसूसी जामे शराकतदारी में पायदार पेशरफ्त का जायजा लिया और दोनों मुल्कों के बाहिमी मफादात के लिए मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी ताउन को मजीद मुस्तहकम करने के अपने अहद का इरादा किया। जनाब नेतन्याहू ने आज जनाब मोदी को टेलीफोन कॉल की थी। दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया में मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। आज भारत ने ओडिशा में चांदीपुर के मरबूत आजमाइशी रेंज से दरमियानी दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 की कामयाब आजमाइश की। वजारत दिफा ने कहा कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम ऑपरेशन जाति और टेक्निकल पैरामीटर्स मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। यह आजमाइश जामे फोर्सेस कमान के तहत की गई। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने उन खबरों की सख्ती से तर्दीद की है जिनमें दावा किया जा रहा है कि हुकूमत हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल मिलाने का मंसूबा बना रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तजवीज नहीं है। वजीर मौसूफ ने वाजे किया कि एथेनॉल और हवाई जहाज का पायदार ईंधन SAF दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, लिहाजा इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि SAF बैन अल-अक़वामी सतह पर एक तस्दीक शुदा हवाई जहाज का ईंधन है जिसे बैन अल-अक़वामी शहरी हवाबाजी तंजीम ICAO तस्लीम करती है और दुनिया भर में इसे इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन सख्त जांच के लिए के मराहल से गुजरता है और आलमी हिफाजती मेयारात पर खरा उतरता है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुसाफिरों की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और हवाबाजी की हिफाजत से मुतालिक गलत मालूमात फैलाने से सिर्फ फजाई मुसाफिरों में गैर जरूरी तशवीश पैदा होती है। झारखंड में JPSC और JSSC इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतियों के मामले पर मानसून इजलास के पहले दिन असेंबली के अंदर और बाहर सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। केरलम में युवा मोर्चा की क्यादत में तिरुवनंतपुरम में वाकई रियासती सेक्रेटरीट की जानिब से एक बड़ा एहतजाजी मार्च निकाला गया। एहतजाज करने वाले अफराद का मुतालबा था कि उन उम्मीदवारों को इंसाफ दिलाया जाए जिन्हें गुज़िश्ता 2 बरस में PSC की रैंक लिस्ट में शामिल होने के बावजूद तकर्री के अहकाम जारी नहीं किए। कारकुनों ने हुकूमत की इस पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज किया कि रैंक लिस्ट मौजूद होने के बावजूद खास तौर पर तदरीसी ओहदों पर तकर्रियां मुसलसल मुअक्खर की जा रही हैं। मार्च उस वक्त पुरतशद्दुद सूरत अख्तियार कर गया जब मुजाहिरीन ने सेक्रेटरीट की इमारत की तरफ बढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने बैरिकेडर्स लगाकर उन्हें रोक दिया। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज आसन में कोरिया मास्टर्स के खवातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में श्रेयांशी वलीशेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से शिकस्त देकर शानदार खेल का मुजाहरा किया। अश्मिता ने कोरिया की किम मिन जी को 21-17, 21-16 जबकि रक्षिता ने जापान की मनामी शिजू को 22-20, 21-10 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने माहौलियात के लिए साजगार और देही मईशत को फरोग देने के लिए गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। काबीना ने आसाम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की गर्ज से गुवाहाटी और तेजपुर के दरमियान 4 लेन के हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाहिमी ताउन को और गहरा करने के अहद का इरादा किया है। भारत ने ओडिशा में दरमियानी दूरी तक वार करने वाले अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। मरकज ने हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल की

0: साजिश के दावों को मुस्तरद कर दिया है। झारखंड और केरलम में भर्ती के इम्तिहान के मामलात पर तालिबे इल्मों का एहतजाज बढ़ गया है। और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स के खवातीन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और समय न बोंगी आपसे कुछ बातें सेहत के हवाले से। प्रोग्राम हेल्थ टिप्स में इस वक्त भी बहुत से हमारे सामयीन हमारा ट्रांसमिशन मोबाइल पर सुन रहे होंगे। कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल होगा तो कुछ लोगों के बिल्कुल पास रखा होगा। एक पल के लिए भी हम अपने मोबाइल को आंखों से ओझल नहीं होने देते। हम अपने मोबाइल को आंखों से ओझल होने नहीं देते क्योंकि आज के जदीद दौर में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। और ऐसा लगता है कि क्या मोबाइल के बगैर भी जिंदगी हो सकती है? शायद नहीं। कारोबार, बैंकिंग, खरीदारी, तफरी, अपने अजीजों से जुड़े रहना, यह सब मुमकिन हुआ है मोबाइल के जरिए। हालांकि ऐसा पहले भी होता था लेकिन मोबाइल ने घंटों का काम मिनटों में कर दिखाया है। अगरचे मोबाइल के बेशुमार फायदे हैं लेकिन इसका गैर जरूरी इस्तेमाल सेहत से जुड़े मसाइल पैदा कर रहा है। आज हेल्थ टिप्स में हम इसी हवाले से बात करेंगे। मोबाइल दे रहा है कंधे और गर्दन का दर्द। मोबाइल या टैबलेट पर लगातार इस्तेमाल करते रहने और गलत पोस्चर में इस पर काम करते रहने से टेक नेक का खतरा बढ़ रहा है। क्या है टेक नेक, ये भी हम आपको बताएंगे। समय अक्सर क्या होता है कि हम लैपटॉप को कभी अपनी गोद में रख लेते हैं, कभी बिस्तर पर लेटकर उस पर काम करते हैं, तरह तरह से बैठकर उस पर काम करते हैं, मतलब उसको रखते हैं अपने सामने, कभी साइड में रख लेते हैं जब हम घर से कोई काम कर रहे होते हैं। हालांकि ये काम से आदत है लेकिन इससे न सिर्फ गर्दन में दर्द बल्कि रीढ़ की हड्डी के ढांचे में भी बदलाव आ सकता है और आगे चलकर वही सर्वाइकल डिस्क की भी वजह बन सकता है। टेकनेक यानी गलत पोस्चर में फोन चलाने की आदत या घंटों सर झुकाकर टैबलेट या लैपटॉप पर काम करने की मजबूरी टेकनेक यानी गर्दन में खिंचाव और दर्द की परेशानी दे सकती है। गर्दन में दर्द वर्किंग लोगों में नहीं बल्कि आम लोगों में भी बढ़ रहा है। आपके कान या कंधे एक सीध में होते हैं, इसे एक इंच भी इधर उधर करने से गर्दन पर वजन पड़ता है और इसी वजह से गर्दन ही नहीं बल्कि कंधे, कलाई के साथ साथ आंखों में भी तकलीफ पड़ जाती है। सोचिए तो ये बहुत मामूली सी बात है, कुछ बातों का ख्याल रखें और इस परेशानी से छुटकारा पाएं। क्या है वो बातें बताएंगे आपको एक छोटे से वक्फे के बाद।

0: अगली गर्दन झुकती है तो 22 किलोग्राम का दबाव गर्दन की मसल्स पर पड़ सकता है। यही वजह है कि रीढ़ की हड्डी का ढांचा तेजी से बिगड़ रहा है और गर्दन और कंधे के दर्द में भी इजाफा हो रहा है। टेक्नेक की अलामतें क्या हैं? जी हाँ, टेक्नेक की अलामतें हैं गर्दन में दर्द या अकड़न, कंधे में जकड़न, ऊपरी पेट में दर्द, सिर के निचले हिस्से में दर्द, हाथों या बाजुओं में झंझनाहट वगैरह। कुछ एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जैसे गर्दन को दबाएं, दाएं बाएं नीचे घुमाएं, कंधों को ऊपर नीचे करें, स्ट्रेच करें, गर्दन को पीछे की तरफ हल्का खींचें। और सामने इस सब के अलावा आप डॉक्टर को भी दिखाएं। डॉक्टर के मशवरे के बिना आप ना तो कोई मेडिसिन लें और ना ही कोई एक्सरसाइज करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। किसी दिन और कुछ हेल्थ टिप के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और लीजिए समय, अब सुनिए प्रोग्राम मार्केट मंत्र।
1: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, Market Mantra ke taza ank mein aapka swagat hai. Hamesha ki tarah hum hazir hain karobari khabron ko lekar aur hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain aarthik mamlon ke varishth visheshagya Prakash Chawla. Prakash ji namaskar, karyakram mein aapka swagat hai.
2: Namaskar.
1: Aaiye shuruaat karte hain angrezi mein headlines se.
0: Benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes a taxation and other laws amendment bill 2026 and global crude oil prices rise.
1: Parilu share bazaar mein pramukh soochkank laabh ke saath band hue. Sensex 350 ank se adhik uchla. Nifty 24,636 darj hua. Lok Sabha ne karadhan aur अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: एंड बिफोर वी टेक आवर मेन स्टोरीज इन डिटेल हियर इज आवर डिस्क्लेमर. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब घरेलू शेयर बाजार. लगातार दूसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में आज खरीदारी का सिलसिला जारी रहा और प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 374 अंक यानी लगभग 0.5% बढ़त के साथ 78,955 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 11 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 24,636 दर्ज हुआ. विस्तृत बाजार की ओर चलें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 इंडेक्स 0.4% से अधिक नुकसान में रहा जबकि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स में लगभग आधे प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.
0: Benchmark domestic equity indices ended in the positive zone for the second straight session today. Sensex gained 374 points or nearly 0.5% to close at 78,955. Nifty rose marginally by 11 points to settle at 24,636. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index dipped over 0.4%, while the small-cap 100 index added nearly 0.5%. After opening higher, Sensex maintained a positive momentum throughout the session. Meanwhile, Nifty traded in a narrow range, recovering from the slight dips witnessed during the intraday trade.
1: नजर डालें सेंसेक्स पैक पर तो 30 में से 16 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे. नुकसान उठाने वाली कंपनियों में सबसे प्रमुख रही पावर ग्रिड कॉरपोरेशन जिसे 4% का घाटा हुआ. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर 2% से अधिक नीचे आकर बंद हुए. इंडिगो को लगभग 1.5%

0: services shed 1.1% and utilities lost over 1%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,161 companies declined, 2,117 companies advanced and 215 companies remained unchanged.
1: नजर डालें रुपए की स्थिति पर तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 10 पैसे कमजोर हुआ 95.22 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। प्रकाश जी बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। लगातार दूसरे सत्र में आज तेजी देखने को मिली है बाजार में, क्या प्रमुख कारण रहे?
2: देखिए मनोज जी, ये ना एक तरह का मार्केट में सीमित दायरे में काम हो रहा है
1: जी,
2: कई दिनों से ये काम हो रहा है और आज भी जो है वो मार्केट ग्रीन में बंद हुई है। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया कि जो मार्केट की जो डेप्थ है या मार्केट की जो डेप्थ बोलते हैं या ब्रेड्थ बोलते हैं
1: जी,
2: वो नेगेटिव में रही, आप लोग अपने रीड आउट में बोल रहे हैं
1: जी।
2: तो ये मार्केट में एक सीमित धारा हो रहा है, इसमें शफलिंग होती है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, कई प्रॉफिट बुकिंग भी होती है और मार्केट ये सीमित धारा हमारी भारतीय मार्केट में काफी काफी दिनों से चल रहा है और ये ऐसे ही रहने वाला है
1: जी। जी जी,
2: इसके कई कारण हैं हम आपको बता सकते हैं लेकिन फिलहाल ये सीमित धारा, ज्यादा लंबा चौड़ा इसमें कोई गिरावट भी कोई एक सीमित धारा है। निफ्टी में अगर देखें तो 23,800 से लेके 24,500-26,000 तक जैसे अब कुछ है, ये इसी 800,000 के पॉइंट में रहता है
1: जी।
2: तो ये सीमित धारा है, उसके कई कारण है और कुछ हद तक ये राहत मिल रही है कि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस था काफी हद तक उसको वो निदान की तरफ जा रहा है।
0: प्रकाश चावला जी, वी ऑल्सो सॉ दैट द पीएसयू बैंक्स एडवांस्ड बाय 2%। हाउ इज दैट लिंक्ड to what the RBI Monetary Policy Committee's decision about leaving repo rates unchanged at 5.25%, bearing in mind that there are inflation headwinds coming our way, especially what's happening in West Asia, as you mentioned now. PSU banks, their first quarter results, do you think that's a fundamental reason why this index actually went up? Is there any linkage to what the central bank actually made the announcement about?
2: Well, today's movement in PSU banks or banks for that matter, I don't think it has much to do with the policy which was unveiled yesterday. The policy, as you said, retained the benchmark interest rates at I think 5.25%, what is called repo rate. Now, RBI governor himself raised this concern that the inflationary headwinds are there, still there, because of global uncertainties and also because of some deficit that could be there in the monsoon rains. So those concerns are there. Today's movement, I don't think it could be a shuffling, reshuffling of the portfolio. Some profit booking might be there. But I don't think it has got much to do with the policy, so to speak.
1: आपने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की चर्चा की, एक खबर है एफसीएनआर से जुड़ी हुई, साथ ही रुपए से जुड़ी हुई, पहले श्रोताओं को हम उसकी जानकारी देना चाहेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि एफसीएनआरबी योजना के अंतर्गत विदेशी मुद्रा की ताजा आवक में उत्साहजनक वृद्धि हुई है, इससे घरेलू अर्थतंत्र में तरलता बनाए रखने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि इस योजना को समय से पहले बंद किए जाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। रुपए की मजबूती से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में रुपया मजबूत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि रुपए की स्थिति का निर्धारण बाजार की स्थितियों के अनुसार होता है और केंद्रीय बैंक अपनी ओर से इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता है।
3: The conflict de-escalates, it is quite possible that the rupee may strengthen. 1 month or so it has strengthened from 97 levels now to. And our policy has always been that the markets determine prices, level and the band. We don't pursue, we only target, we only intervene in case there is an excessive volatility, there are speculative pressures that are getting built in. And it will be our endeavor that trajectory for rupee remains orderly and there is no disruptive movement or there is no expectation, self-fulfilling expectation.

0: Sustainable aviation fuel, SAF, are entirely different and should not be conflated. Mr. Naidu said that SAF is an internationally certified aviation fuel recognized by the International Civil Aviation Organization and adopted globally, which undergoes rigorous testing and meets stringent global safety standards. In more news, Union Cabinet today approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees. Briefing the media in New Delhi this afternoon, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said this will create 1.5 lakh jobs. Gobardhan marks a defining moment in India's clean energy journey.
1: सरकार ने ऑनलाइन प्रकाशित हो रहे एक फर्जी ज्ञापन का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यह ज्ञापन सर्वोच्च न्यायालय और वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। फर्जी ज्ञापन में कथित तौर पर जांच के दायरे में आए व्यक्तियों को वित्तीय सत्यापन और संपत्ति निरीक्षण के लिए अपने निजी बैंक खाते में धनराशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि यह ज्ञापन फर्जी है और इसका सर्वोच्च न्यायालय या वित्त मंत्रालय से कोई संबंध नहीं है। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि वे कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित सरकारी विभाग या प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऐसे ज्ञापनों की प्रामाणिकता की पुष्टि करें। यहां पर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, देश में फर्जीवाड़े, डीप फेक और कहने इस तरह के जो विभिन्न तरह के असली दिखने वाले विज्ञापन कहने, ज्ञापन कहने, खबरें कहने प्रसारित होते हैं और उसमें आम लोग फंस रहे हैं, उससे निपटने का क्या उचित उपाय हो सकता है और किस तरह उससे बच सकते हैं लोग?
2: साइबर सिक्योरिटी जो है नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर हम डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं
1: जी,
2: अपना सारा फाइनेंशियल सेक्टर है, हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम है और हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी में आरबीआई के साथ मिलकर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री, हमारी जो सुरक्षा एजेंसीज होती हैं इनके, अभी मैंने मालूम किया कि काफी जगह पे साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, तो जो साइबर पुलिस स्टेशन बने हुए उनको और इक्विप करना पड़ेगा। जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको आप मॉडर्न तरीके से आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये जो साइबर जो थीम्स होते हैं वो आप हैकर्स, मतलब वो दे आर हेड ऑफ यू, तो इतना ज्यादा होते हैं, तो इसलिए तो ये तो एक तरह का, अगर आपने सुरक्षा तो चाहिए ना, फाइनेंस में अगर आना है या किसी भी गवर्नेंस फील्ड में, तो नागरिकों की सुरक्षा, हम लोग भोले वाले लोग हैं हमारे देश में, तो उनको आप इस तरह साइबर ठगी के अगर शिकार बन जाए तो अच्छी बात नहीं।
0: Moving on to the crude oil market now. Global crude oil prices rose today amid market caution over whether talks between Iran and Oman will restore flows through the Strait of Hormuz, while reports of attacks on Saudi tankers in the Red Sea and the Gulf of Aden renewed supply tensions. Brent crude was trading 1% up at $80.23 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading over 0.8% higher at $75.86 per barrel when reports last came in. What is this deal about between Iran and Oman? It is seen as a temporary deal where there'll be no fees or toll that is to be charged. And how is this being linked to the deal between Iran and the U.S. Vis-a-vis the MOU?
2: Well, it's a part of the entire Iran-U.S. deal. It's an important component because at the center right now, at the center of the U.S.-Iran deal is the reopening and restoring the traffic, ship liners traffic to normal, to normalcy. And on the one side of the strait is the Iran, other side is Oman. So Oman is an important stakeholder. So in Oman, that's how the administration, they are trying to see what kind of mechanism can be worked out so that this peace deal is really worked out.
1: आइए श्रोताओं आपको लिए चले कार्यक्रम के अंतिम चरण में सराफा बाजार। भारतीय सराफा बाजार में आज सोने और चांदी के रुख में थोड़ा सा अलग अलग रुख देखा जा रहा था। एक ओर जहां 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% बढ़त के साथ 1,49,340 रूपये प्रति 10 ग्राम पर था, वहीं चांदी 0.6% कमजोर होकर 2,27,000

0: लेकर 30 रूपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से प्रकाश जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
1: शुक्रिया।
2: And before we close the reminder of the headlines, benchmark domestic stock market indices end on a positive note. Sensex gains over 350 points. Nifty settles at 24,636. Lok Sabha passes the taxation and other laws amendment bill 2026. And global crude oil prices rise. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

पुष्पेंद्र कुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी डूडी। बांद्रा अरमाकोट मुंबई से बेगम सोनम शेख, मारिया आयत शेख और मोहम्मद अरीफ शेख। शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी की ये फरमाइशी मेल हम तक पहुंचा है मटककली जिला बरेली से। शासी नगर बीच शहर से किसन सबकाल, आशा सबकाल और साईराज विशाल सबकाल। इस नगमे को सुनना चाहा है कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। बंगाली पंजा नागपुर से प्रभात भारती प्रकाश रंबाडे, जानवी रंबाडे और वैष्णवी हर्षल रंबाडे। कांडला बंदर कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जगदीश का ये फरमाइशी मेला में मिला है। इसी नगमे को सुनना चाहा है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और मीनाक्षी तिवारी ने। बुलाई छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और डिंपल देवांगन। हिमा साबरी, आयजल इमाम और मोहम्मद हसन निजाम, गिडी झारखंड से इनका फरमाइशी मेला में मौसूल हुआ है। तख्तपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। इसी नगमे को सुनना चाहा है दादा बाबू रोड गिडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज और हसन नवाज ने। गुरु नानक नगर मलौट पंजाब से राजीव सोतिया, रजनी सोतिया और आरती तनिष सोतिया ने। अगर

0: आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ब्रिक्स 2026 वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: उभरते देशों के समूह ब्रिक्स का गठन 20 वर्ष पहले हुआ था और 2026 में भारत ने इसकी अध्यक्षता संभाली, जिसके तहत अब तक लगभग 115 बैठकें अलग अलग स्तर की अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं की हो चुकी हैं, मंत्रियों की और भी लेवल्स पर मीटिंग्स हुई हैं और जो पूरा क्लाइमेक्स हो रहा है वो सितंबर में जब हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग होगी। सो क्या है ये ब्रिक्स की ग्रुपिंग का महत्व और किस कहां से ये लाभान्वित कर सकता है जो 11 सदस्य देश हैं और 10 पार्टनर देश हैं और क्या है इसकी थीम, किस तरह से आपसी सहयोग सभी देशों के लिए एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है, इस सब पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ जुड़ी है इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट प्रोफेसर अंशु जोशी। प्रोफेसर जोशी आपका बहुत बहुत स्वागत सुर्खियों में कार्यक्रम में।
2: सोनू जी नमस्कार, इतने महत्वपूर्ण चर्चा का भाग मुझे बनाने के लिए आपका हृदय से आभार। सभी श्रोताओं को नमस्कार।
1: प्रोफेसर जोशी जैसा आपने अभिनंदन किया उसमें कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि ब्रिक्स का महत्व, ये जो उभरते देशों का समूह है इसका महत्व क्या है और जो भारत की अगर हम अध्यक्षता की खास तौर से बात करें तो जो ब्रिक्स का जो उन्होंने एक थीम दिया है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इसके बारे में भी इसके पीछे की सोच के बारे में भी अगर आप हमें संक्षेप में बता सकें।
2: तो मुझे आपने दो बिंदुओं का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर चर्चा की शुरुआत की है। तो ब्रिक्स की 2026 की अध्यक्षता और इसके समिट की मेजबानी भारत के पास है। भारत आज ग्लोबल साउथ के प्रणेता देश के रूप में पूरे विश्व में जाना और माना जा रहा है। जब हम ब्रिक्स की ओर देखते हैं तो अलग अलग जो ग्लोबल साउथ की मेजर इकोनॉमीज हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, उनका एक सरकारों का आपसी समूह है जिसमें 11 पूर्ण सदस्य हैं, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका थे, अब इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया भी जुड़ गए हैं। ब्रिक्स के पिछले समूह में सबसे नवीनतम सदस्य के रूप में इंडोनेशिया इससे जुड़ा और इससे इसकी भौगोलिक सीमाओं का भी विस्तार हुआ है। हम देख सकते हैं कि लगभग सभी जितने भी ये इमर्जिंग इकोनॉमीज के देश कॉन्टिनेंट्स हैं इनका प्रतिनिधित्व ब्रिक्स में है। ग्लोबल साउथ का एक बड़ा प्रतिनिधि प्लेटफॉर्म हम इसे कह सकते हैं और इसमें पार्टनर कंट्रीज के रूप में 10 देश जुड़े हुए हैं जिसमें बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, नाइजीरिया और वियतनाम जो है इस पूरे ब्लॉक के पार्टनर फ्रेमवर्क का भाग है। 2009 में हम देखते हैं कि ऑफिशियल समिट 16 ब्रिक्स के शुरू हुए और फिर 2011 में जब साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन करके ब्रिक्स से इसे ब्रिक्स बनाया, इसके बाद से इसका एक बड़ा एक्सपेंशन हुआ और अब इसका एक स्ट्रेटेजिक महत्व है, इसका एक आर्थिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है और भारत जैसे कि मैंने कहा ग्लोबल साउथ के प्रणेता देश के रूप में पूरे विश्व में जाना और माना जा रहा है। रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की थीम के साथ जिससे जुड़े हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को और ग्लोबल साउथ के एजेंडा को भारत लगातार योगदान दे रहा है। इस थीम के साथ भारत इस वर्ष ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है।
1: प्रोफेसर जोशी आपने इतनी खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से जो समूह है इसका कहीं की विकास हुआ है पिछले 20 वर्षों में, किस तरह से ये बढ़ा है और जो मेजबानी भारत कर रहा है, कितने उन्होंने एक स्पष्ट प्राथमिकता दी है अपने थीम के द्वारा। ये जो पहली मीटिंग हुई थी ब्रिक्स शेरपास की 9 और 10 फरवरी को 2026 में, उसमें ये प्रस्तुत की गई थी। उसके बाद कई मीटिंग्स हुई है प्रोफेसर जोशी, जो विदेश मंत्री हैं ब्रिक्स देशों के उनकी मीटिंग हुई 14-15 मई को 2026 और जो एनर्जी मिनिस्टर है उनकी मीटिंग हुई 25-26 जून को और अभी ओडिशा में जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हो रही है एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से सहयोग हो उसको डिस्कस करने के लिए और कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग भोपाल में हो रही है। तो आप हमें एक मोटे तौर पर बता सकती हैं कि जब ऐसी मीटिंग्स होती हैं तो किस तरह का आपसी सहयोग उभर के आता है, क्या प्रोडक्टिव या क्या प्रैक्टिकल आउटकम्स उभर के आते हैं?
2: सर मुझे आपने ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है क्योंकि अक्सर हम इस प्रकार के जो ये मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनकी बात करते हैं, इनमें भारत की भूमिका की बात करते हैं, पर इनका भारत जैसे देशों की आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार की प्रगतियों पर क्या असर पड़ता है ये भी जान लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक ऑप्टिक्स की यहां पर बात नहीं है, टेंजिबल आउटकम्स की बात है। भारत ने जब 2023 में G20 की मेजबानी की थी, अध्यक्षता की थी, तभी से हम इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय मंचों के न सिर्फ डेमोक्रेटाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम इसमें ग्लोबल साउथ का जो एजेंडा है जिसमें कि ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज को नेतृत्व की भूमिका

0: जागरूकता दिलाना, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म करना, किस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज और लड़ाई को मजबूत करना, इन सभी देशों की सुरक्षा, अलग अलग प्रकार की जो सुरक्षा है वो अक्षुण्य रहे इसके लिए प्रयास करना, इन सभी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चरल और सामाजिक विकास के लिए प्रयत्न करना और इससे जुड़ी फंडिंग को जुटाना, ये तमाम जो लक्ष्य है इनको लेकर के विशेषकर ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर काम हो रहा है। तो आप देखिए फरवरी में ब्रिक्स के शेरपास की पहली मीटिंग नई दिल्ली में हुई थी, इसमें जो थीम है थीमेटिक जो जितने एलिमेंट्स है जिनकी हमने बात की, रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी, इसको लेकर चर्चा हुई। कोर एजेंडा फिक्स हुआ जो ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म से जुड़ा हुआ है, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को आगे बढ़ाने से जुड़ा हुआ है, एनर्जी और हेल्थ सिक्योरिटी से, पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप से, पीपल टू पीपल कनेक्ट्स को बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। फिर इसको लेकर के हम देखते हैं कि मई में ब्रिक्स के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें सभी सदस्य देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने शिरकत की। उसके बाद जून में एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जुलाई में हेल्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई। अब हम देख रहे हैं कि शिक्षा से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई जो थीम्स है उसको लेकर के जुड़े हुए जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं ब्रिक्स के अलग अलग देशों से और यहाँ हमारे यहाँ अलग अलग शहरों में जुड़ रहे हैं। तो इससे सोनू जी फिर विपक्षीय स्तर पर सहयोग को और टेंजिबल आउटकम्स में फिर बात करूंगी उसे, जैसे उदाहरण स्वरूप ब्राजील के साथ हमने जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बीते वर्षों में अपने सहयोग को बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ाया है, चाहे वो हमारा बायोफ्यूल अलायंस हो या सोलर अलायंस हो। तो इस तरह से विपक्षीय स्तर पर भी सहयोग मजबूत होता है और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर भी ये जितने भी हमारे एजेंडा है इनको एक नई दिशा मिलती है और योगदान मिलता है।
1: सो प्रोफेसर जोशी, आपने बहुत खूबसूरती से समझाया कि किस तरह से प्रैक्टिकल आउटकम्स आते हैं। अगर हम तात्कालिक बात करें तो अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग चल रही है भुवनेश्वर में और अगस्त 5 से 7 तक ये मीटिंग होनी है और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी वो भी इसमें भाग ले रहे हैं। आप खुद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं तो किस तरह की आउटकम्स आप एज एन एक्सपर्ट सोचती हैं कि निकल के आ सकती है, कौन से एरियाज में आपको लगता है कि टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग या स्किल्स डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं या फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स प्रिपेयरनेस की बात करते हैं इन एरिया पर भी ध्यान दिया जाएगा?
0: निश्चित तौर पर सोनू जी, और यहाँ पर फिर प्रोफेशनल मोबिलिटी का भी जो बिंदु है वो जुड़ जाता है। भारत जैसा देश जो कि पूरी आबादी, विश्व की जो युवा आबादी है उसकी 22% युवा आबादी का प्रतिनिधित्व करता है, हम एक युवा देश है, तो ऐसे में ये जो युवा आबादी है, जेन जी है, जेन अल्फा है, जेन बीटा है, इनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप को, किस प्रकार से स्टार्टअप्स को, इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाए और अलग अलग जो एक्टिविटीज हैं, तमाम जो क्षेत्र है, चाहे तकनीकी सहयोग का क्षेत्र हो, चाहे हम रक्षा का क्षेत्र देखें या अलग अलग सामाजिक हम क्षेत्रों को देखें, तो इसमें यूथ पार्टिसिपेशन को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे पीपल टू पीपल एक्सचेंज हो। अब इसमें फिर शिक्षा से जुड़े हुए एक्सचेंजेस से जुड़े हुए समझौते भी हमारे सामने आते हैं जो कि ब्रिक्स के स्तर पर या द्विपक्षीय स्तर पर होंगे। उदाहरण स्वरूप हमारा जो ICCR है, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च जो है, ICSSR है, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंसेज रिसर्च, ये इस प्रकार की स्कॉलरशिप्स प्रदान करता है, ये जितनी भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है इन देशों के युवाओं को जो यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं, वाइस वर्सा हमारे यहाँ के युवा इन देशों में जा सकते हैं। इसी प्रकार से जो शिक्षक है, शिक्षकों के एक्सचेंजेस, शिक्षकों के लिए वर्कशॉप्स और इस प्रकार की जो सुविधाएं और इस प्रकार की जो स्कीम्स हैं वो फिर इन मीटिंग्स के बाद हमको टेंजिबल आउटकम्स के रूप में, तो कैसे युवाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े, कैसे एकेडमिशियंस का पार्टिसिपेशन बढ़े, इसको ध्यान में रखते हुए इस मीटिंग में जो है चर्चा की जा रही है सोनू जी।
1: सो प्रोफेसर जोशी, अब ग्लोबलाइजेशन का जो एक दौर आया था, फिर बीच में हमें कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मल्टीलैटरलिज्म थोड़ा वीक हो रहा है, लेकिन अब ब्रिक्स का जो हम एक समूह देख रहे हैं बहुत स्ट्रांग और जिस तरह से हमने देखा है कि 115 बैठकें हुई हैं अलग अलग अलग अलग क्षेत्रों में और आउटकम्स उभर के आ रहे हैं, आपको लगता है कि उभरती टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है सभी देशों को आपस में जोड़ने के लिए और जो एक आदान प्रदान है बेस्ट प्रैक्टिसेस का उसके लिए टेक्नोलॉजी बहुत हद तक सहायक है?
0: बिल्कुल सोनू जी, बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब हम शक्ति की परिभाषा की ओर नजर डालते हैं तो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शक्ति की परिभाषा एक मिलिट्रल और टेरिटोरियल शक्ति या पावर तक सीमित थी। उसके बाद 90 के दशक में जब वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन ने दस्तक दी तो किस बेसिस पर या किस शक्ति के बलबूते दस्तक दी, तकनीक की शक्ति के बलबूते दस्तक दी। फिर हमने इंटरनेट, ICT टेक्नोलॉजीज, MNCs को हमारे द्वार खटखटाते देखा। फिर ये जो तमाम ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, इन्होंने अपनी ओपन इकोनॉमी के माध्यम से FDIs के लिए द्वार खोले और फिर हमने देखा कि ये तमाम देश जो है ये आर्थिक तरक्की की ओर बढ़े। इन सब में तकनीक का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये जो तकनीकी सहयोग है ये आज भी हम देख सकते हैं कि ब्रिक्स जैसे मंचों पर सहयोग का एक बहुत बड़ा एरिया कह लीजिए या एक एलिमेंट कह लीजिए जिसके माध्यम से ये जो तमाम देश है, चाहे आप देखिए स्वास्थ्य का क्षेत्र देखिए, शिक्षा का क्षेत्र देखिए, आप विदेश

0: सिक्योरिटी को देख लीजिए, आप रीजनल या ग्लोबल सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, तो हर कहीं तकनीक जो है उसका एक रोल है। बिना तकनीकी सहयोग के और बिना तकनीकी दक्षता के कोई भी देश आज की तारीख में आगे नहीं बढ़ सकता। और ये जो तकनीकी सहयोग है ये फिर न सिर्फ मल्टीपोलैरिटी को मजबूत करता है, ये कहीं ना कहीं शक्ति के अलग अलग जो है पोल्स हमें बनाता हुआ दिखाई पड़ता है, ये मल्टीलेटरल इंगेजमेंट्स को भी मजबूत करता है और फिजिकल बॉर्डर्स के अक्रॉस देश और उसके लोग आपस में एक दूसरे से संवाद कर पाते हैं। तो ये तकनीकी शक्ति है और ये जो तकनीकी सहयोग है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए ये ब्रिक्स का एक प्रमुख एजेंडा है। सुनिए
1: सो प्रोफेसर जोशी, ये सारी उभरती इकोनॉमीज है जो ब्रिक्स का हिस्सा है, डेवलपिंग कंट्रीज है, सो आपको लगता है कि उस संदर्भ में भी बहुत ही एक ये सिनर्जिस्टिक सिनर्जी है इस समूह में, क्योंकि सब किसी न किसी डेवलपमेंट साइकिल की स्टेज से गुजर रहे हैं, सो उनकी सबकी प्रायोरिटीज आपको लगता है कि साझा है और इसलिए जो इसके परिणाम भी है वो ज्यादा मजबूत आते हैं ऐसे समूह के?
0: बिल्कुल सोनू जी, लेकिन मैं आपको बताऊं विविधता में एकता। हमारे जो ग्लोबल साउथ के ये देश हैं और विशेषकर जब हम ब्रिक्स के मेंबर नेशंस की ओर देखते हैं जो फुल मेंबर्स हैं, तो उनकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और उनकी आर्थिक स्थितियां और सामाजिक स्थितियां भिन्न भी हैं, हम इस बात को भी समझें। जैसे कई देश हैं, उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं लैटिन अमेरिका के और अफ्रीका के जो देश हैं वो यदि आप आर्थिक दृष्टि से देखें तो वे बहुत मजबूत नहीं नजर आते, लेकिन उनके पास एम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स। और भारत जैसे देश जिनकी जिनकी भौगोलिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, जिनके पास एक बड़ी संख्या में यूथ पॉपुलेशन है, तो यहां से फिर एक सिनर्जी और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमको क्रिएट होती हुई नजर आती है, जिसमें जिस देश को जो आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति जो दूसरा देश कर सकता है उसके साथ वो हाथ मिलाते हुए नजर आता है। तो जैसे भारत ने घाना, मैं अफ्रीका की बात करूं, या नाइजीरिया, या फिर हम लैटिन अमेरिका में चलें तो जो लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज हैं अर्जेंटीना, बोलिविया, चिले, या हम ब्राजील की ओर देखें तो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भारत ने बायलेटरल लेवल पर कई समझौते किए हैं। और इसी तरह से आप जब इन मेंबर नेशंस को देखेंगी तो इनके बायलेटरली और फिर ब्रिक्स के लेवल पर मल्टीलेटरली कई अग्रीमेंट्स भी हैं और साझा सहयोग इस प्रकार का है कि जिन देशों को फंडिंग की आवश्यकता है तो उनकी फंडिंग के माध्यम से सहायता की जाए। क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक कहीं ना कहीं भिन्नता नजर आती है, कुछ देश ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से बहुत प्रगति कर चुके, भारत जैसा देश आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन जब हम देखते हैं तो अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के और साउथ ईस्ट एशिया के कई ऐसे देश हैं जिनको की फंडिंग की आवश्यकता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसी प्रकार से इन देशों के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं और वहां पर फिर भारत जैसे देश जो है वो इनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन संसाधनों का हम कैसे उचित प्रयोग कर सकते हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और किस तरह से एक ग्लोबल लेवल पर हम एक अच्छी सप्लाई चेन क्रिएट करके उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनको बेच सकते हैं, तो इसमें भारत सक्षम है। तो ये एक सिम्बायोटिक हमको सिनर्जी क्रिएट होती हुई नजर आती है।
1: भारत का जो नेतृत्व रहा उसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये एक और पहलू रहा जिसमें भारत ने एक लीडरशिप रोल निभाया?
0: बिल्कुल, 2023 में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की थी तब भारत की न सिर्फ सराहना हुई थी वैश्विक स्तर पर, बिना किसी एक भी डिसेंट के दिल्ली डिक्लेरेशन पास हुआ था और तमाम अलग अलग वैचारिकता रखने वाले देशों ने भी एकजुट होकर के भारत का जो एजेंडा था और जिस तरह से भारत ने G20 की मेजबानी की उसकी बहुत सराहना की थी, उसी प्रकार से भारतीय होने पर मुझे बहुत गर्व है। क्योंकि भारत शांति और सुरक्षा की बात करते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करने की बात करते हुए आपसी सहयोग की बात करता है जिसमें वो विन विन सिचुएशंस क्रिएट करने के लिए लगातार काम कर रहा है, और इसमें जो लाइक माइंडेड देश हैं जिसमें ब्रिक्स के भी सदस्य देश शामिल हैं वो भारत के साथ लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पिवोटल केंद्रीय भूमिका है न सिर्फ ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म पर, बल्कि यदि मैं ओवरऑल वैश्विक राजनीति की बात करूं तो सोनू जी भारत आज जिस मंच में जाकर के बैठता है उसका पलड़ा भारी होता है और वहां से फिर हम देखते हैं कि कैसे वैश्विक सहयोग जो है वो निरंतर प्रगति करता है, आगे बढ़ता हुआ नजर आता है।
1: प्रोफेसर जोशी, थैंक यू सो मच, आपने ब्रिक्स पर खासकर भारत के जो अध्यक्षता है ब्रिक्स की अभी 2026 में अभी चल रही है उस पर इस समग्र चर्चा की हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत धन्यवाद सोनू जी।
2: अभी आप सुन रहे थे ब्रिक्स 2026 वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास की नई दिशा पर चर्चा, इसमें भाग ले रही थी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार प्रोफेसर अंशु जोशी, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: Because I 71 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और मुझे समाइन अब सुनिए बदले मौसीकी प्रोग्राम के तहत इश्तियाक हुसैन खां का गाया ख्याल राग छाया में।

Bravo!

0: की जाएगी। शहरी आवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने इन खबरों की सख्ती से तरदीद की है जिनमें दावा किया जा रहा था कि हुकूमत हवाई जहाज के ईंधन में एथेनॉल मिलाने का मंसूबा बना रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तजवीज नहीं है। वजीर मौसूफ ने वाजे किया कि एथेनॉल और हवाई जहाज का पायेदार ईंधन SAF दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं, लिहाजा उन्हें एक दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता। हुकूमत ने कहा है कि अभी तक 1,73,00,000 ई पासपोर्ट भारत में और बैरून मुल्क जारी किए जा चुके हैं। कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि भारत में इस वक्त तमाम इलाकाई पासपोर्ट दफातर, पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस, पासपोर्ट सेवा केंद्र और बैरून मुल्क तमाम भारतीय मिशन ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। उन्होंने मुतला किया कि ई पासपोर्ट का आगाज गुजश्ता साल मई में किया गया था। जनाब सिंह ने कहा कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम जामे डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम करता है। इनमें पासपोर्ट सेवा पोर्टल, पासपोर्ट सेवा मोबाइल एप्स और सेंट्रलाइज शहरी खिदमात के राबता मरकज शामिल हैं। हुकूमत ने कल बताया कि काठमांडू में वाकई भारतीय सफारतखाना कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय यात्रियों की हिफाजत और सफर में सहूलत को यकीनी बनाने के लिए नेपाल के मुतालिका हुकाम और दीगर फरीकों के साथ मौसर राबता बरकरार रखे हुए। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया कि इस तआवुन में जरूरत पड़ने पर भारतीय शहरियों का बरवक्त इंखला, रिहाइश, तिब्बी इलाज और दीगर जरूरी इमदाद फराहम करना भी शामिल है। कल भारत ने ओडिशा में चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से दरमियानी दूरी तक वार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 की कामयाबी के साथ आजमाइशी परवाज की। वजारत दिफा ने कहा कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम ऑपरेशन जाति और टेक्निकल पैरामीटर्स मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। यह आजमाइश जामे फोर्सेज कमान के तहत की गई है। वजारत ने मजीद कहा कि कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और संग मील है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में श्रियांशी वालीशेटी को 21-16, 17-21, 21-13 से शिकस्त देकर शानदार खेल का मुजाहरा किया। अश्मिता ने कोरिया की किम मिन जी को 21-17, 21-16 जबकि रक्षिता ने जापान की मानामी सुईजू को 22-20, 21-10 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने बामी तआवुन को और गहरा करने के अहद का अदा किया है। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरून सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। भारत ने ओडिशा में दरमियानी दूरी तक वार करने वाले अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गई हैं। इसी के साथ आलमी खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। और लीजिए समय अब सुनिए क्लासिकी मौसीकी के प्रोग्राम में पार्थ दास का सितार पर बजाया राग प्रभाती।

आशा है। और लीजिए अब सुनिए आखिरी शब प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। फिल्म का नाम है रतन, आवाज है जोराबाई अंबाले वाली की।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आखिरी शो। यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। 12:50 हुए हैं, लीजिए सुनिए खबरें।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बेन्यामिन नेतन्याहू ने बामी तआवुन को और गहरा करने के अहद का आदा किया है। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। भारत ने ओडिशा में दरमियानी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइशी परवाज की है। और बैडमिंटन में तनवीर शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर्स खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल भारत इसराइल खसूसी जामे शराकतदारी में पायदार पेश

0: मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि इस वक्त 19 लाख घरानों का बिजली का बिल सिफर आ रहा है। उन्होंने मजीद बताया कि इस स्कीम के तहत 12 लाख से ज्यादा कुंभों ने इजाफी बिजली फरोख्त करके मजमूई तौर पर 421 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल की है। हुकूमत ने कहा है कि अभी तक 1,73,00,000 ई पासपोर्ट भारत में और बैरून मुल्क जारी किए जा चुके हैं। कल राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत में इस वक्त तमाम इलाकाई पासपोर्ट दफातर, पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस या पासपोर्ट सेवा केंद्र और बैरून मुल्क तमाम भारतीय मिशन ई पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। उन्होंने मुतला किया कि ई पासपोर्ट का आगाज गुजश्ता साल मई में किया गया था। जनाब सिंह ने कहा कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम जामे डिजिटल प्लेटफॉर्म फराहम करता है। हुकूमत ने कल बताया कि काठमांडू में वाकई भारतीय सिफारतखाना कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय यात्रियों की हिफाजत और सफर में सहूलत को यकीनी बनाने के लिए नेपाल के मुतालिका हुक्काम और दीगर फरीकों के साथ मौसर राबता बरकरार रखे हुए है। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में उमूर खारजा के वजीर मुमलकत कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि इस तआवुन में जरूरत पड़ने पर भारतीय शहरियों का बरवक्त इन्फला, रिहायशी तिब्बी इलाज और दीगर जरूरी इमदाद फराहम करना भी शामिल है। कल भारत ने ओडिशा में चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से दरमियानी दूरी तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल अग्निशार की कामयाबी के साथ आजमाइशी परवाज की। वजारत दिफा ने कहा है कि इस आजमाइशी परवाज में मिसाइल के तमाम ऑपरेशन जाति और टेक्निकल पैरामीटर्स मुकम्मल तौर पर कामयाब रहे। यह आजमाइश जामे फोर्सेज कमांड के तहत की गई है। वजारत ने मजीद कहा कि यह कामयाब परवाज मुल्क की जामे दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने में एक और संग मील है। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज आसान में कोरिया मास्टर्स के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तन्वी ने प्री क्वार्टर फाइनल में श्रियांशी वालीशेट्टी को 21-16, 17-21, 21-13 से शिकस्त देकर शानदार खेल का मुजाहिरा किया। अश्मिता ने कोरिया की किम मिनजी को 21-17, 21-16 जबकि रक्षिता ने जापान की मनामी सुइजू को 22-20, 21-10 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और इसराइल के उनके हम मनसब बिन्यामिन नेतन्याहू ने बाहमी तआवुन को और गहरा करने के अहद का अदा किया है। लोकसभा ने मईशत को बेहतर करने और बैरून सरमायाकारी में इजाफा करने के लिए टैक्स में राहत के इकदाम फराहम करने के कानून को पास कर दिया है। भारत ने ओडिशा में दरमियानी दूरी तक मार करने वाली अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल की कामयाब आजमाइश परवाइज की है और बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज कोरिया मास्टर के खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन ए आई आर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 1 बजने को है। अब उर्दू सर्विस की तीसरी मजलिस की नशरियात अख्ताम पजीर होती हैं। कल सुबह 9:30 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे उर्दू सर्विस की पहली मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। शब बखैर। जय हिंद।
2: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति प्रताप सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। एक वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
3: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गए। अभी पिछले सप्ताह आप सब ने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही ये विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र स्वदेश लाने के लिए हर संभव सहायता की है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने अकासा एयर और अलायंस एयर की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने दोनों एयरलाइंस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इसका उद्देश्य एयरलाइंस को अपने विमानों की संख्या बढ़ाने, संचालन को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों की पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। यह कानून कल से लागू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब और दिल्ली में संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय टैक्स सपोर्ट धोखाधड़ी और जबरन वसूली करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने 5 और 6 अगस्त के बीच रात में 10 ठिकानों पर छापेमारी की जिसमें मोहाली का एक फर्जी कॉल सेंटर भी शामिल है। भारत सिंगापुर विदेश कार्यालय परामर्श का 19वां दौर नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इसमें दोनों देशों के द्विपक्षीय सहयोग को प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव रुतेन्द्र टंडन और सिंगापुर के विदेश मंत्रालय के स्थायी सचिव ल्यूक गो ने की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चनिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद दरागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Cabinet yesterday approved Gobardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the scheme will be implemented from 2026 to 27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnav said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Gobardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypasses at various locations. Government has said that 16 Indian nationals, including 10 seafarers, have lost their lives.

हो चुका है। तो सोचा क्यों नहीं हम ठंडी ठंडी हवाओं के साथ कुछ ठंडी ठंडी बौछारें भी हम सब पर बिखर जाए तो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है वो समा। सुनते हैं आज के कार्यक्रम की पहली सुंदर रचना।

वाकई दोस्तों बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, ठंडी हवा की झोंकी। वाह बहुत ही शानदार रचना, फिल्म भाई बहन से ये प्यारी सी रचना थी और शमशाद बेगम की आवाज में बेहतरीन रचना। भाई बहन फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है और से सजाया है खूबसूरत संगीत से श्याम सुंदर ने। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत वाकई बड़ा ही प्यारा है, बेहद खूबसूरत है, तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना। ये रचना भी अपने आप में बहुत ही प्यारी सी है। साथियों अभी हम 50 के दशक के हम गीत को चला रहे हैं और कुछ 52 के हैं, 55 के हैं और फिर धीरे धीरे ये क्रम या फिर वर्षवार बदलता चला जाएगा। जी हाँ धीरे धीरे, क्योंकि हम हालांकि हमारे तीनों के तीनों जो प्रोग्राम्स होते हैं 50-50 मिनट के होते हैं। 50 मिनट में जितनी हमारी कोशिश होती है हम उतना कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं। अलग अलग दशकों के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं, चाहे वो 1931 से लेकर 1965 तक या 60 तक बेसिकली माना जाता है गोल्डन एरा। उसके बाद तो फिर जो गाने होते हैं बिल्कुल अलग काइंड ऑफ सॉन्ग्स होते हैं, तो कोशिश हमारी रहती है कि लगभग 65 तक के हम गाने चलाएं ताकि सभी साथियों को सभी प्रकार के सभी दशकों के गीत सुनने को मिले, हमारा प्रयास यही रहता है। तो एक और खूबसूरत गीत आ रहा है चंदा की छांव, ये टाइटल है गीत का, फिल्म परछाइयां से शानदार रचना है। फिल्म परछाइयां 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है, लता मंगेशकर की आवाज में शानदार रचना, संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, ठंडी ठंडी वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा बेहद खूबसूरत दो गीत अभी सुने हैं आपने। ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेते हुए शानदार बेहतरीन रचना। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत भी आ रहा है हाँ हमारे जो सिंगर हैं गायक हैं वो बस यही कह रहे हैं, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। वाकई बहुत ही सुंदर फिल्म दाग से शानदार रचना, तलत महमूद की आवाज में बेहतरीन रचना। दाग फिल्म सन 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने। तो ऐसे सुनते हैं एक और आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की तीसरी रचना।

जी हाँ, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे गोल्डन एरा। साथियों, एक बड़ा ही प्यारा गीत आ रहा है फिल्म बाजी से। जी हाँ, फिल्म बाजी। तुम भी ना भूलो बलम, एक अनोखा अनसुना खूबसूरत गीत है। गीता दत्त की आवाज में बेहतरीन रचना। फिल्म बाजी 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत साहिर के हैं और संगीत से सजाया है SD बर्मन ने। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

बेहद खूबसूरत गीत अनसुना लाजवाब गीत। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। एक बड़ा ही प्यारा गीत आ रहा है फिल्म दीवाना से। मुकेश की आवाज में शानदार रचना है और संगीत शंकर जयकिशन के हैं। दीवाना फिल्म 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है और गीत कादर प्रोडक्शन के बैनर तले ये खूबसूरत रचना है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

बहुत खूब, बहुत ही प्यारा, लाजवाब गीत, बेहद खूबसूरत। साथियों बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, रात रंगीली और चमके तारे। जी हाँ, बाप रे बाप। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है बाप रे बाप और आशा भोसले की आवाज में शानदार रचना है। फिल्म बाप रे बाप 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को ओपी नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं एक और बेहतरीन रचना आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की, बहुत ही प्यारी खूबसूरत रचना।

क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही सुंदर, लाजवाब, अनमोल, खूबसूरत है रचना। जी हाँ, रचना, हम रचना की बात कर रहे हैं, अर्चना की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, अर्चना जी सुन रही हैं प्रोग्राम, बहुत ही अच्छे तरीके से सुन रही हैं। और हमारे साथ ही बाकी बहुत ही गीत प्रेमी हैं, संगीत प्रेमी हैं, और अभी तक कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, ये बड़ी बात होती है ना। और हमें नहीं पता कि आज का जो कार्यक्रम है कौन कौन साथी सुन रहे हैं। यदि कोई भी साथी सुन रहे हैं तो हमें जरूर बताएं कि हाँ, हम कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो अच्छा लगता है हमें भी और शायद आपको भी। साथियों, जो अगला प्रोग्राम होने वाला होगा वो होगा गीत बहार, जो नॉन स्टॉप होता है वो कार्यक्रम, जिसमें किसी प्रकार का भी बाध्यता नहीं है, किसी प्रकार की भी, और लगातार गीत प्ले होते हैं। उसमें ज्यादा नहीं बोले जाते हैं, जो हम डिटेल्स बताते हैं इतनी ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई जाती हैं, लेकिन हाँ, क्योंकि नॉन स्टॉप होता है तो बीच बीच में यदि हम उसे रोकेंगे तो फिर नॉन स्टॉप का मतलब ही खत्म हो जाता है। तो 2 बजे तक जो प्रोग्राम होते हैं, 12 से 2 बजे तक, उसमें हम पूरी डिटेल्स बताते हैं जो हमारे पास उपलब्ध होती हैं। तो बस एक और गीत आ रहा है, एक सुंदर बेहतरीन गीत है, बहुत ही खूबसूरत है। गीत सुनहरे के जितने भी गीत हैं एक से एक लाजवाब हैं, तभी उसे गोल्डन कहा जाता है। और ऐसा नहीं है केवल गीत सुनहरे ही अच्छे होते, नहीं, गीत संगीत सभी अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी भी विधा का हो, है ना। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास, तो हो जाइए तैयार एक सुंदर बेहतरीन रचना के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे, जिसमें आज आप सुन रहे हैं बहुत ही सुंदर पुराने यानी कि बहुत ही खूबसूरत उत्कृष्ट बेमिसाल रचनाएं। साथियों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत बड़ा ही प्यारा, सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत है फिल्म सीमा से, जो

1955 प्रदर्शित फिल्म रही है फिल्म सीमा। लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में शानदार रचना है और बहुत ही खूबसूरत, जैसे छोटी बच्ची को जैसे कि बहला रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं, जता रहे हैं। सुनो छोटी सी गुड़िया की नन्ही कहानी। जी हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत। इस गीत को सजाया है अपने संगीत से शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं बेहतरीन रचना।

बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही कमाल और बहुत ही मार्मिक सा और थोड़ा सा खुशी देता हुआ शानदार प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है जिस देश में गंगा बहती है, बड़ा ही खूबसूरत लाजवाब गीत है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सुंदर सा नगमा। जी हाँ दोस्तों, साथियों ये गीत आज के कार्यक्रम की, जैसा कि हम समझ रहे हैं, तो अंतिम या सेकंड लास्ट प्रस्तुति होगी और उसके बाद 2 बजे हिंदी और फिर उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक और खूबसूरत रचना। साथियों जिस देश में गंगा बहती है, टाइटल सॉन्ग है, मुकेश की आवाज में शानदार रचना है। ये फिल्म है 1960 की। गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत से सजाया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा और बहुत ही खूबसूरत गीत जिस देश में गंगा बहती है।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों, 2 बजने को हैं और एक छोटा सा गाना हम जरूर सुनवाएंगे। उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: जी हाँ दोस्त, सुबह के बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत हम पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन हाँ समय बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और 2 बजने को है। बस अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ रोट थ्रेड ऑल डायड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
2: 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गए। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल वैश्विक पहचान मिल सके।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
1: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
0: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी संचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि की गई। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमों को पहचान, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता देना है। सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ये कानून कल से लागू हो गया। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से पुराने सचिवालय स्थित विधानसभा सदन में शुरू होगा। ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित होंगे। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी। 2 दिन का ब्रिक्स वेव्स बाजार कल मुंबई में शुरू हुआ। यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में 21 ब्रिक्स सदस्य देशों और साझेदारों के 500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अस्मिता चनिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद करागा की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, पवित्र, एक तरीके से कहा जाए तो पवित्र गीत है। और भाई बहन का जो रिश्ता होता है बहुत ही अनमोल होता है। बहनों को कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही भैया को चाहिए, लेकिन हाँ जो प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जी हाँ दोस्तों, बहनों को कुछ भी तो नहीं चाहिए, ना कभी मांगती हैं, ना वो कहते हैं, है ना। वाकई इतना सुंदर रिश्ता जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, पवित्र रिश्ता होता है। और खास तौर से राखी का त्योहार जब होता है, चाहे वो भाई दूज का त्योहार हो, चाहे वो राखी का त्योहार हो, बहनें आती हैं, इतना अच्छा लगता है ना जब बहनें आती हैं घर पर राखी के त्योहार पर, तो सच में ऐसा लगता है कि बस हमारी बहन हमारे पास ही रहे, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, बहनें निस्वार्थ होती हैं, प्रेम की भूखी होती हैं बस, और हमेशा अपने भाइयों के लिए तत्पर तैयार रहती हैं, चाहे वो कितनी परेशानी हो, लेकिन हमेशा प्यार करती हैं, प्यार करती रहेंगी हमेशा हमेशा के लिए। तो बस इसलिए हमने सोचा कि क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में ही राखी का त्योहार आता है, हमने सोचा कि चलिए एक गीत सुनवा ही देते हैं, है ना। तो वाकई दोस्तों मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब भाई बहन का प्रेम का रिश्ता जो होता है, पवित्र और अनमोल रिश्ता होता है, क्या बोलते हैं, सही है ना। तो चलिए बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब है। तो आइए सुनते हैं एक और बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है आपके पास।

0: जी हाँ दोस्तों, ये गीत वाकई बहुत ही अच्छा है। ये वादा भूल न जाए जलते बदन से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार रचना है, और ये रचना सन 1973 की है। इस गीत को सजाया है अपने संगीत से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत रचना।
1: मुझे तुम जैसी काली कलूटी पसंद है।
2: छोटे तुम्हारे बिना सब सुना सुना लगेगा।
1: मुझे नहीं लगेगा गंगा।
2: चलो भैया आराम कर रहे हैं।
1: हमने तुम्हारे गले में डाल दी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे बहुत ही खूबसूरत गीतों की सुरमाला, वाकई बहुत ही शानदार रचनाएं अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। बड़ा ही प्यारा और बहुत ही शानदार गीत आ रहा है, सन 1975 का। जी हाँ दोस्तों, सन 1975 का गीत सुनवा रहे हैं अब, तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। बड़ा ही प्यारा गीत था। और साथियों, समय इजाजत बिल्कुल भी नहीं दे रहा है और इस वक्त जो समय है 2 मिनट बाकी हैं 3 बजने में, और अगर हम कोई गीत सुनवा भी पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बीच में थोड़ा आधा अधूरा सा गीत वो ठीक भी नहीं लगता है, है ना। ये गीत वाकई अपने आप में बहुत ही अनमोल रहा है। ये मौसम आया है कितने सालों में, बहुत ही सुंदर बेहद खूबसूरत फिल्म आक्रमण से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज में सुंदर रचना थी। आक्रमण फिल्म सन 1975 रिलीज फिल्म रही है और गीत फिल्म कुंज बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड बैनर के तले ये खूबसूरत गीत लिखे हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। तो साथियों, ये था आज के कार्यक्रम गीत बहार, जी हां, जिसमें आज आप सुन रहे थे अलग अलग दशक के बेहतरीन खूबसूरत गीत। साथियों, गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आपको यह प्रोग्राम यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है हमें जरूर बताइएगा और बस मुझे दीजिए अनुमति आज के सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम गीत बहार से। साथियों, 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में पहले हिंदी और फिर उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। वस्त्र मंत्रालय आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उत्कृष्ट बुनकरों को संत कबीर और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगी। कार्यक्रम में अर्थ वूड थ्रेड ऑल डाइड हैंडलूम टेक्सटाइल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और हथकरघा पुरस्कार पुस्तिका 2025 का भी विमोचन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्सव और उमंग के साथ मनाने की अपील की है। वीडियो संदेश में उन्होंने लोगों से हथकरघा उत्पाद खरीदकर बुनकरों और कारीगरों का समर्थन करने का आग्रह किया।
1: 5 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने की अपील की ताकि भारतीय कारीगरों के कौशल को वैश्विक पहचान मिल सके।
1: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते और आदमी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ JRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।
2: कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो

0: this will save about 40 million tons of carbon dioxide emission. Then 75,000 crore rupees national GDP ko add hoga, or about 1.5 lakh jobs will be created by this program.
1: ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया. इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मानदंडों की पुष्टि हुई है. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में 10 राज्यों और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. इसका उद्देश्य अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप और छोटे उद्यमियों को पहचान, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन तथा आर्थिक सहायता देना है. जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में काम कर रही है. सरकार ने गोवा विधानसभा सीटों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. ये कानून कल से लागू हो गया. गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि ये कानून अनुसूचित जनजाति समुदाय को लंबे समय से लंबित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. दिल्ली की 8वीं विधानसभा का 3 दिन का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा. ये सत्र 7, 10 और 11 अगस्त को आयोजित किया जाएगा. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक बैठक दिन के निर्धारित कार्यों की समाप्ति तक चलेगी. कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चलिहा और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्णा प्रसाद गराका भी अगले दौर में पहुंच गए हैं. मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, माहे, ओडिशा तथा दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्र में गरज के साथ बिजली चमकने और मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है. झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड में भी आज गरज के साथ बिजली चमकने और वर्षा होने की संभावना है. इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has urged every citizen to celebrate National Handloom Day today with enthusiasm and joy. Sharing a video message, Mr. Modi said that on August 7, 1905, the Swadeshi movement was launched as part of India's struggle for independence, and people from all walks of life united and fought a historic battle against British rule. He encouraged people to support poor weaving families and artisans who create fabrics with their own hands. Mr. Modi also appealed to the countrymen to purchase at least one handloom product, make a video about it and share it across the country and the world. National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement launched on the same day in 1905. The Union Cabinet yesterday approved Govardhan, the National Circular Bioenergy Scheme, with a total outlay of 23,731 crore rupees to boost clean energy and rural economy. Briefing media in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the scheme will be implemented from 2026-27 to 2035-36 and establish compressed biogas as a major pillar of India's future energy mix. Mr. Vaishnaw said the Cabinet Committee on Economic Affairs has also approved the construction of 4-lane highway from Guwahati to Tezpur along the National Highway 15 in Assam. On Cabinet's approval of Govardhan scheme, Prime Minister Narendra Modi in a social media post said the decision is a vital step towards clean energy, rural prosperity and realizing the country's collective dream of becoming a self-reliant nation. Further, the Prime Minister highlighted the Guwahati-Tezpur corridor project in Assam will reduce travel time, improve road safety and ease congestion through major bypass at various locations. Commerce and Industry Ministry has refuted claims in media that India is importing and intends to import large quantities of ethanol from the United States for fuel blending as baseless and factually incorrect. In a statement, the ministry said that ethanol used for fuel blending under the Ethanol Blended with Petrol program is sourced entirely from domestic producers as per the domestic policy framework. It stressed that there is no import of ethanol for fuel blending from the US. Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbanand Sonowal yesterday said that India's ports should be measured not only by cargo throughput and operational efficiency but also by their ability to withstand

अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में गजलें, और इस गजल में साथ दिया आशा भोसले ने। और लीजिए अब प्रस्तुत है उस्ताद अहमद की आवाज में गजल, ये न थी हमारी।

इस गजल के साथ ही आज गजलों का ये कार्यक्रम यही होता है संपन्न। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।

0: साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना जी, आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के ठीक 4:20 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगी सुधा रघुरमन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कंबोजी। संगीत दिया है मथुस्वामी दीक्षितर ने। वर्ण पर संगत किया है KVS विनय ने और मृदंगम पर साथ दिया है एंथोर जैन पी दास ने। तो लीजिए प्रस्तुत है सुधा रघुरमन का गाया राग कंबोजी।

你的笨蛋，你的笨笨笨蛋笨，笨蛋笨蛋笨，我的笨笨笨蛋笨，哪个爱你，你的爱你。

कर्नाटक संगीत पर आधारित कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे गायन कलाकार थी सुधा रघुरमन, आपने प्रस्तुत किया रागम कंबोजी। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम में 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 अगस्त 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। साथियों अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। पांच बजकर 20 मिनट का समय रहेगा देशभक्ति गीतों का। 12:30 बजे 5:30 बजे सुनिएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रभाकर नारायण पाठक का ध्रुपद गायन। छह बजकर 10 मिनट का समय रहेगा भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर सुनिएगा चिंतन। आज आप सुनेंगे गीता में योग का बहुआयामी अर्थ, इस विषय पर चिंतन। 6:45 का समय रहेगा रामचरित मानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 10। 7:10 आज आप सुनेंगे स्नेहा चंद के गाए भजन। ये तो वेरी गुड मॉर्निंग ये सुन सकेंगे आप सुबह 7:30 बजे। 8:45 पर स्नेहा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वरगंगा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे राकेश पाठक का गाया राग शुद्ध सारंग।

महात्मा गांधी से जुड़ी विभिन्न पत्र पत्रिकाएं और संस्थाएं। मिट्टी दी महक कार्यक्रम आप सुनेंगे 9:30 बजे। पंजाबी कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगी हरजीत कौर। 10:10 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। 11:10 का समय रहेगा लाइव कार्यक्रम का।

रचकर 10 मिनट पर सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन। साथियों ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह के 5 बजने वाले हैं, लेकिन सुनिए समाचार पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।